0: अस्सलाम वालेकुम
1: किमचु मॉरिशियस
2: नमस्कार
3: श्रोतृंदरिकी हृदयपूर्वक नमस्कारम
4: உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்
5: रेडियो मॉरिशियस पर दिल से स्वागत है आप सभी का।

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: On the hour, every hour.
1: Radio Mauritius.
2: घड़ी मिला लीजिए, सुबह के ठीक 6 बजे हैं।
3: छह बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। कुछ अहम खबरें जिन्हें हम विस्तार देंगे 6:30 बजे के समाचारों में। राज्यसभा में बजट का बहस जारी। श्रम मंत्री गिजाउद्दीन ने बजट 2026-2027 को साहसिक और जिम्मेदार बताते हुए कहा कि पेंशन प्रणाली में सुधार जरूरी है। उन्होंने मैटरनिटी लीव को 1 वर्ष और पैटर्निटी लीव को 6 सप्ताह तक बढ़ाने के फैसले का भी स्वागत किया। वहीं प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम द्वारा मीन्स टेस्ट को फिलहाल स्थगित करने के फैसले का कई राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने स्वागत किया और नवाब मुगीस ने इसे जनता की आवाज की जीत बताया है। उधर बजट 2026-2027 में कलाकारों के लिए घोषित कदमों का आर्टिस्ट यूनियन ने स्वागत किया और सरकार से इन घोषणाओं को जल्द लागू करने की अपील की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर ने लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। नए नेता के चयन तक वे प्रधानमंत्री बने रहेंगे। फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर अंतिम 32 में अपनी जगह पक्की कर ली है। इस मुकाबले में लियोनेल मेसी ने दोनों गोल किए और इसके साथ ही वे विश्व कप इतिहास के सबसे सफल गोल स्कोरर बन गए हैं। और अब चलिए जानती है मौसम का हाल। मस्करिन्स के दक्षिण पश्चिम में एक जोरदार एंटीसाइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर सामान्य और ठंडी हवाओं का असर बरकरार रहेगा। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान आज सुबह के दौरान विशेष तौर पर ऊंचे इलाकों पर बरसात हो सकती है और अन्य जगहों पर धूप खिली रहेगी। शाम को और रात को भी पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लाटू पर रहकर बरसात होगी और बादल घिरे रहेंगे। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा, विशेषकर दक्षिण में 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में नहीं निकलने की मांग की जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटू पर 14-16 और अधिकतम 20-23 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम साहली इलाकों पर 18-20 और अधिकतम 25-27 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। सूर्योदय 7:45 बजे, सूर्यास्त 5:39 पर होगा।
4: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.
5: Rising. Radio Mauritius.
6: 820 kilohertz पर ये है Radio Mauritius.
5: Radio Mauritius.
6: Radio Mauritius.

सुप्रभात श्रोताओं, ये मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का रेडियो मॉरिशस प्रसारण है। मीडियम एवार्ड 19 किलोहर्ट्ज पर से हमारा ये प्रसारण जारी हो रहा है। माइक पर आपका साथ दे रही है रत्ना। हमारा सुप्रीम करजोड़ नमस्कार स्वीकार करें। इस समय स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:04 होने जा रहे हैं। 23 जून 2026 मंगलवार का दिन आप सभी के लिए स्वस्थवर्धक रहे, ऊर्जाजनक रहे, यही सारी शुभकामनाओं के साथ आज के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं। आप सभी को याद दिला दें, अभी थोड़ी ही देर में हम जुड़ेंगे संतवाणी कार्यक्रम के साथ। ये कार्यक्रम कबीर मंदिर द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। आज के इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगे आचार्य श्यामदास जी। साथ ही साथ 6:20 पर आप सुन पाएंगे आर्य सभा मॉरिशस द्वारा विशेष कार्यक्रम सत्यार्थ प्रकाश मास पर आधारित। और आज के इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे पंडित लोकमन जी। 6:30 हम पुनः जुड़ेंगे समाचार बुलेटिन के साथ, और समाचारों के उपरांत सुबह का नजराना कार्यक्रम में मैं आपका साथ दोबारा दूंगी। तो आइए आज के इस दिन की शुरुआत करते हैं आज के सुविचार।

0: प्यार के साथ। श्रोताओं, अति के बाद क्षति तय है, फिर आप कितने भी बड़े दिग्गज क्यों ना हों, जीवन में कभी भी अति की उपेक्षा ना रखें। आइए इसी के साथ आचार्य श्यामदास जी का स्वागत करते हैं संतवाणी कार्यक्रम में।
1: आइए सुनिए आचार्य महंत डॉक्टर श्यामदास जी महाराज की प्रस्तुति में पाक्षिक कार्यक्रम संतवाणी।
2: बंदों सत्य कबीर के चरण कमल सिरना, जासु ज्ञान दिन कर निकर भ्रमतम दे तन साय। भ्रम छुड़ाए पथ विकट को निकट लखायो नाम, तासे गुरु को कीजिए कोटि कोटि प्रणाम। परम श्रद्धालु श्रोतागण, यह कार्यक्रम कबीर मंदिर बोंतेर बाक्वा की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। सद्गुरु कबीर साहेब का प्राकट्य वर्णन इस विषय पर आज का वक्तव्य आधारित है। परम हर्ष का विषय है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम श्री कबीर मंदिर बोंतेर बाक्वा में दिनांक 29 जून यानी 29 जून सोमवार को सद्गुरु कबीर साहब का 628 प्राकट्य दिवस समारोह मनाने जा रहे हैं। पूजा दिन में 11 बजे प्रारंभ होगी। इस पूजा विधि में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। पर ब्रह्म परमात्मा सद्गुरु कबीर साहब विक्रम संवत 1455 में ज्येष्ठ पूर्णिमा सोमवार को सत्यलोक से आकाश मार्ग के द्वारा एक प्रकाश पुंज गोला के रूप में काशी के लहर तारा तालाब में कमल के पुष्प पर बालक रूप में अवतीर्ण हुए। कबीर साहब के अवतार के संबंध में यह साखी प्रसिद्ध है। गगन मंडल से उतरे सतगुरु पुरुष कबीर, जलज माहि पौढ़न किए सब पीरन के पीर। ईश्वर जब भी अवतार लेते हैं तब उनका अवतार लेने का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। उस समय ईश्वर का अवतार कबीर साहब का भारत भूमि में आने का एक कारण यह भी था कि भारत धरा अधकर्म से तन से तपन होने लगी, पुण्य सारी खोह में बिस्तर बिछा सोने लगी। हा कष्ट ऐसा हिंद का प्रभु से ना देखा जब गया, आगम गुरु कबीर का सतधाम से तब भया। भविष्य पुराण में लिखा है कि बंधन के हेतु जाति आदि का भेद को उन्मूलन करने के लिए तथा आत्म तत्व का यथार्थ उपदेश देने के लिए कलयुग में परमात्मा सद्गुरु कबीर साहब कमल पुष्प पर प्रादुर्भूत होंगे। जैसे कहा गया है, बंधनात् जाति भेदा रून मोक्तुम निर्कलौ किला, वक्तुम तत्व कबीरः शन पद में प्रादुर्भविष्यति। इस प्रकार कबीर साहब को ईश्वर के अवतार के रूप में भविष्य पुराण की प्रामाणिकता पहले से ही सिद्ध कर दी है। कमल के पुष्प पर विराजमान उस बालक का इतना प्रकाश था कि कुछ दूर पर एक आश्रम में अष्टानंद स्वामी ध्यान लगा रहे थे। उनका ध्यान उस प्रकाश से खुल गया और वे परमात्मा का अवतार उस बालक

बालक को देखकर बहुत ही प्रभावित हुए। इसके बाद स्वामी अष्टानंद जी ने जाकर अपने गुरु स्वामी रामानंद जी से कमल के पुष्प पर अवतीर्ण हुए उस बालक के संबंध में कहा। तब स्वामी रामानंद जी समझ गए कि इस समय प्रभु संसार को सत्य का संदेश देने के लिए बालक रूप में प्रकट हुए हैं। इसके बाद वह बालक रूप परमात्मा जब द्वापर युग में आए थे, तब भक्त स्वपच सुदर्शन के माता पिता के उद्धार करने के लिए उनको वचन दिए थे। भक्त सुदर्शन जी के माता पिता कलयुग में गौरी शंकर और सरस्वती देवी नाम से विख्यात हुए। ये दोनों पति पत्नी ब्राह्मण थे। ये दोनों जब प्रातःकाल काशी के लहर तालाब में स्नान करने के लिए गए थे, तब वहाँ पर कमल के पुष्प पर परम प्रकाशमय एक सुंदर बालक को देखकर खुश हो गए और वे कमल के पुष्प पर विराजमान परमपिता परमात्मा को अपने घर ले गए। सत्य कबीर प्रकाश में, कबीर सत्य प्रकाश में यही लिखा हुआ है कि स्व इच्छा से प्रकट भये साहिब पुरुष कबीर, गौरी शंकर को मिले काशी धाम के तीर। इसके बाद जब गौरी शंकर के बुलाने पर बालक का नामकरण करने के लिए ज्योतिषियों ने उनके घर में आकर बालक का जन्म समय पूछा, तब गौरी शंकर ने कहा कि यह बालक मुझे ज्येष्ठ पूर्णिमा सोमवार के दिन लहर तालाब में कमल के पुष्प पर मिला। इसके बाद ज्योतिषियों ने ज्योतिष शास्त्र को देखा, तब वह बालक पूर्ण ईश्वर का ही अवतार सिद्ध हुआ। इसके बाद वह बालक स्वयं बोलने लगा कि इस युग में मैं कबीर नाम से आया हूँ। कबीर साहब अपने आप को सर्वव्यापक परमात्मा के रूप में बताते हुए शब्दावली में स्वयं कह रहे हैं कि अविगत से चली आयो, मेरो भेद मरम नहीं पायो, नहीं मेरो जन्म न गर्भ बसेरा, बालक होय दिखलायो, अगले जन्म में कौल किया था तब निरुगृह आयो, रहे विदेह देह धरि आयो, काया कबीर कहायो, जुगन जुगन के बिछुड़ल हंसा रामानंद समझायो, सात दिवस की बछिया मंगायो ताको दूध दुहायो, नहीं मेरो गगन धरनि कछु नाही, दीसत अगम अपारा, शब्द स्वरूपी नाम साहेब का सो निज नाम हमारा, नहीं मेरो हाड़ चाम नहीं लोहू, हम सतनाम उपासी, तारन तरन अभय पद दाता कहें कबीर अविनाशी। कबीर साहब बाल्य अवस्था में ही धर्म सम्राट स्वामी रामानंद जी के शिष्य बनकर अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए और वैष्णव धर्म का प्रचार करते हुए पूरे मानव समाज को सत्य का संदेश देते रहे, जिससे पूरे मानव समाज को परम शांति मिली। कबीर साहब का धर्म वैष्णव धर्म है। कबीर साहब का शरीर आकाश में बादल की तरह दिखाई तो देता है, किंतु उसको कोई पकड़ नहीं सकता। इसीलिए वे जब चाहते हैं तब शब्द के समान अविनाशी अपना दिव्य शरीर को प्रकट करते हैं और जब चाहते हैं तब अंतर ध्यान हो जाते हैं। कबीर साहब ने यही कहा है, शब्द स्वरूपी देह मम ज्यों बादल नभ बीज,
जब चाहूँ तब प्रकट

0: करूं, जब चाहूं लूं खींच। सदगुरु कबीर साहब 120वें वर्ष में मगहर जो गोरखपुर के पास है जाकर भरी हुई सभा के बीच से अंतर ध्यान हो गए। उनका शरीर नहीं मिला, वे पुष्प पर प्रकट हुए और अंत में पुष्प ही मिला। सदगुरु कबीर साहब के समय में ऐसी मान्यता थी कि काश्याम मरणाम मुक्ति, जो काशी में मरता है वो मुक्ति को प्राप्त करता है और मगहर में जो मरता है उसको नरक योनि प्राप्त होता है। सदगुरु कबीर साहब ने इस मिथ्या जो अवधारणा चली आ रही थी इसको दूर करने के लिए कबीर साहब अपने अंतिम दिनों में काशी से मगहर चले गए और मगहर में ही जा करके सदगुरु कबीर साहब ने अपना शरीर का त्याग किया, अंतर ध्यान हो गए। जब सदगुरु कबीर साहब के बारे में कहा जाता है कि उनका शरीर नहीं मिला, शरीर के जगह पे एक कमल का फूल मिला जिसको हिंदू लोगों ने लिया और चादर को मुसलमानों ने ले लिया और आज भी पूरी दुनिया में ये अद्वितीय है कि सदगुरु कबीर साहब ही एक ऐसे परमात्मा स्वरूप हुए जिनकी दो समाधियाँ बनी, एक हिंदुओं ने बनाया और एक मुसलमानों ने बनाया। आज भी जहाँ एक तरफ दुआएं ली जाती है, किया जाता है और दूसरी तरफ प्रार्थना और पूजा आराधना की जाती है, तो ये सदगुरु कबीर साहब हिंदू के तुम गुरु कहाए, मुसलमान के पीर, अर्थात सभी धर्म और संप्रदाय के सदगुरु कबीर साहब हुए। आज इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम। जय सतनाम बंदगी साहिब।
1: अभी आप सुन रहे थे आचार्य महंत डॉक्टर श्याम दास जी महाराज की प्रस्तुति में पाक्षिक कार्यक्रम संत वाणी।

तो श्रोताओं, इसी के साथ आइए, समय हो चला है सत्यार्थ प्रकाश मास पर एक विशेष कार्यक्रम के साथ जुड़ने का। इस समय स्टूडियो की घड़ी में बिल्कुल 6:20 हो रहे हैं। ये कार्यक्रम आर्य सभा मॉरिशस द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे पंडित लोकमन जी।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सत्यार्थ प्रकाश के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
2: सम्माननीय श्रोतागण, सादर सुप्रीम नमस्ते। प्रथम जून से आप लोग आर्य सभा मॉरिशस के पुरोहितों द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पर विभिन्न विषयों पर भाषण सुनते आ रहे हैं। आज मैं पंडित मुखलाल लोकमान इस अमर ग्रंथ के नवें समुलास जो विद्या अविद्या बंधन और मोक्ष मुक्ति पर आधारित है। यह समुलास कर्म और फल पर आधारित है, जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। विद्याम चा अविद्याम का सब यदि दो भय सह अविद्याया मृत्युम तीर्त्वा विद्याया अमृतम अश्नुते। जो मनुष्य विद्या और अविद्या के स्वरूप साथ ही साथ जानता है, वह अविद्या अर्थात कर्म उपासना से मृत्यु को तर के विद्या अर्थात ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त होता है। अनित्या सूचि दुखतर नाभ्यसु नित्य सूचि सुखात्मनाख्या तीर्थ विद्या। यह योग सूत्र का वचन है। जो अनित्य संसार और देह आदि से नित्य अर्थात जो कोई देखा सुना जाता है सदा रहेगा, सदा से है, और योग बल से यही देवों का शरीर सदा है, जैसी विपरीत बुद्धि होना अविद्या का भाग है। अशुचि अर्थात मलश्य रुग्ण आदि के और मिथ्या भाषण चोरी आदि अपवित्र में बुद्धि। दूसरा अत्यंत विषय सेवन स्वरूप दुख में सुख वृद्धि आदि। तीसरा अनात्मा में आत्मबुद्धि करना अविद्या का चौथा भाग है। यह चार प्रकार का विपरीत ज्ञान अविद्या कहती है। इससे विपरीत अर्थात अनित्य में अनित्य और नित्य में नित्य, अपवित्र में अपवित्र और आत्मा में आत्मा का ज्ञान होना विद्या अर्थात वेति यथावत तत्व पदार्थ स्वरूपम यथा सा विद्या यया तत्व स्वरूपम न जनाति भ्रमादत्यस्मी नन्या निश्चयनोति यथा सा अविद्याया। जिससे पदार्थों का यथार्थ स्वरूप बोध होने वह विद्या, और जिससे तत्व स्वरूप न जान पड़े अल्प में अन्य बुद्धि होने वाला अविद्या कहाती है। अर्थात कर्म और उपासना अविद्या इसलिए है कि यह बाह्य और अत्यंत क्रिया विशेष है, ज्ञान विशेष नहीं। इसी से मंत्र में कहा है कि बिना शुद्ध कर्म और परमेश्वर की उपासना से मृत्यु दुख से पार कोई नहीं होता। अर्थात पवित्र कर्म पवित्र उपासना और पवित्र ज्ञान ही से मुक्ति, और अपवित्र मिथ्या भाषण आदि से कर्म पाषाण मूर्ति आदि की उपासना और मिथ्या ज्ञान से बंध बंडेज होता है। कोई भी मनुष्य क्षण मात्र भी कर्म उपासना और ज्ञान से रहित नहीं होता। इसलिए धर्म युक्त भाषण आदि कर्म करना और मिथ्या भाषण आदि अधर्म को छोड़ देना ही मुक्ति का साधन है, साल्वेशन कहते हैं। देह और अंतःकरण जड़ हैं, उनको शीत और उष्ण प्राप्ति और भोग नहीं है। जो चेतन मनुष्य आदि प्राणी उसको स्पर्श करता है उसे शीत उष्ण का भान और भोग होता है। वैसे प्राण भी जड़ है, न उसको भूख न प्यास, किंतु प्राण वाले जीव को क्षुधा तृष्णा लगती है। वैसे ही मन भी जड़ है, न उसमें हर्ष न शोक हो सकता है।

0: है, किंतु मन से हर्ष शोक दुख सुख का भोग ठीक करता है। जैसे बहिष्करण स्रोत आदि इंद्रियों से अच्छे बुरे शब्द आदि विषयों का ग्रहण करके जीव सुखी दुखी होता है, वैसे ही अंतःकरण अर्थात मन बुद्धि चित अहंकार से संकल्प विकल्प निश्चय स्मरण और अभिमान का करने वाला दंड और मान्य का भागी होता है। जैसे तलवार से मारने वाला दंडनीय होता है तलवार नहीं, वैसे ही देह इंद्रिय अंतःकरण और प्राण रूप साधनों से अच्छे बुरे कर्मों का कर्ता जीव सुख दुख को भोगता है। जीव कर्मों का साक्षी नहीं करता भोगता है, कर्मों से साक्षी तो एक अद्वितीय परमात्मा है। जो कर्म करने वाला जीव है वही कर्मों में लिप्त होता है, वह ईश्वर साक्षी है। चलें अब मुक्ति का बंध और वर्णन करते हैं। मुंचन्ति पृथक भवन्ति जनाथस्तायाम सा मुक्ति, जिसमें छूट जाना हो उसका नाम मुक्ति है। परमेश्वर की आज्ञा पालने अधर्म अविद्या कुसंग कुसंस्कार देर व्यसनों से अलग रहने और सत्याचरण परोपकार विद्या पक्षपात रहित न्याय धर्म धर्म की वृद्धि करने पूर्वोक्त प्रकार से परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना अर्थात योगाभ्यास करने विद्या पढ़ने पढ़ाने और धर्म से पुरुषार्थ कर ज्ञान की वृद्धि करने सबसे उत्तम साधनों को करने और जो करें वह सत्य पक्षात पवित्र न्याय धर्मानुसार ही करें इत्यादि साधनों से मुक्ति साल्वेशन और उनसे विपरीत ईश्वर आज्ञा भंग करने आदि काम से बंध बंदेज होता है। मोक्ष में भौतिक शरीर का इंद्रियों के गोलक जीवात्मा के साथ नहीं रहते किंतु अपना स्वाभाविक शुद्ध गुण रहते हैं। जब सुषमा चाहता है तो तब स्रोत स्पर्श करना चाहता है, तब त्वचा देखने के संकल्प से चक्षु स्वाद के अर्थ रसना गंध के लिए घ्राण संकल्प विकल्प करने समय मन निश्चय करने के लिए बुद्धि स्मरण करने के लिए चित्त और अहंकार के अर्थ से अहंकार रूप अपनी स्वशक्ति से जीवात्मा मुक्तिमय हो जाता है और संकल्प मात्र ईश्वर होता है। वैसे शरीर के आधार रखकर इंद्रियों के गोलक द्वारा जीव स्वकार्य करता है, वैसे अपनी शक्ति से मुक्ति में सब आनंद भोग लेता है। मुख्यतः एक प्रकार की शक्ति है, परंतु बल पराक्रम आकर्षण प्रेरणा गति भाषण विवेचन क्रिया उत्साह स्मरण निश्चय इच्छा प्रेम द्वेष संयोग विभाग संयोजक विभाजक श्रवण स्पर्शन दर्शन स्वादन और गण ग्रहण तथा ज्ञान इन 24 प्रकार के सामर्थ्य युक्त जीव हैं। इससे मुक्ति में भी आनंद की प्राप्ति भोग करता है। जो मुक्ति में जीव का लय होता तो मुक्ति का सुख कौन भोगता, और जो जीव के नाश ही को मुक्ति समझते हैं वे महामूढ़ है, क्योंकि मुक्ति जीव कि यह है कि दुखों से छूटकर आनंद स्वरूप सर्वव्यापक अनंत परमेश्वर में जीवात्मा का आनंद में रहता है। जो परमात्मा सर्वव्यापक जरा मृत्यु शोक क्षुधा पिपाशा रहित सत्य कर्म सत्य वचन सत्य संकल्प है, उसकी खोज और उसी को जानने की इच्छा करनी चाहिए, जिसे परमात्मा के संबंध में मुक्त जीव सब लोकों और सब कर्मों को प्राप्त होता है। आप लोगों ने बड़े ध्यान से इसको सुना, धन्यवाद। फिर मिलेंगे।
1: सत्यार्थ प्रकाश के संदर्भ में अभी आपने सुना यह विशेष कार्यक्रम।
2: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।

0: मंगलवार 23 जून की सुबह, ये नया दिन आप सभी के लिए शुभ हो। शुरू करते हैं आज की सुर्खियों के साथ। राज्यसभा में बजट पर बहसें जारी। श्रम मंत्री ने कल बजट 2026-2027 को साहसिक और जिम्मेदार बताते हुए कहा कि पेंशन प्रणाली में सुधार समय की मांग है। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लू इकोनॉमी, मैटरनिटी लीव और पैटर्निटी लीव से जुड़े कदमों का भी स्वागत किया। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम द्वारा मीन्स टेस्ट को फिलहाल स्थगित करने के फैसले पर चर्चा जारी। समाज सुरक्षा मंत्री अशोक सुभों का कहना है कि इस मामले में प्रधानमंत्री के फैसले को प्राथमिकता दी गई है और नवम मोहिस के नेता ने भी इस निर्णय का किया स्वागत। आर्टिस्ट यूनियन ने बजट 2026-2027 में कलाकारों के लिए घोषित कदमों को सकारात्मक कदम बताया और उन्हें जल्द लागू करने की अपील की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर ने लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। नए नेता के चुनाव तक वे प्रधानमंत्री पद पर बने रहेंगे। विश्व कप में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराकर अंतिम 32 में अपनी जगह पक्की कर ली है। इस मुकाबले में लियोनेल मेसी ने दोनों गोल किए और इसके साथ ही वे विश्व कप इतिहास के सबसे सफल गोल स्कोरर बन गए हैं। सुर्खियों को हम देते हैं विस्तार। बजट 2026-2027 को एक साहसिक और जिम्मेदार बजट बताते हुए श्रम मंत्री गिजाउद्दीन ने कल राज्यसभा में बजट बहस की शुरुआत की। उनका कहना है कि पेंशन प्रणाली में सुधार आवश्यक है क्योंकि मौजूदा व्यवस्था लंबे समय तक टिकाऊ नहीं रह सकती। उन्होंने ये भी कहा कि AI और ब्लू इकोनॉमी जैसे सेक्टरों में घोषित कदम ऐसे देश की नींव रख सकते हैं जो भविष्य की ओर दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है। गिजाउद्दीन को सुनते हैं।
1: Quand malgré un contexte économique international difficile et des plus incertains,
0: कठिन वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद प्रधानमंत्री ने बजट घाटे को 3.7% रखने का प्रयास किया है और सार्वजनिक कर्ज को और कम करने के प्रयास तेज हैं। ये वित्तीय अनुशासन को सुदृढ़ करने वाला बजट है। इससे मॉरिशस भविष्य की संभावनाओं के सामने बेहतर तरीके से तैयार होगा।
1: C'est un budget qui restaure la discipline fiscale tout en préparant Maurice aux opportunités de demain.
0: तो बजट 2026-2027 को एक साहसिक और जिम्मेदार बजट बताते हुए श्रम मंत्री गिजाउद्दीन ने कल इन बहसों की शुरुआत की। गिजाउद्दीन ने मैटरनिटी लीव को 1 साल तक बढ़ाने और पैटर्निटी लीव को 4 हफ्ते से बढ़ाकर 6 हफ्ते करने के फैसले का भी स्वागत किया। उन्होंने माना कि इस फैसले के बाद कुछ कंपनियां महिलाओं को नौकरी पर रखने में हिचकिचा सकती हैं, लेकिन उनका कहना है कि महिलाओं के साथ किसी भी तरह का भेद भावना हो इसके लिए कानून में पहले से ही जरूरी प्रावधान मौजूद हैं। उन्हें सुनते हैं।
1: Mais au-delà de ces garde-fous, je pense sincèrement que le fait que les 6 mois de congé soient à mi-salaire devait servir d'incitation aux employeurs.
0: मैं सोचता हूं कि ये 6 महीने कदम कंपनियों को अपनी कार्य प्रणाली पर फिर से गौर करने का अवसर देता है। इस तरह वर्क फ्रॉम होम और फ्लेक्सी टाइम को बढ़ावा दिया जा सकेगा। ये कंपनी के हित में ही होगा। माएं घर से ही काम कर सकेंगी या फ्लेक्सी टाइम लागू किया जा सकेगा। 3 से 4 दिन दफ्तर का काम भी प्रस्तावित किया जा सकता है आधी मासिक तनख्वाह के बदले।
1: Peut-être 4 fois par semaine ou 3 fois par semaine, au lieu de la laisser rester à la maison et percevoir un salaire, un mi-salaire, un demi-salaire.
0: तो कल राज्यसभा की बैठक फिर से शुरू होने पर प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने मीन्स टेस्टिंग को फिलहाल रोकने की घोषणा की। इस व्यवस्था के तहत रिटायरमेंट पेंशन पाने वालों की आय और आर्थिक स्थिति की जांच की जानी थी। समाज सुरक्षा मंत्री अशोक सुभों का कहना है कि इस मामले में आखिरकार प्रधानमंत्री के फैसले को आगे रखा गया है, भले ही आर्थिक नजरिए से मीन्स टेस्टिंग को उचित माना जा रहा था। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस मुद्दे पर सहमति नहीं बनती तो दूसरे विकल्पों पर भी विचार किया जा सकता था। अशोक सुभों ट्रेड यूनियनों के साथ बैठक के बाद कल उन्होंने पत्रकारों से बात की। उन्हें सुनते
2: हैं। Et ban ministre qui est là, ban député qui est là, nous n'apprécions ça. Et assez. Et chacun a besoin de ses conclusions. Ce n'est pas à moi de dire au Premier ministre ce qu'il a besoin de faire. C'est la réforme du means the thing you're targeting in zélé. C'est ça le mot qui Premier ministre a servi dans l'Assemblée nationale. In zélé, il y en a plusieurs implications. Mais du tout, nous avons réfléchi ensemble que nous pays pour sortir et depuis spirale d'endettement et préserve nos banaquis sociaux et qui nous aident l'économie qui solide. Hein. C'est une responsabilité de tout le monde, ça.
0: प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम द्वारा पेंशन सुधार के तहत मींस टेस्ट को फिलहाल स्थगित करने के फैसले का कई राजनीतिक और सामाजिक पक्षों ने स्वागत किया है। बजट 2026-2027 पेश किए जाने के बाद इस कदम को लेकर कई प्रतिक्रियाएं और चिंताएं सामने आई हैं और नवामोकिस के नेता पैट्रिक बेलको ने उन मर्शनों की सराहना की जिन्होंने इस बजटीय कदम के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी। उनका कहना है कि सरकार का ये फैसला दिखा है कि लोकतांत्रिक बहस में नागरिकों की भागीदारी और उनकी राय कितनी महत्वपूर्ण है, उन्हें सुनते हैं।
3: Mais encore une fois, Ban Mauricien il montré qui si dans Ban Parti politique et dans Ban Yes Men.
0: मर्शनों ने एक बार फिर दिखाया है कि अगर राजनीतिक पार्टियों में Yes Men है पर हम मैदानी स्तर पर कार्यरत हैं, हम ये रवैया नहीं अपना सकते और ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। हमारे अधिकारों का पालन होना चाहिए। ये जरूरी है कि मर्शन जनता इस अनुभव से सीखे।
3: Donc, il est important que Ban Mauricien tire leçon de ce qui peut passer.
0: आज सुबह 8:15 जनरल वर्कर्स फेडरेशन से अश्विन गुडी पेंशन व्यवस्था में प्रस्तावित सुधारों पर अपनी बात रखेंगे। इसके बाद पीएमएसडी के नेता जावेद जुवाल आज सुबह 10:00 एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे बजट 2026-2027 में घोषित कदमों पर भी प्रतिक्रिया देंगे। बजट 2026-2027 में कलाकारों और सांस्कृतिक सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए घोषित कदमों का आर्टिस्ट यूनियन ने स्वागत किया है। एक बयान में संगठन ने कहा कि ये फैसले उन मांगों को ध्यान में रखकर किए गए हैं जिन्हें वे कई वर्षों से उठा रहा था और आर्टिस्ट यूनियन के अनुसार ये पूरे कला और संस्कृति सेक्टर के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। संगठन ने सरकार से इन घोषणाओं को जल्द अमल में लाने की अपील की, साथ ही कलाकारों को बेहतर पहचान और सामाजिक सुरक्षा दिलाने के लिए अपना सहयोग जारी रखने की भी बात कही। विदेश स्तर पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर कीर स्टार्मर ने लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगले आम चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करने के लिए वे सबसे उपयुक्त व्यक्ति नहीं हैं। नए नेता के चयन तक वे प्रधानमंत्री बने रहेंगे। लेबर पार्टी में नेतृत्व चुनाव की प्रक्रिया 9 जुलाई से शुरू होगी। इस बीच मॉकफील्ड उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल करने वाले एंडी बर्नहम को उनका संभावित उत्तराधिकारी माना जा रहा है। विश्व कप में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर अंतिम 32 में अपनी जगह पक्की कर ली है। इस मुकाबले में लियोनेल मेसी ने दोनों गोल किए और इसके साथ ही वे विश्व कप इतिहास के सबसे सफल गोल स्कोरर बन गए हैं। मेसी के नाम अब विश्व कप में 18 गोल हो गए हैं। में चले जानते हैं कि मौसम का हाल कैसा रहेगा। हमारे इलाके मस्करविंस के दक्षिण पश्चिम में एक एंटीसाइक्लोन पाया जा रहा है जिसकी वजह से हमारे इलाके पर ठंडी और सामान्य हवा की लहरों का असर जारी रहेगा। पूर्वानुमान है कि आज सुबह के दौरान विशेषकर ऊंचे इलाकों और हवाई ढलानों पर रह रहकर बरसात हो सकती है। अन्य जगहों पर धूप खिली रहेगी। रात के मौसम की बात करें तो पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लाटो पर बादल घिरे रहेंगे। तापमान न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटो पर 14-16 अधिकतम 20-23 सेल्सियस न्यूनतम अन्य इलाकों पर 18-20 अधिकतम 25-27 सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से बहेगी जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा, विशेषकर दक्षिण में 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में नहीं जाने की अपील की जाती है। सूर्योदय 7:45 और सूर्यास्त 5:39 पर।

0: तो देश विदेश और मौसम संबंधी जानकारियों के साथ हम पहुंच गए हैं इस बुलेटिन के अंत में। तकनीकी सहायक हमारे साथ रहे कादिर, उनको हम धन्यवाद देते हैं। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। अवेन्यू ला सिरेंग पाल्मा रोड कटोबोन में 83 साल की 83 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सुभावती खुरबुर की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम दुखिया, लोग उन्हें बिदंती के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज दोपहर बाद 1 बजे उन्हीं के मकान कटोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पाल्मा कटोबोन की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। अवेन्यू मेयर तेरेजा बासिन कटोबोन में 101 साल की 101 ईयर्स ओल्ड किस्नाउती घुराऊ की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम विदेशी, लोग उन्हें केवली दादी लोकी के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज दिन के 1:30 बजे उनके बेटे नंदराज घुराऊ के मकान कटोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पाल्मा कटोबोन की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:30 PM। लावानी वाक्वामे 60 साल के 60 ईयर्स ओल्ड सत्याराव लिम्बिया की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें जीतन के नाम से अधिक जानती थी। उनके अर्थी आज दोपहर बाद 2 बजे उन्हीं के मकान वाक्वा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। कारोलिन रोड वाले दे प्रेत में 58 साल की 58 ईयर्स ओल्ड की धर्मावती रामफल की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम भुजावन, लोग उन्हें बबीता के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज दिन के 11:30 बजे उन्हीं के मकान वाले दे प्रेत से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही भोले वाले दे प्रेत की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11:30 AM। बुबन रोड पिलग्रें सेवास्तोपोल में 73 साल की 73 ईयर्स ओल्ड की श्री जगदत्त घुरा की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 11:30 बजे उनकी पत्नी मीला घुरा के मकान सेवास्तोपोल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौदेमास की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11:30 AM। कुसियाल लेन पाल्मा कटोबोन में 76 साल की 76 ईयर्स ओल्ड के श्री किरालाल मना की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें ज्ञान के नाम से अधिक जानती थी। उनके अर्थी आज दिन की 1 बजे उन्हीं के मकान कटोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पाल्मा की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। बॉशरी रोड पेटी वेजे सैंपियामे 78 साल के 78 ईयर्स ओल्ड भगवंत राम भजन की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम रघुबर, लोग उन्हें कुमारी के नाम से अधिक जानती थी। उनके अर्थी आज दोपहर बाद 2 बजे उनके दामाद डॉक्टर संजय बेगू के मकान सैंपिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैकड़ों सैंपिया की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। आले जाक बॉम्बू में 82 साल की 82 ईयर्स ओल्ड की बीसी पति मुनीराम की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम चितामन, उनके अर्थी आज दिन के 1:30 बजे उनके बेटे ज्ञानदेव मुनीराम के मकान बॉम्बू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोताई सैंपिया बॉम्बू की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:30 PM। दालिया रोड रिशमो में 62 साल के 62 ईयर्स ओल्ड के गणेशन मुचिया की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें दासन के नाम से ज़्यादा जानते थे और वे पहले कौंदुमास SSS में अध्यापक के तौर पर काम किया करते थे। उनके अर्थी आज दिन के 1:30 बजे उनकी बेटी कविदा मुचिया के मकान फ्लैक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौंदुमास की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:30 PM। विशाल अंचराज समसुंदर रोड बेलवेडियर में 65 साल की 65 ईयर्स ओल्ड की कुसिला अंचराज की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम जीवन, लोग उन्हें सीला के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज दिन के 11 बजे उनकी बेटी विशाल अंचराज के मकान बेलवेडियर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कौंदेमास पावे की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। कालीमाल रोड ग्रानिवर साउथ ईस्ट में

0: 77 साल की 75 ईयर्स ओल्ड की श्री बसदेव रघुनाथ की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें गोप के नाम से अधिक जानती थी। उनके अर्थी आज दिन की 11 बजे उनकी पत्नी मिसेज मानती रघुनाथ के मकान ग्रैंड रिवर साउथ ईस्ट से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। स्कूल लेन दागुतिया में 48 साल की 48 ईयर्स ओल्ड रिश्वती खुदी की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम नियासू, लोग उन्हें सजनी के नाम से अधिक जानती थी। उनके अर्थी आज दिन के 10:30 बजे उनके पति रामेश मोहन प्रसाद के मकान दागुचिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैकोस्तों सैंपिया की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10:30 AM। आवेनी सीते पद को तमारे में 47 ईयर्स ओल्ड के श्री नारायण देव निमाई की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें बबल के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज सुबह 3 बजे उन्हीं के मकान तमारे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिवियनुआ की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। बस्के लेन लाक्वाजे शेबेल क्रोकायू में 86 साल के 86 ईयर्स ओल्ड के श्री हेमराज कुंजू बिहारी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे उन्हीं के मकान खोकायू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिश्लू की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। अनिरुद्ध जागेसर रोड यूनियन वेल में 81 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती संता जागेसर की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम बारीलाल, लोग उन्हें मैडम अनिरुद्ध के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी आज दिन के 1:30 बजे उन्हीं के मकान यूनियन वेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्रणमानियों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:30 PM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
2: गायत्री जयंती के संदर्भ में वेद माता गायत्री शक्ति पीठ मंगलवार 23 जून को शाम 4 बजे कलश यात्रा और दीप यज्ञ का आयोजन कर रहा है। सत्यार्थ प्रकाश मास के उपलक्ष में आर्य सभा मॉरिशस मंगलवार 23 जून को मलिंगा आर्य समाज में शाम के 4 बजे एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, जिसमें भारत से आए हुए प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार शास्त्री सत्यार्थ प्रकाश पर प्रवचन देंगे।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।

0: 819 kilohertz. This is Radio Marches. Radio Marches.
1: Sports News. का प्यार नमस्कार, स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। अर्जेंटीना का मसीहा, फुटबॉल का बादशाह लियोनेल मेसी का महारिकॉर्ड, फुटबॉल के इतिहास में नया कीर्तिमान स्थापित। लियोनेल मेसी ने 18 वर्ल्ड कप गोल दागकर फीफा फुटबॉल इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। मेसी अकेले अर्जेंटीना को कंधे में लेकर नॉकआउट राउंड में पहुंचा। पहले मैच में हैट्रिक, कल एक डबल ऑस्ट्रिया के खिलाफ। लियोनेल मेसी अब फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने वाला खिलाड़ी बन गया है। मेसी जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोजे के 16 गोल और ब्राजील के माता के 17 गोल को पीछे छोड़ते हुए 18 वर्ल्ड कप गोल का नया रिकॉर्ड बना पाया। ऑस्ट्रिया के खिलाफ शुरुआत में मेसी एक पेनाल्टी मिस कर गया, लेकिन शानदार वापसी रही। खेल के 38वें मिनट पर 38th

मिनट में पहला गोल दागकर इतिहास रचा। इसके बाद मैच के आखिरी पलों में इंजुरी टाइम के 5वें मिनट में दूसरा गोल बनाकर अल्बी सेलेस्टे को जीत के लिए जीत पक्की की और अर्जेंटीना आराम से नॉकआउट राउंड में। मेसी कल 14 जून को अपना बर्थडे मनाएगा, 39 साल का है। 39 साल का इससे अच्छा जन्मदिन तोहफा और क्या हो सकता है। याद दिला दें 2016 में 10 साल पहले लियोनेल मेसी इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायर हो चुका था जब कोपा अमेरिका के फाइनल में हार हुई थी चिली के खिलाफ, जिसमें मेसी एक पेनाल्टी मिस कर गया था। पेनाल्टी शूटआउट के दौरान उसने कहा था, फॉर मी द नेशनल टीम इज ओवर, आई हैव डन ऑल आई कैन, अर्थात मेरे लिए अर्जेंटीना के साथ सफर पूरा हुआ, जितना कर पाया मैंने किया। पर जब फैसला बदल कर वापस आया तब मेसी ही मेसी, दो कोपा अमेरिका और 2022 में फीफा वर्ल्ड कप। कल जब मेसी ने अपना डबल पूरा किया तब बीबीसी कमेंटेटर स्टीव बाउर ने कहा, इट्स अनदर इमोर्टल मेसी मोमेंट, मेसी को फुटबॉल दुनिया की ओर से मेर्सी, आजीवन यादगार अमर पल मेसी की ओर से। एक तरफ मेसी का डबल तो दूसरे ग्रुप में अर्लिंग हालैंड का भी डबल। नॉर्वे ने 3-2 से सेनेगल को हराया। फर्स्ट हाफ में पेडरसन का गोल, फिर हालैंड का डबल। सेकंड हाफ में सेनेगल के लिए दोनों गोल इस्माइल असार की ओर से रहे। नॉर्वे 3-2। इस जीत से नॉर्वे नॉकआउट राउंड में, जबकि सेनेगल के पास एक भी अंक नहीं है। नॉर्वे का अगला मैच फ्रांस के खिलाफ होगा, जबकि सेनेगल खेलेगा इराक के खिलाफ। सो नॉर्वे फ्रांस देखा जाएगा कौन ग्रुप टॉप कर जाएगा। मेसी का डबल, हालैंड का डबल, डबल का हैट्रिक पूरा किया एम्बापे ने। फ्रांस 3-0, किलियान एम्बापे की ओर से 2 गोल और 1 डेम्बेले की ओर से। खराब मौसम के कारण मैच का सेकंड हाफ 2 घंटे बाद शुरू करना पड़ा। किलियान एम्बापे अब मेसी के पीछे हैं वर्ल्ड कप में ऑल टाइम लीडिंग गोल स्कोरर ताज के लिए। लियोनेल मेसी के पास है 18 गोल, एम्बापे के पास है 16। कांटेदार मुकाबला होगा इन दोनों के बीच इस वर्ल्ड कप में। आज रात ग्रुप के और ग्रुप एल के 2 मैच खेले जाएंगे, पोर्टुगल वर्सेस उज्बेकिस्तान ग्रुप के में ये 9 बजे होगा और इंग्लैंड वर्सेस गाना ग्रुप एल में मिडनाइट किक ऑफ। पोर्टुगल को संभलना होगा, पहला मैच ड्रॉ करके खुद पर दबाव डाल रही है रोनाल्डो की टीम। कोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के खिलाफ शॉकिंग 0-0 के ड्रॉ से सीखना होगा। आखिरी मैच कोलंबिया के खिलाफ है, इसलिए आज जीतना बहुत जरूरी है। उज्बेकिस्तान की टीम पहली बार वर्ल्ड कप में खेल रही है, कोलंबिया के खिलाफ 3-1 की हार हुई थी। इस टीम में मैनचेस्टर सिटी का डिफेंडर अब्दुल कोदिर कुसानोव है, उसका काम होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर नजर रखना। रोनाल्डो के फॉर्म पर बहुत प्रश्न उठ रहे हैं, पहले मैच में खराब प्रदर्शन रहा। मेजर टूर्नामेंट में पिछले 10 मैचों में रोनाल्डो ने अभी तक स्कोर नहीं किया है। ओप्टा एनालिस्ट के अनुसार पोर्टुगल के जीतने के चांसेस है 82%, ड्रॉ 12 और उज्बेकिस्तान 6%। इंग्लैंड वर्सेस गाना टोमास टुरेल के 3 लायंस आज ही नॉकआउट स्टेज के लिए टिकट बुक करना चाहते हैं। पहले मैच में लाजवाब आक्रामक खेल पर 4 गोल बने, पर डिफेंस में छेद है। 2 गोल कंसीड करना चिंता का विषय है। दूसरी ओर गाना को पनामा को हराने में जमीन आसमान एक करना पड़ा था, काफी कठिनाई हुई थी 1-0 की जीत, वो भी स्टॉपेज टाइम के आखिरी मिनट में। गाना में अंतोन सेमेन्यो खेलता है, जो इंग्लैंड के कई खिलाड़ियों को अच्छी तरह से जानता है। प्रेसिंग फुटबॉल इंग्लैंड की ओर से, पर गाना काउंटर अटैक पर प्रहार करना चाहेगा। जो जीतेगा क्वालिफाई हो जाएगा, चाहे वो पहले, दूसरे या बेस्ट थर्ड के टिकट पर। कल सुबह 3 बजे पनामा वर्सेस क्रोएशिया, दोनों की ओर से हार हुई थी, इसलिए जियो या मरो वाला मैच होगा। सुबह 6 बजे कल कोलंबिया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और इसी समय मैच चल रहा है जॉर्डन वर्सेस अल्जीरिया। टेनिस में पूर्व विंबलडन चैंपियन मार्केटा वोंद्रोसुवा को एंटी डोपिंग टेस्ट कराने से इनकार करने पर 4 सालों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। डोपिंग कंट्रोल ऑफिसर

उसके घर आया था, पर वोंदरुसोवा ने टेस्ट करने से इनकार किया। 2023 में वोंदरुसोवा पहली खिलाड़ी बनी थी जो अनसीडेड थी पर चैंपियन बनी थी। इन दिनों विंबलडन के क्वालिफाइंग मैच खेले जा रहे हैं। सो फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में एक नया पन्ना खुला।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस और एमबीसी के मिलल जुलल सहयोग से प्रस्तुत बाटे नू त्रावाय नू लावेनिया एग्रीकल्चर की सिक्तिया में नीति एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड जन रॉयल रोड मोताबा में पावल जाला चार मेल ग्रेड टू फील्ड क्रॉप वर्कर्स खोजता आपकी कासों करी खातिर टेलीफोनी करिया 52 54 40 66 एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 31 मानी की 31 जुलाई 2026। एग्रीकल्चर के ही सेक्टर में तरशीश हाइड्रोफार्म कंपनी लिमिटेड जन कमलन रोड पोंकोलविल में पावल जला चार मेल ग्रेड टू फील्ड क्रॉप वर्कर्स खोजता एप्लीकेशन करे खातिर टेलीफोनी करिया इन नंबर पर 59 73 24 36। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 31 जुलाई 2026। मैन्युफैक्चरिंग के सिक्तिया में किसविच स्पाइसेस लिमिटेड जन रॉयल रोड लावेंटर में पावल जाला तीन मेल पैकिंग ऑपरेटर्स खोजता जिनकर एक बरिस के एक्सपीरियंस बाटे एप्लीकेशन करे खातिर टेलीफोनी करिया 52 51 77 42 नता हौजे पहुंच जाइया एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 16 जुलाई 2026। मैन्युफैक्चरिंग के ही सेक्टर में एएनटी एंटरप्राइज लिमिटेड जो रॉयल रोड कारोलिन में पावल जला दुगो टेलर्स खोजता जिनकर 5 वर्ष के एक्सपीरियंस बाटे एप्लीकेशन करे खातिर टेलीफोनी करिया 57 07 20 75 59 62 17 32 नता रॉयल रोड कारोलिन ही जाके अपन अर्जी भर दिया एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 30 जून 2026। मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में एएचपी हमिद कंपनी लिमिटेड जन बस गीत रोड ब्रिजेवेडिया में पावल जाला एगो मेल ग्रेड टू वेल्डर खोजता जिकर फॉर्म 3 बाटे और एगो मेल हेल्पर खोजता जिकर फॉर्म 3 संगे एक बरिस के एक्सपीरियंस बाटे फर्नीचर पेंटिंग में एप्लीकेशन करे खातिर टेलीफोनी करिया 58 84 97 60 59 10 43 92 नता सकबा हौजे जाके अपन एप्लीकेशन कर दे एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 15 जुलाई 2026। पोल्ट्री की सिक्तिया में BZM मार्केटिंग लिमिटेड जन शेनफिल रोड रिविया जुरांपा में पावल जाला दुगो मेल ग्रेड टू पोल्ट्री फार्म वर्कर्स खोजता जिनकर 12 महीना के एक्सपीरियंस बाटे एप्लीकेशन करे खातिर टेलीफोनी करिया 52 55 83 75। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 23 जून 2026। मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में जेनविन कंपनी लिमिटेड जन ग्रोबियो न्यू ग्रोव में पावल जाला दुगो मेल क्राफ्ट्समैन खोजता जिनकर एससी संगे 2 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे और खोजता एगो कैंडल मेकर एप्लीकेशन करे खातिर अपन सीवी मेल द्वारा ई पता पर विदा कर दी है जेनविन कंपनी लिमिटेड @gmail.com न तो टेलीफोनी करिया 59 07 74 13 न तो 57 99 07 39। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 23 जून 2026। मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में Alcedo लिमिटेड जो मोमास्काल पेटी राफ्रे में पावल जाला एगो टेक्नीशियन खोजता और ये भी याद रखिया कि एगो ट्रेनिंग देवल जाए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स फिशिंग पर्पस खातिर एप्लीकेशन करे खातिर हौजे पहुंच जाइया न तो जस्ती जानकारी खोज पर तो टेलीफोनी करिया 262 79 79 न तो 57 77 70 89। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 9 दिसंबर 2026। मैन्युफैक्चरिंग के ही सेक्टर में KKD ज्वेलरी

एंड कंपनी लिमिटेड जिन कालीमाई रोड रोशनवा में पावल जाला दुगो मेल ज्वेलरी प्रोडक्शन मशीन ऑपरेटर्स को जता जिनकर छाओ बरिस के एक्सपीरियंस बाटे एप्लीकेशन करे खातिर टेलीफोनी करिया इन नंबर पर 57 89 63 15। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख 23 जून 2026। मैन्युफैक्चरिंग के ही सेक्टर में इंटेग्रिटी मेटल वर्क्स लिमिटेड जिन ओल्ड केडी रोड पोर्ट्रिस में पावल चला 5 मेल टर्नर्स खोजता जिनकर 5 से 10 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे 5 मेल फिटर्स जिनकर 5 से 10 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे और 5 मेल CNC ऑपरेटर्स जिनकर 5 से 10 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे एप्लीकेशन करे खातिर टेलीफोनी करिया 206 33 33। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख 27 मानी के 27 जून 2026। कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में सत्यम देव इमांडी जन क्रिमेशन रोड रोशनवा में पावल जाला एगो मेल हैंडीवर्क खोजता जिनका जेकर 6 महीना के एक्सपीरियंस बाटे एप्लीकेशन करे खातिर टेलीफोनी करिया 52 58 04 05। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख 30 जून 2026। कंस्ट्रक्शन के ही सेक्टर में एस स्कैफोल्डिंग्स कंपनी लिमिटेड जन क्रिमेशन रोड बुआ रोश में पावल जाला 30 मेल हेल्पर्स खोजता जिनकर 2 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे एप्लीकेशन करे खातिर टेलीफोनी करिया 282 30 34 और एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख 23 जून 2026। रिटेल ट्रेड के सेक्टर में टी सिंह कंपनी लिमिटेड जन लो 85 एवेन्यू एग्लावेटियर मोसेलमा कॉइटियर ब्रह्मस्थान फ्लैक में पावल जाला 15 फीमेल हैंड पैकर्स खोजता जिनकर एससी संगे 1 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे एप्लीकेशन करे खातिर हौजे पहुंच जाइया न त जस्ती जानकारी खोजब त टेलीफोनी करिया 57 47 51 59 न त 52 51 26 20। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख 27 जून 2026। ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में सिंपली प्लस कंपनी लिमिटेड जन लोलजी लेन मोटाबा में पावल जाला 4 मेल बस ड्राइवर्स खोजता जिनकर 5 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे और एगो मेल हैंडी वर्कर जेकर 5 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे एप्लीकेशन करे खातिर टेलीफोनी करिया 52 51 89 69। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख 23 जून 2026। होटल के सेक्टर में हॉलिडे एंड लेजर रिसोर्ट्स लिमिटेड लक्स ग्रैंड गोब जन पॉइंट रेजान ग्रैंड गोब में पावल जाला 4 फीमेल वैलेट्स खोजता जिनकर 3 से 4 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे और खोजता 2 फीमेल वेट्रेसेस जिनकर 3 से 4 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे एप्लीकेशन करे खातिर हौजे पहुंच जाइया न त टेलीफोनी सकबा करे 204 91 91। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख 26 जून 2026। हेल्थ एंड वेलनेस के सेक्टर में किसविच स्पा एंड सैलून लिमिटेड जन रॉयल रोड लावंचुआ में पावल जाला 2 ब्यूटिशियंस खोजता जिनकर 2 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे एप्लीकेशन करे खातिर टेलीफोनी करिया 52 51 77 42 न त हौजे पहुंच जाइया एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख 27 जून 2026। ऑटोमेटिव के सेक्टर में गाराज ऑटो रिपेयर लिमिटेड जन शिवाला रोड मोगो में पावल जाला 2 गो मेल मोटो व्हीकल मैकेनिक्स खोजता जिनकर 2 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे एप्लीकेशन करे खातिर टेलीफोनी करिया 57 87 29 19। नतापन सीवी ईमेल द्वारा ई पता पर विदा कर दी है krishnaramphal@gmail.com। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख 30 जून 2026। क्लीनिंग सर्विसेज के सेक्टर में ड्राई क्लीनिंग सर्विसेज लिमिटेड जन रॉयल रोड काशी पोर्ट्रिस में पावल जाला

34 माने कि 34 फैक्ट्री ऑपरेटर्स खोजाता जिनका सिपे बाते और खोजाता 10 गुड्स व्हीकल ड्राइवर्स जिनकर वैलिड गुड्स व्हीकल लाइसेंस बाटे और खोजाता 10 प्रोडक्शन सुपरवाइजर्स एप्लीकेशन करे खातिर लेंदी से सुकलेख फजीर 8 बजे से सांझ के 4 बज के आधा लेख टेलीफोनी करिया 207-2000 नता अपन सीवी ईमेल द्वारा ई पता पर विदा कर दी है humancapital@dcs.mu एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 30 जून 2026। क्लीनिंग सर्विसेज के ही सेक्टर में एन कासेट कार वॉश लिमिटेड जंटोमी दारिफात कोनर रिटर स्ट्रीट क्यूपिप 1742 में पावल जाला 3 मेल कार वॉलेटर्स खोजता जिनकर एक बार इसके एक्सपीरियंस बाटे एप्लीकेशन करे खातिर टेलीफोनी करिया 57-51-39-61 और एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 23 जून 2026। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के सेक्टर में सादेक सेक्रेटर या एगो सीनियर प्रोग्राम ऑफिसर आईसीटी खोजता साथ में खोजता एगो ऑफिसर रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स जोन कैंडिडा इंटरेस्टेड है वन उलोक के चाहेला अपन एप्लीकेशन एगो सॉफ्ट कॉपी में ही वाने की वर्ड फॉर्मेट में विदा करे के ऊ भी शुक्रवार 26 जून 2026 दोपहर के 2 बजे लेख ई पता पर द सेक्रेटरी फॉर फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स रीजनल इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड साथ में ई ईमेल एड्रेस पर विदा कर दी है mofoc@govmu.org। याद रखिया कि सादेक एप्लीकेशन फॉर्म जोन बाटे निमन से चाहेला भर के साइन करके और एगो कवरिंग लेटर जोन में तोहर क्वालिफिकेशन तोहर एक्सपीरियंस तोहर कॉम्पिटेंसीज सब चाहेला होए के हाई वैकेंसी के लेके और तोहर जोन अपडेटेड करिकुलम वीटे जोन बाटे उ नई चाहेला 5 पेजेस से जस्ती होए के और चाहेला तोहर डिग्री डिप्लोमा और सर्टिफिकेट जोन बाटे सब सर्टिफाइड कॉपीज चाहेला होए के जस्ती जानकारी खोजबा त मिनिस्ट्री के ई वेबसाइट विजिट करिया http://foreign.govmu.org और सादेक सेक्रेटरिया के वेबसाइट है https://www.sadec.inter। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 26 जून 2026। जे पब्लिक सेक्टर में काम खोजत हुआ तो ये भी सुनते चला कि पब्लिक सर्विस कमीशन के तले मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस एगो ईईजी टेक्नीशियन खोजता एप्लीकेशन करे खातिर ई वेबसाइट विजिट करिया https://psc.govmu.org/। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 29 माने की 29 जून 2026। मिनिस्ट्री ऑफ वेल्थ एंड वेलनेस एगो बायोमेडिकल इंजीनियर और सीनियर बायोमेडिकल इंजीनियर हेल्थ खोजता एप्लीकेशन करे खातिर ई वेबसाइट विजिट करिया https://psc.govmu.org/। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 30 जून 2026। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कॉर्पोरेट एंड बिजनेस रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट एगो मैनेजर XBRL खोजता एप्लीकेशन करे खातिर ई वेबसाइट विजिट करिया https://psc.govmu.org/ और एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 30 जून 2026। साथ में पुलिस डिपार्टमेंट एगो केटरिंग सुपरवाइजर खोजता और एप्लीकेशन करे खातिर ई वेबसाइट विजिट करिया https://psc.govmu.org/ और एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 6 जुलाई 2026। प्राइवेट हाउसहोल्ड के सेक्टर में प्रोविडेंस के रीजन खातिर एगो हाउसमेट खोजल जाता एप्लीकेशन करे खातिर टेलीफोनी करिया ईआईसी काचे मिलिटेर के नंबर पर 435-55-30 न 435-33-52। ये भी सुनते चला कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस और म्युनिसिपल काउंसिल ऑफ कैथोबो

0: डॉट.कॉम के सहयोग से बिफे 25 जून के फजीर 9:30 से सपहर के 3 लेख एगो जॉब एंड ट्रेनिंग फेयर आयोजित करा जाता, जहां पर ही प्राइवेट कंपनीज साथ में पॉलिटेक्निक्स मॉरिशस, एकेडमी ऑफ डिजाइन एंड इनोवेशन, करियर्स गाइडेंस सर्विस, मॉरिशस इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग MITD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट काउंसिल मानी के HRDC हौजा परी रहियंस। जस्ती जानकारी खोजबा ता जन हेल्प डेस्क है 86003, कॉन्टेक्ट करिया न ता जन ईमेल एड्रेस है उहा mauritiusjobs@govmu.org। ता ए रहल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस और MBC के मिलल जुलल सहयोग से नू ट्रावाई नू लाविनिया।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: 7:17 होने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जारी की गई एक विज्ञप्ति पर नजर डालते चले। ये विज्ञप्ति है मौसलमा तेगासिन और मौसलमा लेडी बॉकले, साथ ही साथ सुयाक और NHDC तेगासिन के निवासियों को सूचित किया जाता है कि गुरुवार 25 जून को सुबह 8:30 से लेकर दिन के 3 के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिजली की सप्लाई को सुचारू रूप से जारी कर दिया जाएगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी हैं और ये विज्ञप्ति जारी की गई थी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा। आइए आगे का कार्यक्रम जारी रखते चले।
3: On the hour, every hour, Radio Mauritius.
4: सुबह का नजराना लाए खुशियां हजार, रेडियो मॉरिशस पर

0: रेडियो मॉरिशस की लहरों पर सुबह का नजराना कार्यक्रम सुनने वाले हमारे समस्त श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। माइक पर आपका साथ दे रही है रत्ना। अभी से लेकर दिन के 11 बजे तक हम आपके साथ आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे और इस समय स्टूडियो की घड़ी में 7:18 और 15 सेकेंड। तो आइए अधिक देर न करते हुए रेडियो मॉरिशस पर मंगलवार के आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं चिंतन के साथ, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं डॉक्टर शांति मुहाबिया। ये उनका स्वागत करते हैं।
1: मूल्य, सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: कम इच्छाएं ज्यादा शांति देती हैं, जबकि लालच बेचैनी बढ़ाता है। स्मरण रहे, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है। जो मिला है उसका आभार मानिए और देने वाले को धन्यवाद कीजिए।

0: दिल की बहार सुबह का नजराना रेडियो मॉरिशस पर।
1: रेडियो मॉरिशस,
2: रेडियो मॉरिशस,
1: झलकियां,
2: झलकियां।

भाई स्वीकारना, सीखना, सुधारना, बस यही तो है जिंदगी। और चलिए, जिंदगी की गाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली है। हर नई सुबह हमें अपनी कहानी फिर से लिखने का एक नया मौका देती है। और इस प्यारे से गीत के साथ हमने की है एक बहुत ही बढ़िया सी पहल, और ये है फिल्म सावन का गीत जो हमने अभी अभी सुना लता जी की बहुत ही प्यारी सी आवाज़ में। कई लोग तो मुझसे ये कहते हैं कहाँ से ढूंढ लाती हैं ये गाने। वही बस मिल जाते हैं आपकी दया से, आपकी कृपा से और ऊपर वाले के आशीर्वाद से। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए झलकियों

के साथ आगे बढ़ते हैं और ये गाने जो है हम आपके लिए जरूर सजाएंगे अभी थोड़ी ही देर में झलकियों के बाद। तो आज के इस कार्यक्रम में आपको बताते चले, बेशक इस वक्त सुबह का नजराना कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रत्ना के साथ, बेहतरीन पुराने गीतों का अनसुने गीतों का ये कार्यक्रम हम जरूर जारी रखेंगे और 8 बजे भोजपुरी समाचारों के साथ जुड़ेंगे। 8:15 बजे आपकी मुलाकात करवाएंगे एक 80s के अभिनेता के साथ। बिल्कुल थोड़ी देर के लिए अभी इंतज़ार कीजिए, कौन है अभी आपको थोड़ी देर में ही बताएंगे। और बिल्कुल 8:50 पर हमारी धरोहर कार्यक्रम किरण जानकी की प्रस्तुति में भोजपुरी गीत का आनंद उठाते हुए आगे बढ़ेंगे। 9 बजे के समाचारों के बाद आज की चर्चा कार्यक्रम जारी रखा जाएगा जहां पर प्रस्तुतिकरण होगी सुमिता सरकार की। और आज का ये कार्यक्रम जी हाँ म्यूजिक डे पर आधारित रहेगा, जिसमें आज के इस कार्यक्रम के हमारे जो अतिथि होंगे वो होंगे IGCIC के डायरेक्टर श्रीमान रंजन सिंह, साथ होंगे श्रीमान निर्मलया सेन और श्रीमान कुणाल काले। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण रेडियो मॉरिशस और MBC के तीसरे चैनल पर आप सुन पाएंगे, देख पाएंगे और MBC के फेसबुक पेज पर भी आप इसे फॉलो कर पाएंगे। इसी कार्यक्रम का रीब्रॉडकास्ट किया जाएगा 3:00 बजे से 4 बजे के बीच। ये कार्यक्रम सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच रखा जाएगा। 10 बजे के समाचारों के बाद पुनः मैं आपका साथ दूंगी भक्ति धारा कार्यक्रम में और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन पाएंगे वेद सुधा का कार्यक्रम, जिसे प्रस्तुत करेंगे आचार्य सुदेश बद्री जी। वैसे हमारा और आपका साथ रहेगा 11 बजे तक। 11 बजे के समाचारों के बाद आप विविध भाषाओं के कार्यक्रमों का आनंद उठा पाएंगे, जिसकी शुरुआत होगी शम्मे फरोजा उर्दू कार्यक्रम के साथ, पेशकश होगी सैयदा सुबाई की। 12 बजे वर्षा लेकर आएंगी तेलुगु भाषा का कार्यक्रम। 12:30 बजे आपका मनोरंजन किया जाएगा मराठी गीतों के कार्यक्रम के साथ, जिसे प्रस्तुत करेंगी सीताबाई दरमिया। 1 बजे आरसी लेकर आएंगी तमिल भाषा का कार्यक्रम। 2:45 बजे गुजराती गीतों के कार्यक्रमों के साथ ये कारवा आगे बढ़ेगा, जिसे प्रस्तुत करेंगी अमिता। ठीक 2 बजे मैंडरीन का कार्यक्रम डेविड की प्रस्तुति में। 2:30 बजे दैनिक कार्यक्रम आपकी पसंद, जिसे प्रस्तुत किया जाएगा रोशनी द्वारा और ये कार्यक्रम जारी रखा जाएगा 4:00 बजे तक। 4 बजे कलाईवानी वीरन लेकर आएंगी तमिल भाषा का कार्यक्रम, 1 घंटे का सफर रहेगा। ठीक 5 बजे भूले बिस्तरे गीत पुराने गीतों का ये सफर उषा की प्रस्तुति में। 6:00 बजे आप सुन पाएंगे देश विदेश की खबरें समाचार बुलेटिन में। 6:30 बजे हांगहांग की प्रस्तुति में मैंडरीन का कार्यक्रम। 7:00 बजे पूवना की प्रस्तुति में तमिल भाषा का कार्यक्रम चलेगा। 7:30 बजे कृतिका लेकर आएंगी तेलुगु भाषा का कार्यक्रम और उसके तुरंत बाद 7:50 पर आप सुन पाएंगे मराठी गीतों का कार्यक्रम श्री श्रामा की प्रस्तुति में। 8:10 पर भजले प्रभु का नाम भक्ति में यात्रा में आपका साथ देंगी देवीना। 8:40 पर महफिल शब ये उर्दू भाषा का कार्यक्रम पेशकश होगी निसार अख्तर की। 9:00 बजे से 11:00 बजे के बीच भोजपुरी तड़का कार्यक्रम, जिसे प्रस्तुत किया जाएगा उषा कौर द्वारा। और 11:00 बजे से 12:00 बजे के बीच सुनहरे पल का सफर नीतू शाह की प्रस्तुति में। 12:00 बजे से कल सुबह 6 बजे तक ओवरनाइट प्लेलिस्ट जो हमारे प्रोडक्शन असिस्टेंट द्वारा सजाई जाएगी। तो ये थी रेडियो मॉरिशस की सूची और आपको याद दिला दे आज बिल्कुल 2:00 से 3:00 बजे से 3 बजे के बीच मैं पुनः आपका साथ दूंगी उड़ान की कहानी में, जहां पर हमारे साथ जुड़ेंगी श्रीमती प्रेमिला पदारत। तो ज़रूर हमारा साथ दीजिएगा। वे एक बेबी सिटर को संभालती हैं, बेबी सिटिंग का जैसे वो कार्य करती हैं और साथ ही साथ छोटे बच्चों को की परवरिश यानी नर्सरी संभालती हैं। बिल्कुल उनका सफ़र रहेगा आज उड़ान की कहानी में, उन्हीं की कहानी होगी तो ज़रूर भूलिएगा नहीं। और इस समय स्टूडियो की घड़ी में 7:30, तो चलिए सुबह का नजराना कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं पुराने गीतों के साथ और इसी के साथ लेकर आए हैं एक और ऐसा लाजवाब सा गीत। ये है 57 के दौर का गाना और मोहम्मद रफ़ी और लता जी की प्यारी सी आवाज़ में। फिल्म है नौशेर वाले दिल में। बस इस बात का ही तो सबर है कि ऊपर वाले

सुबह का नजराना कार्यक्रम को जारी रखेंगे पुराने गीतों के सफर में। आज हम लेकर आए हैं कुछ ऐसी ही सिलेक्शन को और हर एक गीत में एक अलग सा जादू। भाई रिश्ते अगर जरूरतों से जुड़े हों तो कभी खुशी नहीं दे सकते, पर रिश्ते अगर जज्बातों से जुड़े हों तो कभी साथ नहीं छोड़ सकते। और हमारा और आपका जो रिश्ता है वो जज्बात का रिश्ता है, ज़रूरत का नहीं। तो चलिए इसी के साथ बेचैन दिल खोई सी नज़र, और ये गाना है यहूदी फिल्म से लिया हुआ गीता दत्त और लता जी की प्यारी सी आवाज़ में। और इसी गीत के बाद आते हैं छोटी सी बात को लेकर, कहीं मत जाइएगा।

0: की चमचमाती किरणों के साथ सुबह का नजराना।
1: सुबह का नजराना कार्यक्रम में आपका फेवरेट सेगमेंट छोटी सी बात, और आज की छोटी सी बात बहुत ही लाजवाब सी है। और ये कहानी है बकरी और अंगूर की बेल की। जी हाँ, किसी समय की बात है, एक हरी भरी घाटी में एक बकरी रहा करती थी और वहाँ चरा करती थी। अचानक वहाँ एक दिन शिकारी कुत्तों का एक बहुत ही बड़ा सा झुंडा पहुँचा। अपनी जान को खतरे में देख बकरी बदहवास हो गई और भागने लगी। कुत्ते उसके काफी करीब पहुंच चुके थे, तभी बकरी को सामने अंगूर की बेल, अंगूर की लताओं की एक घनी और विशाल झाड़ी दिखाई दी। बिना समय गंवाए वो अपनी जान बचाने के लिए उसी झाड़ियों में बीचों बीच जाकर छुप गई। कुत्ते वहां पहुंचे, लेकिन झाड़ी इतनी घनी थी कि बकरी कहीं नजर नहीं आ रही थी। और कुछ देर बाद इधर उधर सूंघने के बाद शिकारी कुत्तों को लगा कि बकरी उनके हाथ से निकल गई और वे आगे निकल गए। जब बकरी ने देखा कि शिकारी कुत्ते वहां से दूर चले गए हैं, तो उसने राहत की सांस ली। अब वो पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर रही थी। लेकिन सुरक्षित होते ही उसके मन में लालच और मूर्खता घर कर गई। उसे भूख लगी थी और उसने ठीक सामने अंगूर के ताजे हरे पत्ते जो दिखाई दिए, उसे वो बिल्कुल चबाने लगी। वो ये भूल गई कि इन्हीं पत्तों ने, इन्हीं झाड़ियों ने उसकी जान बचाई थी। उसके निश्चिंत होकर उसने बिल्कुल उन बेलों को खाना शुरू कर दिया। उसने जमीन से लेकर अपनी गर्दन की ऊंचाई तक सारे पत्ते जो थे एक एक एक एक करके वो खाती गई। और अब वो झाड़ी इतनी घनी थी, जो पहले घनी थी, अब वो पारदर्शी होने लगी। तभी शिकारी कुत्तों को बस जो पास ही में भटक रहे थे वापस उसी रास्ते से गुजरे, और अब चूंकि झाड़ी के पत्ते नहीं बचे थे तो उसी के बीच जो बकरी थी वो साफ दिखाई दे रही थी। और कुत्तों ने तुरंत उस पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। मरते समय बकरी को अपनी गलती का

एहसास हुआ कि उसने अपने ही रक्षक को नष्ट कर दिया, जिसके कारण उसने अपनी जान गंवानी पड़ी। दोस्तों, आज की ये छोटी सी कहानी बस हमें यही सीख देती है कि सहारा देने वाले को जो नष्ट करता है, उसकी दुर्गति निश्चित है। और इतना ही नहीं, हम तो यही कहेंगे कि कई बार जो भाई कहते हैं ना कि जब हम बेसहारा हो जाते हैं, दूसरों का सहारा ढूंढते हैं, और जब सहारा मिल जाता है, हम में से कई सारे ऐसे होंगे जो सहारे को भूलकर बस उसका फायदा उठा बैठते हैं। जिंदगी में अगर खुश रहना चाहते हैं दोस्तों, तो जिन्होंने आपको सहारा दिया, उनकी इस एहसान को जिंदगी में कभी मत भूलना। जिस दिन भूल गए, उस दिन बस दुर्गति तो निश्चित है। आशा करते हैं ये छोटी सी बात हम सभी के समझ में आ जाए। समझदार को इशारा काफी है।

0: रेडियो मॉरिशस पर।
1: चलिए इसी के साथ 7:51 होने जा रहे हैं, आपको याद दिला दें 8 बजे हम जुड़ेंगे भोजपुरी समाचारों के साथ, और इसी के साथ डेडिकेशन टाइम, आपके नामों को जोड़ने का समय। हमेशा की तरह आपके फ़ोन कॉल्स, आपके मैसेजेस के लिए दिल से आपको धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर वाकवा से शोभा जी और उनका सारा परिवार, उनका सब जी हाँ, उनकी बेटियाँ अनुषा और शर्वीना, साथ है अवनीश अर्णवी, उनकी प्यारी बहन प्रीमिला जयमंगल, वीना जी और उनकी खास सखी राधा बाल गोविंद जो है मोचीदास से, नवरफॉन्स से गायत्री जी, उनका बेटा अजय, मामी है कल्याणी मोहन, मेबग से भाभी शकुंतला मोताइलोंग से, और गीताबाई साथ जुड़ी हैं। गीताबाई भी नवरफॉन्स की ही रहने वाली, उनके प्यारे बेटे शिवाजी, बहू हैं श्वेताबाई, साथ है सुधाबाई, दियाबाई, बिजवीबाई, मल्हार, उनके नाती पोते और आजी नागन जो बहुत पसंद करती हैं हमारे कार्यक्रम को। बहुत बहुत प्यार आप सभी को। रोजबेल से नवीन लक्ष्मण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, 28 तारीख को यानी इस सप्ताह में बिल्कुल उनके भतीजे दिवेश लक्ष्मण का की शादी है, चाचा नवीन, चाची चित्रा, साथ है कजिन्स अंबिका और दिव्या जो रोजबेल से है, उनको बहुत प्यार और आशीर्वाद देते हैं। और हमेशा की तरह आपका परिवार निवेदित और सच्चिदानंद जी, ललिता और धनराज चरण जी, साथ है बेटी स्वीटी, राज और अमृता जी, रमेश और प्रीति जी भी हमेशा साथ देते हैं, फ्लोगियाल से माधुरी जी भी हमेशा जुड़ी हुई रहती हैं, घोंगोब से श्यामा जी और रघुनंदन परिवार, भैया है जयप्रकाश, भाभी नम्रता, केशव और युदेश जो हैं लिस्पेगौसपीतों से, विश्वानी जी, बीना रामफल आपकी दो प्यारी सखियाँ हमेशा साथ देती हैं, पोंफेया से जुड़ी हुई हैं गीता जी, और आपके प्यारे पति रोहित, आदित्य, आरव, तानिश, आपके तीन नाती और नातिन है परी, जैसी जानवी, तीन बेटे, तीन बहुएं, और आपकी प्यारी बहन मीला जो है न्यू ग्रोव से। और यहाँ एक और मैसेज आया है, उमा जी जो हमेशा की अपिप से साथ देती है, बहुत बहुत प्यार, मोडालबिया से अनिता लाल जी, साथ है गोगा, ईतू और नागेश्वर परिवार जुड़ा हुआ, घोंगोप से हमेशा की तरह सुनीता जी जुड़ी रहती हैं, तीन बहनों के साथ विमला, अमृता और वीना जी, कौडेमास से प्रेमिला सी गुलाम भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, और उनकी प्यारी बहनें रागिनी और साधना जो है बीचू परिवार फ्लाक से, अनसुया राम के लावन त्रियोले से, और आपकी प्यारी भगिनी रेखा जो वाकवा से हमेशा हमारे कार्यक्रम को बहुत पसंद करती है, उनकी तीन बेटियों के साथ धीमा, दिव्या और दीक्षा जो है लक्ष्मण परिवार से, बहुत बहुत प्यार आप सभी को। घोंपुआ से शिवरानी जी भी हमेशा साथ देती हैं उनके परिवार के साथ, और अखलावित से जुड़ा हुआ है विजय बंधन और उनका परिवार, उनकी प्यारी पत्नी रेखा, तीन प्यारी बहनें चंदनी, बिंदु, कुमारी और आपके सभी दोस्त, और लेस्पेरेंस त्रिबुशे से किरण बारोट और उनकी प्यारी पत्नी नम्रता अपने पूरे परिवार के साथ, क्योपिप से गीता जी, बॉशेरी से लीला जी, ड्रांड्रिवा साउथीस से शीला जी और उनके पति साजन, हाईलैंड से उषा जी, कुंज बिहारी और मोहन सिंह परिवार के साथ इस वक्त हमारे साथ है, नवलफॉन्स से मानती जी भी हमारा साथ दे रही है, उनकी प्यारी बहनें आनंदी और आरती, और सेंट जूलिया विलाज से साथ दे रही हैं नीता खेदनी, आपकी प्यारी भौजी रीटा का जन्मदिन था 22 तारीख को, 60 वर्ष की हो चुकी है, कल आपको 60 वर्ष हुए हैं रीटा जी, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, आपके प्यारे बच्चों की ओर से आदर्श और आयुषी, और लेस्पेगौंस कच्छ मिलितिया से देविका सुकलाल जी की ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। आपकी खास सखी नीता जी की खास सखी स्वाधिका का जन्मदिन आज है, स्वाधिका जी आप बेलवेदिया की रहने वाली हैं, आपको भी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। और नीता जी के प्यारे नाती वैष्णव का जन्मदिन था 21 तारीख को, जो 20 वर्ष का हो चुका है और मलेशिया में पढ़ाई कर रहा है, मामा रूमा है पापा कृष्णानंद, भाई है वैभव, बहन विभा और जीजा है रवि जो जीता परिवार से बिलोंग करते हैं फ्लैग से। तो चलिए ढेर सारी बधाइयाँ वैष्णव को, अमृता जी ओकुले से साथ दे रही है, लक्ष्मी जी बॉम्बू से साथ जुड़ी हुई हैं अक्षय और आशनी के साथ, घोंबुआ से लीलो जी इस वक्त खेत में हमारे साथ रेडियो को साथ लिए काम करते करते, गीता जी, शीला जी और किशोर भैया के साथ, बस काम आपको बहुत बहुत बस मेहनत का काम कर रही हैं। और ठंड के मौसम में खेतों में काम करना आसान नहीं होता, तो जितने भी लोग इस वक्त ठंड को

बिल्कुल चैलेंजिंग मौसम के साथ आप काम कर रहे हैं, बहुत बहुत हिम्मत आप सभी को। गुश्तिया से कल्याणी जी, रिवेजुपुस से उदय जी, त्रियोले से सूरज शर्मा सजादा हमारे साथ है, लालमाटी से सुनीता जी भी हमारा साथ दे रही हैं, उनके सभी बच्चों का नाम जोड़ते हैं, बेटियां हैं रीना और राती, दामाद है कैलाश और किशन, बेटा है रितेश और बहू है सिमी, साथ है रियांश और आपके पति राज भी जुड़े हुए हैं, बस साथ देते रहिएगा। लचम सी गोबीन परिवार भी हमारे साथ जुड़ चुका है और क्लियफों वाकवा के शिव मंदिर के सभी सदस्यों का भी नाम आज के इस कार्यक्रम में हम शामिल करते हैं। गिवेद खयोल से हमारा साथ दे रही हैं साधना जी और जीवन परिवार। चलिए बिलगुल से प्रभा दसोई भी प्यार से साथ दे रही हैं। मोताइलोंग से इंदिरा चिंताराम, तुषार और ओम को याद करते हुए आज के इस कार्यक्रम में जुड़ी हुई हैं। अनीता जी रोजबेल से, सुदेवी जी मोका से, और अगर किसी का नाम छूट गया है तो क्षमा चाहते हैं क्योंकि बहुत ही लंबा लिस्ट पर ये आपके प्यार को बिल्कुल दर्शाता है। और सुबह का नजराना कार्यक्रम आपका कार्यक्रम, तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को और भी मजेदार शमशाद बेगम की आवाज में ये प्यारा सा गाना, क्योंकि मौसम ही कुछ ऐसा है लाजवाब सा, फिल्म सावन का ये गाना मोहम्मद रफी साहब ने साथ दिया है और गुनगुनाते हुए यही गाना हमें जोड़ेगा 8 बजे के समाचारों के साथ। तो कहीं मत जाइएगा, आते हैं समाचारों के बाद कार्यक्रम को जारी रखने के लिए, मिलते हैं थोड़ी ही देर में।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: फजीर के ठीक 8 बजे तक सुना भोजपुरी में समाचार। नमस्ते, सुना भोजपुरी में समाचार। बजट 2026-2027 के एगो साहसी और ये जिम्मेदार बजट बतावत श्रम मंत्री गिजाउद्दीन काल राज्यसभा में बजट बहस के शुरुआत करलन। ओकर कहना रहल कि पेंशन व्यवस्था में बदलाव जरूरी बा, काहे के मौजूदा व्यवस्था लंबा समय ले नहीं चल सकी। उई भी बोलन

कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लू इकोनॉमी जैसन सेक्टर खातिर घोषित कदम देश के भविष्य खातिर मजबूत आधार तैयार करत बा। श्रम मंत्री गजाउद्दीन मैटरनिटी लीव के एक बरिस ले बढ़ावे और पैटरनिटी लीव के 4 हफ्ता से बढ़ावे के 6 हफ्ता

0: में हिस्सा ले लन जा। बजट परी बहस आज फजीर की 11:30 बजे राष्ट्रसभा में फिर शुरू हुई। कल राष्ट्रसभा की बैठक फिर शुरू भैला परी। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम मीन्स टेस्टिंग के फिलहाल रोक देवे के घोषणा कर लन। ये फैसला के तहत पेंशन पावे वाला लोगन के आमदनी और आर्थिक स्थिति के जाँच होके ओला रहल। समाज सुरक्षा मंत्री अशोक सुभों के कहना बाकी ई मामला में आखिरकार प्रधानमंत्री के फैसला के प्राथमिकता दिहल गल, चाहे आर्थिक नजरिया से मीन्स टेस्टिंग उचित रहल। उ ई भी कहलन कि अगर ई मुद्दा परी सहमति नहीं बनी तो दूसर विकल्प परी भी विचार करल जाए। अशोक सुभों ट्रेड यूनियन प्रतिनिधि लोगन से मुलाकात के बाद ई बयान दिलन। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम देने से मीन्स टेस्ट के फिलहाल स्थगित करे के फैसला के कई गो राजनीतिक और सामाजिक पक्ष स्वागत कर ले बा। बजट 2026-2027 पेश भैला के बाद ई कदम के लिए कई कई प्रतिक्रिया और चिंता सामने आयल बा। ओनावा मोगी समर्थन लोगन के सराहना कर ले बा जे ई कदम के खिलाफ अपन आवाज उठैलन जा। संगठन जे के कहना बा कि ई फैसला दिखावत बा कि लोकतांत्रिक बहस में नागरिक लोगन के भागीदारी और राय कितना महत्वपूर्ण बा। बजट 2026-2027 में कलाकार और सांस्कृतिक सेक्टर से जुड़ल लोग खातिर घोषित कदम के आर्टिस्ट यूनियन स्वागत कर ले बा। एगो बयान में संगठन बोल ले बा कि फैसला उस सब मांग के ध्यान में रखल कि रिहल गल रहल कि कई गो बरी से उठावल जात रहल। आर्टिस्ट यूनियन के अनुसार ई पूरा कला और सांस्कृतिक सेक्टर के साझा प्रयास के नतीजा बा। संगठन सरकार के से ई घोषणा के जल्दी लागू करे के अपील कर ले बा। साथे कलाकार लोगन के बेहतर पहचान और सामाजिक सुरक्षा दिलावे खातिर अपन सहयोग जारी रखे के भी बात बोल ले बा। दूसर देश के खबर में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देवे के घोषणा कर ले हवन। नवा नेता चुने जाए ले उ प्रधानमंत्री के पद पर ही रहियन। लेबर पार्टी में नेतृत्व चुनाव की प्रक्रिया 9 जुलाई से शुरू हुई। विश्व कप में अर्जेंटीना ऑस्ट्रिया के 2-0 से हरा के अंतिम 32 में अपन जगह पक्का कर ले लेबा। ये मुकाबला में लियोनेल मेसी दोनों गोल करलन। वो विश्व कप इतिहास के सबसे सफल गोल स्कोरर बन गल हवन। तो ये रहल हमनी के भोजपुरी में समाचार। हमनी के सुनला जा, धन्यवाद।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

Shok Samaja Suna, Sinutex Lene Terrouge, Chalice Bariske, 46 ans, qui Pratima Kanaya, Gujar Galhawan, Pedaish Nam Apadu, Unkarmati Aja Dubherba Dubaje, Unkarma Savitri, Popiaki Ghare Terrouge, Se Utaki, Boamonson, qui Shamshan Pumi, Leja Waljai. Bosque Lane La Croisée chez Belgro Kayumi, Chiasi Bariske 86 ans qui, Shri Hemraj Kunju Bihari Gujar Galhawan, un garmati aj din ki 11 baje un hi gare Krokayu se utha ki antim sanskar khatir Richelieu ki Shamshan Bhumi le jawal jai. Avenue Cité Patko Tamareme, Tamareme, Satalis Bariske 47 ans qui, Narai du Nimai, Narai Dew Nimai Gujar Galhawan, un garmati aj sabher 3 baje उन्हें के घरे तमागे से उठा के अंतिम संस्कार खातिर रिव्यानुओं के शमशान भूमि ले जावल जाए। स्कूल लेन दागुतिया में 48 बरिस के 48 अंकी रिश्माउती खुदी गुजर गल हवन पैदाइश नाम नियसु उनकर माटी आज दिन के 10 बजकर आधा उनकर पति रामेश मोहन प्रसाद के घरे दागुचिया से उठा के अंतिम संस्कार खातिर सेकोंस्टेंस सैंपियर के शमशान भूमि ले जावल जाए। कालीमाई रोड ग्रानिवर्स ऑफ ईस्ट में 75 बरिस के सुसन कैजों के बसदेव रघुनाथ गुजर गलहवन उनकर माटी आज दिन के 11 बजे उनकर पत्नी मानती रघुनाथ के घरे ग्रैंड रिवर्स ऑफ ईस्ट से उठाकर अंतिम संस्कार खातिर बोशों के शमशान भूमि ले जावल जाए। समसुंदर रोड बिलवेदिया में 65 बरिस के 65 की कोसिला अंचराज गुजर गलहवन पैदाइश नाम जीवन उनकर माटी आज दिन के 11

0: बजे उनकर बेटा विशाल अंजाराज के घरे बिलविदय से उठा के अंतिम संस्कार खातिर कौंदमास पावे के शमशान भूमि ले जावल जाए। दालिया रोद ग्रीष्मोफ्लक में 62 बरिस के सुसंदेजों के गाने सनमुचे गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 1:30 उनकर बेटी कविता मुचिया के घरे फ्लक से उठा के अंतिम संस्कार खातिर मेजिन कौंडमास के शमशान भूमि ले जावल जाए। आले जाक बॉम्बू में 82 के 90 के बीसीपति मुनिराम गुजरगल हवन पैदाइश नाम चितामन उनकर माटी आज दिन की 1:30 उनकर बेटे ज्ञान देव मुनिराम के घरे आले जाक बॉम्बू से उठा के अंतिम संस्कार खातिर मोन्ताई सैंपिया बॉम्बू के शमशान भूमि ले जावल जाए। बॉशरी रोड पेची वेजे सैंपिया में 78 बरिस के 78 के भगवंत राम भजन गुजरगल हवन पैदाइश नाम रघुभर उनकर माटी आज दिन के 2 उनकर दामाद डॉक्टर संजय बीगू के घरे सैंपिया से उठा के अंतिम संस्कार खातिर सैकोसों सैंपिया के शमशान भूमि ले जावल जाए। खुशियाल ले नेपालमा कठोबोन में 76 बरिस के सुसन सेजों के किरालाल माना गुजरगल हवन उनकर माटी आज दिन की 1 उन्हीं के घरे काटोबोन से उठा के अंतिम संस्कार खातिर गांधी पालमा के शमशान भूमि ले जावल जाए। बुबन रोड पेलग्रें सेबास्तोपोल में 73 के जगदत घुरा गुजरगल हवन उनकर माटी आज दिन के 11:30 उनकर पत्नी मीला घुरा के घरे सेबास्तोपोल से उठा के अंतिम संस्कार खातिर मेजिन कौंडमास के शमशान भूमि ले जावल जाए। कारोलिन रोड वाली दिप्रित में 58 बरिस के 58 के धर्मावती रामफल गुजरगल हवन पैदाइश नाम भुजावन उनकर माटी आज दिन के 11:30 उनके घरे वाली दिप्रित से उठा के अंतिम संस्कार खातिर सिपाही भोले वाले देवघाट के शमशान भूमि ले जावल जाए। लावानी वाक्वा में 60 बरिस के 60 के सत्यराव लिम्बिया गुजरगल हवन उनकर माटी आज दोपहर बाद 2 उन ही के घरे लावानी वाक्वा से उठा के अंतिम संस्कार खातिर फिनिक्स के शमशान भूमि ले जावल जाए। अवेन्यू मै तेरेजा बासें काट्रोबोन में 101 बरिस के 109 के किसनावती घुराऊ गुजरगल हवन पैदाइश नाम विदेशी उनकर माटी आज दिन के 1:30 उनकर बेटा ननराज घुराऊ के घरे काठोबोन से उठा के अंतिम संस्कार खातिर गांधी पालमा काठोबोन के शमशान भूमि ले जावल जाए। अवेन्यू ला सेरेंग पालमा रोड काठोबोन में 83 बरिस के 83 के सुभावती खुरबुर गुजरगल हवन पैदाइश नाम धुकिया उनकर माटी आज दिन के 1 उन्हीं के घरे काठोबोन से उठा के अंतिम संस्कार खातिर गांधी पालमा के शमशान भूमि ले जावल जाए। अनिरुद्ध जागीसर रोड यूनियन वेल में 81 बरिस के 89 के संता जागीसर गुजरगल हवन पैदाइश राम बरीलाल उनकर माटी आज दिन के 1:30 उन्हीं के घरे यूनियन वेल से उठा के अंतिम संस्कार खातिर पैनमान्यों के शमशान भूमि ले जावल जाए। शोकग्रस्त परिवार संगे हमनी सहानुभूति प्रकट करत हैं जा।
1: सुबह का नजराना रेडियो मॉरिशस।

0: एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के साथ रेडियो मॉरिशस पर। एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: सुबह का नजराना कार्यक्रम एक छोटी सी मुलाकात, और आज की ये छोटी सी मुलाकात हम करने जा रहे हैं एक ऐसे कलाकार के साथ जो 80s के ज़माने में बॉलीवुड इंडस्ट्री में आए और उन्होंने अपना नाम बनाया, जिनका आज जन्मदिन है बिल्कुल 23 जून, और वे आज 73 वर्ष के हो चुके हैं। 73 years old राज बब्बर साहब की हम बात कर रहे हैं, जिनका जन्म 23 जून 1952 को उत्तर प्रदेश के टुंडला में एक पंजाबी हिंदू परिवार में हुआ था। तो चलिए आज की मुलाकात हम करेंगे राज बब्बर साहब के साथ। वैसे उनका परिवार भारत के विभाजन के बाद टुंडला में बस गया था, और उनके पैतृक मूल जलालपुर जट्टान में है, और जो अब आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब राज्य के गुजरात जिले में स्थित एक शहर है। वैसे आपको ये भी बताते चले कि राज बब्बर साहब ने बिल्कुल आज हम कह सकते हैं कि ना केवल हम बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करें पर पॉलिटिक्स में भी उन्होंने बिल्कुल अपना कदम जमाया, और साथ ही साथ वे एक पंजाबी फिल्म एक्टर भी हैं, और इंडियन नेशनल कांग्रेस में उन्होंने वो अभी कार्यरत हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा में। एक छोटी सी मुलाकात, और बिल्कुल उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो आगरा के मुफीद-ए-आम इंटर कॉलेज से प्राप्त उन्होंने की, और वे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD के 1975 बैच के पूर्व छात्र हैं, और आगरा कॉलेज से स्नातक हुए। उन्होंने NSD में अभिनय की पद्धति का प्रशिक्षण लिया था, बकायदा उन्होंने ट्रेनिंग ली थी एक्टिंग में, और जिसमें नुक्कड़ रंगमंच भी शामिल था, और नई दिल्ली में प्रशिक्षण के बाद वे मुंबई चले गए, और 1970s के दशक के सबसे प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक रीना रॉय के साथ अपने फिल्मी करियर की उन्होंने शुरुआत की, और साथ ही साथ बी आर चोपड़ा की फिल्म इंसाफ का तराजू में उन्होंने एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई, और इस फिल्म में जब उनकी भूमिका उन्होंने निभाई उन्हें कुख्याति मिली, जिसमें उन्होंने नायिका भारती सक्सेना जीना तमान द्वारा जो अभिनीत ये

फिल्म थी और उनकी बहन का रोल निभाया था पद्मिनी कोल्हापुरी ने। और ये एक बहुत ही, हम कह सकते हैं कि बड़े पर्दे पर बहुत ही हिट हुई थी ये मूवी। और इसके बाद बी आर चोपड़ा के बैनर तले लगातार काम करते रहे और दीपक पराशर और सलमा आगा के साथ उन्होंने फिल्म की थी निकाहा और स्मिता पाटिल के साथ आज की आवाज। ऐसी कई सारी फिल्में जहां पर उनको एक के बाद एक प्रसिद्धि मिलती गई। फिल्मी करियर की अगर जब हम बात करते हैं तो फिल्म की करियर में भी उन्होंने शुरुआत तो अच्छी ही की थी, पर साथ ही साथ धीरे धीरे करते हुए, वे पंजाबी मूल के थे तो पंजाबी फिल्मों ने भी उन्होंने काफ़ी अपने अभिनय से लोगों को खुश किया। और साथ ही साथ सच में देखा जाए तो उनकी फिल्मी सफ़र बहुत ही लाजवाब रहा था। उनकी जो पंजाबी मूवीज़ रही, चन परदेसी, मरही दादा दीवा, लौंग दा लश्कारा, माहौल ठीक है, शहीद उधम सिंह, यारा नाल बहारा, एक जिंद एक जान, तेरा मेरा की रिश्ता। और इतना ही नहीं, उन्होंने कई सारी हिंदी फिल्मों में विलन का भी रोल किया, जैसे इंसाफ का तराजू, साजिश, आंखें, दलाल, द गैम्बलर, अंदाज, याराना, बरसात, जिद्दी, गुंडागर्दी, दाग द फायर और इंडियन। साथ ही साथ वे कई सारे टेलीविजन पर भी वे नजर आए और उनकी इंट्रोडक्टरी यानी डेब्यू कह सकते हैं कि टीवी सीरीज आपको याद होगा, महाभारत। जी हाँ, महाभारत सीरियल में वे भरत राजा के रूप में नजर आए थे, जो बहुत ही शुरुआती तौर पर दिखाई देता है। साथ ही साथ उन्होंने 1986 में आई टीवी सीरियल बहादुर शाह जफर में उन्होंने अकबर की भूमिका निभाई थी और इसमें बिल्कुल जूही चावला भी नजर आई थी। साथ ही साथ उन्हीं का होम प्रोडक्शन महाराजा रंजीत सिंह 2010 में जो टेलीकास्ट हुआ था दूरदर्शन पर। चलिए, ये सफर बहुत ही लाजवाब, पर उन्हीं के फिल्मों के गानों को आज के सिलेक्शन में हमने रखा है, तो शुरुआत में आपके लिए ये मशहूर सा गाना।

आप तो ऐसे ना थे, और फिल्म प्रेम ग्रंथ में भी वे नजर आए थे, और उसी प्रेम गीत, क्षमा कीजिएगा, ये सारे कुछ ऐसे नंबर्स हैं, ऐसे कुछ लाजवाब गाने हैं जिन्होंने उन्हें बहुत

0: होठों से।
1: बिल्कुल वे दिल हार चुके थे स्मिता पाटिल के आगे, पर कहते हैं ना कि नसीब को क्या मंजूर ये कोई नहीं जानता, और ऐसा ही हुआ। बिल्कुल 1983 से लेकर 1986 तक वे विवाहित थे स्मिता पाटिल के साथ, और उनकी मृत्यु के बाद उनको एक पुत्र जन्म हुआ जिनका नाम था प्रतीक, जिनका नाम है प्रतीक बब्बर।
2: एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार,
1: और बेशक आपने प्रतीक बब्बर को भी कई सारी फिल्मों में देखा होगा, और इतना ही नहीं बाद में उनका यानी राज बब्बर जी का विवाह प्रख्यात प्रगतिशील उर्दू लेखक सज्जाद जाहिर की पुत्री नादिरा जहीर से हुआ, और इस दंपति के भी दो पुत्र और एक पुत्री, यानी एक पुत्र एक पुत्री, बेटा आर्य बब्बर और बेटी जूही बब्बर। इन दोनों ने भी फिल्मों में अपनी भूमिका निभाई है, बहुत सारे फिल्मों में नहीं पर एक आध फिल्म में। इतना ही नहीं, उन्होंने यानी राज बब्बर साहब ने अपने भाई किशन के साथ मिलकर अपनी खुद की होम प्रोडक्शन कंपनी बब्बर फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की, और इसके तहत उन्होंने दो फिल्में, कर्मयोद्धा जो 1992 में आई थी और काश आप हमारे होते 2003 में आई थी, और साथ ही साथ टीवी सीरियल महाराजा रणजीत सिंह 2010 का ये निर्माण किया गया सीरियल था। वैसे उन्होंने कई सारी हिंदी फिल्मों में, हिंदी सिनेमा में उन्होंने फिल्में की, और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताते चले, हिंदी फिल्मों के साथ साथ उन्होंने कई सारी पंजाबी मूवीज़ जो हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। इतना ही नहीं, आपको अवार्ड्स भी बताते चले कि उनको 1981 में नॉमिनेशन में उनका नाम शामिल हुआ था

फॉर इंसाफ का तराजू बेस्ट एक्टर फिल्मफेयर अवार्ड के लिए उनका नाम नॉमिनेट किया गया था 1984 में भी, अगर तुम ना होते। फिल्मफेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और 1985 में भी नॉमिनेशन में उनका नाम शामिल किया गया था आज की आवाज़ बेस्ट एक्टर के लिए। 1994 में भी नामांकित किया गया था उनका नाम फॉर नेगेटिव रोल फिल्म दलाल के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए। और 1996 में भी उनका नाम नामांकित हुआ था फिल्म याराना में नेगेटिव रोल के लिए। अगर तुम ना होते, बिल्कुल एक बहुत ही मशहूर सी फिल्म, और इस फिल्म में नजर आई थी एवरग्रीन रेखा, साथ नजर आए थे राजेश खन्ना साहब, और इस फिल्म में उन्होंने रेखा के पति की भूमिका निभाई थी। तो चलिए इस फिल्म का एक छोटा सा मुखड़ा आपको सुनाते हैं।

0: एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: बिल्कुल, आज की मुलाकात राज बब्बर साहब के साथ। और 73 इयर्स के हो चुके हैं राज बब्बर साहब, तो उनके सभी फैंस बिल्कुल उनके गीतों के द्वारा आज भी उनके जो कुछ ऐसे चुनिंदा नंबर्स हैं जो आज भी रेडियो पर हम जब बजाते हैं तो भाई मूड एकदम सेट हो जाता है। और इसी के साथ आखिरी गाना इसी सेगमेंट का, यही गाना हमें जोड़ेगा हमारी अगली कड़ी के साथ, यानी हमारी धरोहर कार्यक्रम के साथ। ये है फिल्म अर्पण का गाना, ये भी बहुत ही लाजवाब सा गीत लता जी की प्यारी सी आवाज़ में।

0: चलिए भूल मत जाना कि 9 बजे के समाचार के बाद आज की चर्चा कार्यक्रम को जारी रखा जाएगा और वैसे आपके लिए लगातार एक के बाद एक बेहतरीन से बेहतरीन कार्यक्रम हम सजा रहे हैं आपको चार्ज्ड अप रखने के लिए और इसी के साथ बहुत सारी जानकारियां। छोटा सा सेगमेंट है पर बहुत ही लाजवाब सा सेगमेंट किरण जानकी के साथ। आइए, हमारी धरोहर कार्यक्रम का समय हो चला है तो जुड़ते हैं उनके साथ और इसी के साथ सुबह का नजराना कार्यक्रम का सेगमेंट बस यहीं पर आ पहुंचा है अंतिम चरण पर।
1: 819 kHz, this is Radio Marches. Radio Marches.

0: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
1: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक्स दिवस हर 23 जून के मनावल जाला। ओलंपिक्स खेल एगो अंतर्राष्ट्रीय खेल है, जेकर आयोजन हर 4 बरिस में अनेकों खेल प्रतियोगिता के माध्यम से करल जाला, अलग अलग डिसिप्लिन में। और एकर में दुनिया भर के हजारन एथलीट विभिन्न प्रतियोगिता में भाग ले वेलन सा। लेकिन ओलंपिक्स डे हर बरिस 23 जून के दुनिया भर में मनावल जाला। और कितने देश ई दिन के मनावे खातिर कितने स्पोर्ट्स गतिविधि के आयोजन करेलन सा, जोन उ देश के ओलंपिक्स कमिटी आयोजित करेला। दुनिया के पहला ओलंपिक्स दिवस 23 जून 1948 में मनावल गल रहल, जेकर अवसर पर IOC के अध्यक्ष दुनिया भर के जोन युवा हवन सा उ लोग के एगो संदेश दिले रहलन। पोर्चुगल, ग्रीस, ऑस्ट्रिया, कनाडा, स्विट्जरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, यूरुग्वे, वेनेजुएला और बेल्जियम अपन अपन देश में ओलंपिक्स दिवस के आयोजन कर ले रहलन सा। विश्व ओलंपिक्स दिवस सब कोई के शांति से बढ़े के संदेश देवेला, मूविंग इन पीस, और खेल के शक्ति के जश्न मनावे के ये एगो सुनहरा मौका है। और जैसे दिखत हवा ई बरिस देखत है जा कि फुटबॉल के वर्ल्ड कप से ई ओलंपिक्स दिवस मेल खाता, जहां पर देखत है जा वर्ल्ड कप के जरिए दुनिया भर के जोन जनता बा, जोन राष्ट्र बा, उ लोग इकट्ठा होवेलन जा, संगे मिलके हर एगो देश एगो दूसरा देश के सहयोग देवेलन जा। और एगो सुनहरा मौका है जहां पर खेल के जरिए ई दुनिया भर के लोग जुड़ जालन सा। एगो शांतिपूर्ण दुनिया खातिर एकजुट होला, समर्थन देला। ओलंपिक्स डे यही प्राथमिकता है ओकर, और यही संदेश ई दिन पर उ बांटेला, यही भूमिका उ निभावेला। और देखते है जा कि गल 2 दशक में ई आयोजन में ओलंपिक्स के आदर्श के दुनिया के हर कोना में फैलावे में मदद मिलल बा। अगर आप ओलंपिक्स दिवस पर सक्रिय हो चाहबा तो आपके चाहिए अपन देश के ओलंपिक्स कमिटी द्वारा आयोजित गतिविधि में भाग लेके। 23 जून 1894 के पेरिस के सोबोन में आधुनिक ओलंपिक खेल के जन्म के उपलक्ष्य में 1948 में ओलंपिक दिवस के शुरुआत कराया गया रहा। एकर लक्ष्य रहल अमीरी गरीबी और लिंग के भेदभाव या फिर एथलेटिक क्षमता के परवाह किए बिना दुनिया भर में खेल के भागीदारी के बढ़ावा देवे के। और देखते है जा कि गल 20 बरिस में ओलंपिक दिवस के दुनिया के संगे जोड़ल गलबाई कर माध्यम से 1987 में पहला संस्करण में भाग लेवे होला। 45 राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के भागीदारी से ई ओलंपिक आयोजन सफल हो रहल, और साथ ही साथ शांति के भी जोन संदेश बा उ फैलावल गल। ओलंपिक्स गेम्स ई बरिस देखत है जा कि फुटबॉल वर्ल्ड कप से मेल खाता। तो आप सब कोई के ओलंपिक्स दिवस के बहुत बहुत शुभकामना। और वर्ल्ड कप के जरिए आप देखत हवा कि खेल कूद में कितना शक्ति बा, कैसे सकेला ई दुनिया भर के जनता के एकजुट करके रखे और शांति के बढ़ावा देवे। कार्यक्रम के ध्यान से सुनला बहुत धन्यवाद। नमस्ते।
2: तो चला इसी के साथ बिल्कुल 8:55 हो चुके हैं, और हम आपको याद दिला दें अभी तो भाई फुटबॉल का माहौल है, और ऐसे माहौल में ऐसा प्यारा सा गाना आपके नाम छोड़े जा रहे हैं जो है भोजपुरी भाषा में और नीरज गुप्त मधु की आवाज़ में, और यही गाना हमें जोड़ेगा 9 बजे के समाचारों के साथ और उसके बाद आज की चर्चा कार्यक्रम जहां पर सुमिता सरकार आपका साथ देंगी। तो बस हमारी और आपकी मुलाकात सुबह का नजराना कार्यक्रम के अंत तक यहां तक, और हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे ठीक 10 बजे के समाचारों के बाद भक्ति धारा कार्यक्रम में। तब तक के लिए

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: मंगलवार 23 जून, घड़ी मिला लीजिए, सवेरे के 9 बज रहे हैं।

0: समाचारों को लेकर आस्था आ चुकी है। आस्था, आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद। नमस्कार। 9 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। बजट 2026-2027 को एक साहसिक और जिम्मेदार बजट बताते हुए श्रम मंत्री गिजाउद्दीन ने कल राष्ट्रीय सभा में बजट बहस की शुरुआत की है। उनका कहना है कि पेंशन प्रणाली में सुधार आवश्यक है क्योंकि मौजूदा व्यवस्था लंबे समय तक टिकाऊ नहीं रह सकती। उन्होंने ये भी कहा कि AI और ब्लू इकोनॉमी जैसे सेक्टरों में घोषित कदम ऐसे देश की नींव रख रहे हैं जो भविष्य की ओर और सुदृढ़ से आगे बढ़ता जा रहा है। श्रम मंत्री गिजाउद्दीन ने मैटरनिटी लीव को एक साल तक बढ़ाने और

मैटरनिटी लीव को 4 हफ्ते तक बढ़ाए जाने की बात का स्वागत किया है। उन्होंने माना कि इस फैसले के बाद कुछ कंपनी महिलाओं को नौकरी पर रखने में हिचकिचा सकती हैं, लेकिन उनका कहना

0: तहत पेंशन पाने वालों की आय और आर्थिक स्थिति की जांच की जानी थी। समान सुरक्षा मंत्री अशोक सुभों का कहना है कि इस मामले में आखिरकार प्रधानमंत्री के फैसले को आगे रखा गया है, भले ही आर्थिक नजरिए से मीन्स टेस्टिंग को उचित माना जा रहा था। विदेश स्तर की खबरों में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर कीर स्टार्मर ने लेबर पार्टी के नेता के पद से कल इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि अगले आम चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करने के लिए वे सबसे उपयुक्त व्यक्ति नहीं है। नए नेता के चयन तक वे प्रधानमंत्री के पद पर बनी रहेंगी। इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, and NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: 819 kHz, ये है रेडियो मॉरिशस।

0: आज की चर्चा।
1: मंगलवार 23 जून आज की चर्चा इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं और सभी दर्शकों का स्वागत है। सुमिता की ओर से नमस्कार स्वीकार करें और इस प्रोग्राम से आप जुड़ चुके हैं, आपकी सेवा में हम आ गए हैं। आशा करते हैं आप सभी बिल्कुल अच्छे हैं और हमेशा की तरह हमारा साथ दे रहे हैं। आपको बता दें, ये जो प्रोग्राम है ये आप इसे इस समय सुन पा रहे हैं रेडियो मॉरिशस पर, साथ ही इसे आप लाइव देख पा रहे हैं हमारे रेडियो मॉरिशस के फेसबुक पेज पर, और साथ ही इसका सीधा प्रसारण हो रहा है MBC के चैनल 3 पर। आपको ये भी बता दें कि इस कार्यक्रम का रीब्रॉडकास्ट जो है वो होगा आज ही दोपहर के 3 बजे रेडियो मनोरंजन पर, साथ ही इसे आप दोबारा देख पाएंगे आज ही सपहर के 4 बजे MBC के चैनल 3 पर। तो चलिए आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत हम करते हैं। आप सभी को पता है हर महीने, मतलब कि हर वर्ष जून महीने की 21 तारीख एक बहुत ही विशेष दिन होता है जो संगीत दिवस के साथ साथ योग दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और योग और संगीत अपने आप में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जहाँ पर संगीत हमारे मन को शांत करता है और वहीं योग जो है हमें स्वस्थ रखने के लिए प्रेरित करता है, और दोनों ही दिन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन आज का हमारा जो कार्यक्रम का जो फोकस है वो रहेगा संगीत दिवस पर। ऐसे तो संगीत दिवस की बात करें तो सिर्फ एक दिन के लिए ये दिन नहीं मनाया जाता है। संगीत तो हमारे जीवन का हिस्सा है, प्रकृति में संगीत है, हमारे शायद हमारे सभी इंद्रियों में संगीत है ना, हमारे श्वास में संगीत है, हमारे हृदय में संगीत है। और संगीत पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ IGCIC की एक पूरी टीम उपस्थित है। सबसे पहले तो हम धन्यवाद करेंगे IGCIC को यहाँ पर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम डायरेक्टर IGCIC के डायरेक्टर मिस्टर रंजन सिंह जी का स्वागत करते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप?
2: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद MBC टीम को, हमारी टीम को आज मौका देने के लिए आपसे हमारे संगीत और हमारे जो कार्यक्रम है उस पर अपने विचार साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके दर्शक और श्रोता को अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसके बाद हम शुरुआत करते हैं।
1: बिल्कुल, रंजन जी जो है IGCIC के डायरेक्टर है, भारतीय उच्चायोग से पिछले 3 वर्षों से जुड़े हुए हैं और कला और संस्कृति में इनकी काफ़ी रुचि है। ऐसे रंजन जी हमारे पिछले काफ़ी कार्यक्रमों से जुड़ चुके हैं और आज आप दोबारा हमारे साथ जुड़े हैं तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और आज ये अपनी पूरी टीम के साथ आए हैं। जब हम संगीत की बात करते हैं तो ऑब्वियसली गायकी अपने आप में इसका बड़ा एक हिस्सा है। संगीत की बात करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट्स भी इसमें शामिल होते हैं और डांस भी संगीत के बिना अधूरा है। तो आज हम रंजन जी से जानना चाहेंगे कि आपके जो साथ आए हैं IGCIC के टीचर्स, थोड़ा सा उनके बारे में बताएं और फिर एक एक पहलुओं पर हम कार्यक्रम को आगे ले जाएंगे।
2: जैसा कि अब दर्शकों को पता है कि IGCIC कला और संस्कृति, भारतीय कला संस्कृति प्रचार प्रसार के लिए हमेशा से काम करती रही है, और इस सिलसिले में हमारी एक बड़ी टीम है जिसमें हमारे साथ संगीत के कला का जो टीचर हैं, गुरु हैं, जो भारत से आते हैं, काफ़ी ट्रेंड और प्रशिक्षित होते हैं, जो हमारे यहाँ ट्रेनिंग देते हैं लोगों को, और हम लोग आउटरीच करते हैं बाकी भारतीय संगीत पर। तो आज हमारे साथ टीम में हमारे 3 लोग हैं, जो सबसे पहले हमारे साथ निर्माल्या सेन हैं जो वोकल टीचर हैं, हिंदुस्तानी वोकल टीचर हैं। इसके साथ तबला टीचर हमारे कुणाल काले हैं, उसके अलावा हमारे साथ भारतीय कथक की जो बहुत प्रसिद्ध टीचर हैं समीक्षा शर्मा जी हैं। तो आज हम इन 3 के साथ, पूरी अपने सहयोगी के साथ, इस अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस पे एक एक करके बात करेंगे। शुरुआत में हमारे साथ अभी निर्माल्य जी हैं।
1: बिल्कुल, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोता और दर्शकों को बता दें आज का जो हमारा कार्यक्रम है 3 हिस्सों में जो है डिवाइडेड है। बारी बारी से हम टीचर्स से मिलेंगे और संगीत पर उनके क्या विचार है इस पर जानेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद रंजन जी। सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि संगीत दिवस को इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों दिया जाता है? सिर्फ भारतीय संस्कृति में ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर जो है संगीत का अपने आप में एक बड़ा महत्व है।
2: सो एंशियंट पीरियड से ही, जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन है, संगीत कहीं ना कहीं उनके साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस की शुरुआत होती है जब फ्रांस में 1982, दैट वाज द 21st जून ऑफ 1982, जब वहाँ की कला और संस्कृति मंत्रालय ने ये महसूस किया कि संगीत जो ट्रेडिशनल म्यूजिक है वो अभिजात वर्गों के लिए है, जो एलिट क्लास के लिए है। तो दे वॉन्टेड टू इंट्रोड्यूस म्यूजिक टू द पब्लिक। सो फर्स्ट जो ट्रेन टीचर होते हैं, जो डांसर्स होते हैं, परफॉर्मर होते हैं, उनके परफॉर्मेंस जो उनके साथ उन्होंने मैच्योर आर्टिस्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक कार्यक्रम बनाया कि कैसे अमेच्योर संगीत के लोग जुड़े, कैसे इसे आम जनता तक पहुंचाया जाए। तो ये इसका विशेष दिन है, इसीलिए इसको एक क्रांति की तरह देखा जाता है कि संगीत को कैसे आम जनता तक पहुंचाना है। तो इसीलिए 21 जून को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय म्यूजिक डे के हिसाब से मनाते हैं, और उद्देश्य के देश से देखें जो ऑब्जेक्टिव है उसी को फुलफिल करने के लिए हम IGCIC में भी बैठे हैं, जहां हम कोई भी रजिस्टर्ड करके वहां पे डांस संगीत म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीख सकता है। इसके अलावा हमारे कलाकार मॉरिशियस गणराज्य के हर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में,
1: मतलब कि ये कहीं ना कहीं एक अवसर है, एक मौका है, और टीचर्स के साथ साथ स्टूडेंट्स को भी अपनी कला को दिखाने का अवसर मिलता है, वो भी राष्ट्रीय स्तर पर, और अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आपको हम धन्यवाद देंगे, ऐसे ही आप अपने कार्य को करते रहे, और काफ़ी मॉरिशियंस जो है इससे जुड़ते हैं, क्योंकि छोटे से छोटे हो या बड़े से बड़े हो, जिसको भी कला और संस्कृति में दिलचस्पी है वो IGCIC से जुड़ता है, और ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात है कि हर कोई जो है अपने शौक को पूरा करना चाहते हैं। और अगर हम गायकी की बात करें, इस समय हम गुरुजी कहेंगे क्योंकि ये हमारे गुरुजी हैं, हमें भी इनसे जो है वोकल म्यूज़िक सीखने का जो है वोकल का जो है हिंदुस्तानी वोकल सीखने का अवसर मिला। तो हमारे साथ निर्मल्य सेन जी उपस्थित है जो IGCIC में हिंदुस्तानी वोकल टीचर है। नमस्ते गुरुजी, नमस्ते, कैसे हैं?
0: ठीक है।
1: आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर हम गायकी की बात करते हैं, वोकल की बात करते हैं, तो किस तरह से संगीत इसमें एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है?
0: जी पहले सारे आपको एंड सारे दर्शकों का वर्ल्ड म्यूजिक डे का बहुत बहुत शुभकामना।
1: धन्यवाद।
0: पहले ये मैं बोल रहा हूँ कि संगीत जो है डांस, ये तो एक कला है, आर्ट फॉर्म है। वोकल म्यूजिक एंड वाद्य मतलब रिदिम एंड डांस, ये तीनों एकत्रित करके हम लोग संगीत बोलते हैं। तो संगीत में वोकल का भी इम्पोर्टेंस ही है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक का भी है और डांस का भी है। जहाँ पे वोकल म्यूजिक नहीं रहेगा वहाँ पे हम लोग संगीत नहीं बोल सकते, जहाँ पे डांस नहीं रहेगा वो भी संगीत नहीं बोल सकते। तीनों आर्ट फॉर्म को एकत्रित करके हम लोग संगीत बोल सकते हैं। तो संगीत हम लोग जो हमारा जो संगीत का जो लैंग्वेज होता है वो यूनिवर्सल लैंग्वेज होता है। तो इसमें हमारा संगीत सीखने के लिए माइंड रिफ्रेश होता है, और संगीत और एक चीज़ है कि ये कोई एंटरटेन का माध्यम नहीं है,
1: सिर्फ एंटरटेनमेंट का माध्यम नहीं है।
0: हाँ तो संगीत सीखने के बाद बहुत रास्ता भी खुल जाता है, और संगीत का अलग अलग जॉनर भी है वो भी समझना पड़ेगा, और पहले संगीत को हैव टू लिसन, संगीत को पहले सुनना जरूरी है। तो और संगीत सीखने के बाद हमारा जो डिप्रेशन है ये भी दूर होता है, ये और ये जो है ये हम लोग कुछ दिन पहले इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया है। तो जो योगा में जो प्राणायाम है, ये प्राणायाम का भी एक दूसरा रूप है,
1: कहीं ना कहीं वो रिदमिक है ना।
0: हाँ। तो यही है संगीत, संगीत सीखना जरूरी है, सीखना और संगीत सुनना भी जरूरी है। ऑल द म्यूजिक मतलब हिंदुस्तानी म्यूजिक, गजल, छ

0: ठुमरी, सारे हिंदुस्तानी म्यूजिक का जो जो जॉनर है, जो जो अलग अलग जॉनर है, वो भी सीखना भी जरूरी है और सुनना भी जरूरी है।
1: आप आए हैं तो हम चाहेंगे कि दो लाइन आप गाकर सुना दे कुछ, तो इससे बढ़कर हमारे लिए क्या बात हो सकती है, क्योंकि आज की चर्चा इस प्रोग्राम में हम हमेशा बातें करते रहते हैं, आज हमें गाना सुनने का अवसर मिलेगा, तो इस अवसर को हम कैसे जाने दें।
2: बिल्कुल सही है मॉरिशस देश में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो म्यूजिक के लिए जो प्रेम है, जो लगाव है, चाहे वो किसी भाषा का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, और हिंदुस्तानी और बॉलीवुड म्यूजिक का यहाँ पे जो जिस तरह से लोगों में लगाव है, रुचि है, देख के बड़ी बहुत अच्छा लगता है।
1: ये आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी जैसे कि ऐसे तो जो भी बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, शादियों की हम बात करें या कोई भी बड़ा फंक्शन होता है, उसमें आप देखिए कहीं ना कहीं गाने का प्रोग्राम तो ज़रूर होता है, गाने का, डांस का, और कभी फैमिली गैदरिंग भी होती है, तो हर कोई जो है अपने अपनी कला को दिखाने का, कराओके डालकर किसी ने कुछ गा दिया या कुछ परफॉर्म कर दिया, तो हमारे मॉरिशन भाई बहनों के बीच जो है ये गाने का, ये कल्चर के प्रति जो है, जितने भी आर्ट फॉर्म्स हैं उनके प्रति उनकी रुचि काफ़ी है। चलिए हम अपने गुरुजी से कुछ सुनेंगे, दो शब्द, दो लाइन।

जी इन सुंदर लाइनों के लिए, और ये गाना तो अपने आप में इतना मशहूर है कि हम क्या कहें। न जाने कितनी बार इसको रिक्रिएट किया गया है, कितने रूप में, और आज भी उतनी ही दिलचस्पी से लोग इस गाने को सुनते हैं। तो चलिए, जितने श्रोता और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, अगर आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप 4028085 पर हमें कॉल कर सकते हैं। अभी के लिए गाने के साथ प्रोग्राम को हम आगे ले जाते हैं।

0: आज की चर्चा।
1: एक बार फिर से हमारे सभी श्रोता और दर्शकों का स्वागत हम करते हैं आज की चर्चा इस कार्यक्रम में, जो आज संगीत दिवस पर आधारित है। ऐसे तो इसे पिछले रविवार को मनाया गया, लेकिन संगीत के बारे में बोले जितना बोले उतना ही कम है। शायद एक दिन सिर्फ जो है काफ़ी नहीं होता है संगीत के बारे में बोलने के लिए और उसके बारे में चर्चा करने के लिए। तो इसलिए आज इस विशेष कार्यक्रम को हम लेकर आए हैं, जहाँ पर संगीत से जुड़े अलग अलग पहलुओं पर आज हम बात कर रहे हैं। और साथ ही 4028085 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। हमें पता है हमारे श्रोता और दर्शक भी जो है गायकी में दिलचस्पी रखते हैं, संगीत में दिलचस्पी रखते हैं। हमारे साथ जो है IGCIC के डायरेक्टर श्री रंजन सिंह जी उपस्थित हैं, और साथ में इस समय हमारे साथ IGCIC के तबला टीचर मिस्टर कुणाल काले जी भी जुड़ चुके हैं। हम रंजन जी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से वोकल की हमने बात की, किस तरह से यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स के प्रति लोगों का जो है लगाव है, क्योंकि जब तक बच्चा छोटा होता है तब तक अगर बच्चे को गिटार सीखना है या कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीखना है, माता पिता उन्हें प्रेरित करते हैं, फिर समय के साथ साथ पढ़ाई का प्रेशर हो जाता है तो बच्चे इन सब चीज़ों से दूर हो जाते हैं। तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं और दर्शकों को कि किस तरह से संगीत की बात करें या किसी भी जो है संगीत की शैली की बात करें, किस तरह से उससे जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं कि इससे हमारा फोकस भी बढ़ता है।
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सो एक बात बोलना चाहूँगा कि मॉरिशस में जो म्यूजिक के लिए जो नेचुरल एक कनेक्ट है, सो लोगों को बहुत रुचि है जुड़ने के लिए, बहुत से वाद्य यंत्र बजाते हैं। और हम समय समय पे हमारे यहाँ भी हिंदुस्तानी जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हम अपने बहुत ट्रेन टीचर्स बुलाते हैं। उसका जैसा बताया कि दो उद्देश्य होता है, उसको आउटरीच के तहत हम जो लोकल इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके साथ भी हम जो कोलैबोरेट करते हैं, उनके साथ मिलके परफॉर्मेंसेज करते हैं। दूसरा, जो इच्छुक होते हैं, जो इंटरेस्टेड लोग होते हैं, जो यूज करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ क्लासेस भी चलती जी, है जी। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि तबला इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जो म्यूजिक को एक अपलिफ्ट करता है। हमारे जाकिर हुसैन साहब और हमारे कंट्री में जो दोस्त दुनिया भर में उसका नाम बढ़ाया, और हमारे जो टीचर हैं मिस्टर कुणाल काले, ही इज अगेन वेरी द सीनियर, वेरी ट्रेंड, वेरी एक्सपीरियंस टीचर। तो मैं चाहूँगा कि लोग इनसे आए, जुड़े, देखें।
1: बहुत धन्यवाद। चलिए अब हम मिलते हैं मिस्टर कुणाल काले जी से, जो IGCIC में तबला टीचर है। बहुत बहुत स्वागत है।

0: आपका नमस्कार। और अगर हम तबला की बात करें और संगीत की बात करें, हम चाहेंगे आपके विचार इस पर क्या है।
1: जी, सबसे पहले सभी लोगों को, सभी दर्शकों को विश्व संगीत दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और संगीत एक ऐसी सार्वभौमिक भाषा है जो दुनिया भर में लोगों को संस्कृति, भाषा और परंपरा इससे इसके परे जोड़ती है। और तबला इस वाद्य का भारतीय अभिजात संगीत में एक अमूल्य धरोहर और इसका एक अमूल्य योगदान है। जैसे आप देखेंगे, तबला ना कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में आप देख सकती है, इसका उपयोग आप जैज म्यूजिक है, वर्ल्ड म्यूजिक है, या आजकल का आधुनिक जो संगीत है, इसमें भी इसका बहुत अमूल्य योगदान है और उसका महत्व भी है। इसका महत्व होने का एक कारण ये है कि तबला ये जो वाद्य है, इसका जो नाद है, जो उसका एक साउंड जो है इंस्ट्रूमेंट का, वो और इस साउंड से जुड़े हुए उसकी जो लैंग्वेज है, तबला भारतीय संगीत, ना कि केवल भारतीय संगीत बल्कि दुनिया भर में जितने भी परकशन इंस्ट्रूमेंट है उसमें सबसे ज़्यादा भाषा जो जिस इंस्ट्रूमेंट को है वो तबला है। जैसे कि हम लोग हमारी चीज़ें जो एक्सप्रेस करते हैं, हमारी भावनाएं एक्सप्रेस करते हैं, वो सारी भावनाएँ हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट में देख सकते हैं। तो ना कि ये बस स्वर से जुड़ा हुआ इंस्ट्रूमेंट है, इसमें भाषा भी है। तो भाषा का योगदान बहुत है और इसके कारण ये इंस्ट्रूमेंट आजकल के युवा लोगों में और आजकल के म्यूज़िक में ज़्यादा पॉपुलर है। ये ना कि बस भारतीय संगीत का एक हिस्सा है बल्कि ये पूरे विश्व संगीत का एक हिस्सा है, ये हम लोग मानते हैं। और जैसे कि हमारे यहाँ पे IGCIC में मेरे पास जो छात्र सीख रहे हैं, उसमें सारे स्टूडेंट्स ना कि बस तबला और ढोलक, इंडियन परकशंस, जैसे पखावज भी मेरे पास सीखते हैं स्टूडेंट्स। और यहाँ के जो आर्टिस्ट है, जो ड्रम्स बजाते हैं, परकशन बजाते हैं और जेम्बे या ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, रावण प्लेयर जो है, यहाँ के सारे लोग यहाँ पे भारतीय संगीत और लयताल सीखने के लिए हमारे पास आते हैं। तो मुझे इस बात से खुशी होती है कि संगीत बस दो संस्कृति को नहीं जोड़ता है, तो संस्कृति के आगे लोगों को जो जोड़ने का काम होता है वो तबले से हो रहा है मॉरिशस में। इस बात के लिए मैं खुश हूँ। हम लोग ना कि बस यहाँ पे संगीत सिखाते हैं बल्कि यहाँ के विविध, मतलब यहाँ के जो कलाकार हैं, संस्थाएं हैं। और मैंने यहाँ पे देखा मॉरिशस में, बहुत खुशी होती है कि नेल्सन मंडेला एक जो संस्था है वो, या फिर आप देखिए चाइनीज म्यूजिक स्कूल है, और फिर आई गेस तमिल फेडरेशन जो है यहाँ के, तो इन सबके साथ हमने कोलैबोरेशन करके एक संगीत के बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पे किए है। तुम यही है विश्व संगीत की सारे संस्कृति और सारे कलाओं को जोड़ते हैं और उसमें से एक अपनी कला प्रस्तुति करते हैं।
0: इसलिए तो कहते हैं ना, संगीत जो है सीमाओं के पार जाता है, संगीत को ना ही कोई सीमा बांध सकती है, क्योंकि कहते हैं सरहद तो सिर्फ हम जैसे लोगों के लिए है जो ये है, संगीत तो इससे भी परे है जो सबको एक साथ जोड़े रखने का कार्य करते हैं। हम चाहेंगे आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, किस तरह से जो है तबला से आपका जुड़ना हुआ, आप अपने जो है परंपरा घराने की बात कर रहे थे, चाहेंगे थोड़ी सी जानकारी आप इस पर दें।
1: जी, भारतीय संगीत, जैसे निर्माल्य सर ने बताया कि भारतीय संगीत केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, तो वो आत्मरंजन के लिए भी है।
0: बिल्कुल।
1: तो आत्मरंजन, आप किसी क्लासरूम में बैठ के आप कोई म्यूजिक सीखेंगे और उससे आपको आत्मरंजन मिलेगा, ये बात तो है नहीं। आत्मरंजन के लिए आपको परंपरा के पास जाना पड़ता है। परंपरा गुरु शिष्य से जुड़ी हुई है और भारतीय संगीत और भारतीय संस्कृति की नींव गुरु शिष्य परंपरा से ही है। आप कोई भी चीज देखेंगे तो गुरु शिष्य परंपरा से ही जुड़ी है। तो मेरा भी वही जोड़ना हुआ। मेरी शुरुआत, मैं बचपन में 6 साल का था, वहां से मेरी शुरुआत हुई। मेरे प्रारंभिक गुरु के पास मैंने शिक्षण लिया। उसके बाद मैंने भारत के एक लीजेंडरी तबला आर्टिस्ट है और उनका अमूल्य योगदान है भारतीय संगीत में, तालयोगी पंडित सुरेश तलवलकर जी मेरे गुरु, जिनके पास मैं 15-16 साल गुरु शिष्य परंपरा में रह के मैंने अपना शिक्षण प्राप्त किया और फिर MA कंप्लीट किया मैंने तबले में। और उसके बाद बहुत जगह पे प्रोग्राम्स भी किए हैं और विश्व संगीत में भी मुझे तबला का एक अपना प्रोग्राम करने का मौका भी मिला है।
0: जी, तो चलिए, हम तो आपसे पूछना चाह रहे थे

0: कि किस तरह से जो है मॉरिशन कल्चर में आप देखते हैं कि लोगों के दिल में जो है तबला के प्रति रुचि है, लेकिन आपने अपने बातों में बता ही दिया कि किस तरह से नौजवान है और किस तरह से काफ़ी संस्थाओं के साथ आप लोग जुड़कर कार्य करते हैं। कहीं ना कहीं जब कोई भी स्टूडेंट आप लोगों से जुड़ता है IGCIC के माध्यम से, उन्हें सिर्फ सीखने का अवसर नहीं बल्कि एक मंच भी प्रदान किया जाता है जहाँ पर वो अपनी कला को दर्शा भी सकते हैं। सिर्फ IGCIC तक ये मंच सीमित नहीं है, हमने तो कई बार टेलीविजन पर देखा भी है, विभिन्न संस्थाओं के साथ आप जुड़ते हैं, बड़े बड़े जब आयोजन होते हैं, फिर चाहे वो गणेश चतुर्थी हो, दीपावली हो या कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, तो इसमें जो है आपके स्टूडेंट्स भी भाग लेते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
1: जी, इसमें एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मुझे खुशी है कि तबला ये जैसे देखा जाता है कि मेल डोमिनेटिंग परकशन इंस्ट्रूमेंट ऐसे कुछ जगह पे बोलते हैं लोग, पर मैं इसके लिए एक उदाहरण मॉरिशस का देना चाहूँगा कि मेरे पास यहाँ पे लगभग 50-60 महिला है तबला सीख रही है।
0: ओ, ये तो बहुत ही कमेंडेबल
1: ना
0: है।
1: ना कि वो बस तबला सीख रही है, उसमें से यंगस्टर्स का जो नंबर है वो सबसे ज्यादा है, और यंगस्टर्स लड़कियों में से बहुत सारे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बहुत सारे जगह पे परफॉर्मेंसेस भी दिए हैं। तो ये खुशी की बात है कि महिलाएं भी इसमें हैं,
0: जुड़ रही है
1: और अपनी कला के प्रति अपना प्रेम दिखा रही है, ना कि सीख रही है, बल्कि कुछ इनमें से ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको आगे जाके तबला आर्टिस्ट बनना भी है। तो ये मैं चाहता हूँ कि ये अच्छी बात है और IGCIC ना कि बस एक क्लासरूम नहीं है कि जहाँ पे आप आते हैं और बस तबला सीखते हैं, गाना सीखते हैं, डांस सीखते हैं, यहाँ से आप बहुत सारे आर्टिस्ट भी बाहर उभरते हुए आ रहे हैं, और इसके लिए हम लोग बहुत खुश है कि मॉरिशस में इतना बड़ा अच्छा काम हो रहा है।
0: और तबला की बात करें तो यहाँ पर तो इतने प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, रामायण गान होता है या जो भी होता है, खासकर जिसमें युवा जुड़े हैं उनमें तो तबला की आवश्यकता तो पड़ती ही है, क्योंकि आई बिलीव ये सारी चीजें तबला के बिना अधूरा है।
1: जी जी जी, यहाँ पे भजन के बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, हर जगह पे तबला आर्टिस्ट है, तबला का योगदान है।
0: कभी कभी तो तबला आर्टिस्ट की कमी भी महसूस होती है, कभी आवश्यकता होती है, तो हमें पता है हमारे सामने ऐसे काफी सिनेरियोज आए हैं जहां पर लोग ढूंढते और नहीं मिलते हैं। तो अच्छा है कि युवा जो है यहां के जुड़ रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में शायद ऐसी कमी हम नहीं देख पाए। तो आपको बहुत बहुत हम धन्यवाद कहेंगे और शुभकामनाएं देंगे आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े और इस अच्छे कार्य के लिए। आपको हम कुछ बजाने के लिए तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कोई संदेश अगर आप देना चाहें तो कुछ सुना दीजिए। बिल्कुल,
1: आज के इस शुभ अवसर पे मैं जितने भी कलाकार हैं यहाँ के मॉरिशस के, जितने भी गुरु हैं, जितने भी संगीत से जुड़े शिक्षक हैं, शिष्य हैं, उन सबको एक संदेश यही दूंगा कि आप आगे की पीढ़ी के लिए ऐसे ही काम करते रहिए, संगीत को आगे बढ़ाते रहिए। और इसके लिए कुछ एक छोटी सी चीज मैं
0: बहुत धन्यवाद। और एक और बात मैं जोड़ना चाहूंगी, अपने गुरु शिष्य परंपरा की बात की, जो समय के साथ हम देख रहे हैं काफी कम होता जा रहा है। और गुरु की बात करें तो जरूरी नहीं है कि एक संगीत ही के क्षेत्र में या किसी भी आर्ट फॉर्म में ही एक गुरु की आवश्यकता होती है। अभी का हमारी जो नौजवान है, जो नई पीढ़ी है, वो जल्दी बहक जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक आइडल का होना, एक गुरु का होना बहुत आवश्यक होता है। मतलब माता पिता तो है ही, लेकिन गुरु का होना बहुत जरूरी है, जो आपको गाइड करे, जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए।
1: गुरु आपको सही मार्ग दिखाता है
0: जी।
1: तो वो मार्ग दिखाने वाला जो व्यक्ति है
0: जी,
1: वो होना आपके जीवन में बहुत जरूरी है,
0: और अभी के समय में तो शायद ज्यादा इसकी आवश्यकता है।
1: जी जी,
0: तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल काले जी इस सुंदर प्रस्तुति के लिए और जो भी जानकारी आपने दी इसके लिए। चलिए, एक और गीत के साथ हम कार्यक्रम को आगे ले जाते हैं।

0: आज की चर्चा।
1: इस कार्यक्रम से आप अभी तक जुड़े हुए हैं बहुत बहुत धन्यवाद। और आज संगीत के महत्व पर बात कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने वोकल से शुरुआत की तबला पर, और अब बारी है डांस की। क्योंकि संगीत की बात करें तो इन सब के बिना संगीत जो है अधूरा है। और इस समय हमारे साथ IGCIC के डायरेक्टर श्री रंजन सिंह जी तो उपस्थित है ही, साथ ही IGCIC की कत्थक डांस टीचर भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, डॉक्टर समीक्षा शर्मा जी। आपका स्वागत हम करते हैं। उससे पहले हम एक श्रोता से मिलेंगे जो हमारे साथ लाइन पर है, चलिए उनको सुनते हैं। हेलो, नमस्कार।
2: नमस्कार, मैं हूँ वसंती।
1: नमस्ते वसंती जी, कैसी हैं आप?
2: मैं ठीक हूँ। अच्छा, संगीत दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: बहुत धन्यवाद।
2: मैं दो लाइन गाने जा रही हूँ।
1: बिल्कुल
2: जी। चांदी जैसा रंग।
1: ओके।
2: चांदी जैसा रंग है तेरा,

0: जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर के कोमल राहट सोते भाग जगाए, जो पत्थर छुए गोरी वो ही राह बन जाए, तू जिसका मिल जाए वो, तू जिसका मिल जाए वो हो जाए मालमाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल।
1: बहुत धन्यवाद वसंती जी इन सुंदर पंक्तियों के लिए। चलिए अन्य कोई श्रोता है अगर आप जुड़ना चाहते हैं, संगीत दिवस के महत्व पर बात करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। 4028085 है नंबर हमारा। रंजन जी आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर हम डांस की बात करते हैं, नृत्य की बात करते हैं, ऑब्वियसली ये भी संगीत में अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान देता है, एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इस पर आपके क्या विचार है?
2: सो हमारी भारतीय संस्कृति में नृत्य की बहुत पुरानी परंपरा रही है। एक सिंधु सभ्यता जो वन ऑफ द एंशियंट सभ्यता है, वहाँ से अगर जो अवशेष मिले हैं उसमें एक डांसिंग लेडी हैं, सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट आन आई मीन जहाँ से हमारे जो रिटेन हिस्ट्री नहीं उससे पहले भी डांस की परंपरा है। नाट्यशास्त्र भरत मुनि ने लिखा वहाँ से लेकर के, और सबसे खास बात है कि भारत देश में जो विविधता है, जितने क्लासिकल डांस के फॉर्म्स हैं, हर क्षेत्र हर एरिया में अलग अलग विधाएं हैं और अलग अलग परंपराएं हैं। और हमारे साथ आज परंपरा है जो नॉर्थ जहाँ मॉरिशियस में भारत से ज़्यादा जो लोग आए हैं वहाँ की नृत्य परंपरा को ये आगे ले करके आने वाली हैं। और इनके बारे में मैं बताना चाहूँ कि ये बहुत ट्रेन टीचर हैं, डॉक्टर हैं, उन्होंने डॉक्टरेट किया हुआ है और कई कंट्रीज में सिखा चुकी हैं, और डांस सिखाने में इनका करीब करीब 2 दशक से ज़्यादा का अनुभव रहा है। तो
1: चलिए बहुत धन्यवाद। अब हम मिलते हैं डॉक्टर समीक्षा शर्मा जी से, जो IGCIC में कथक डांस टीचर हैं। और लोग जितने हमारे सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो सोच रहे होंगे ना कि संगीत की बात करें तो क्यों हमने इन अलग अलग जो है इसको जोड़ा, पर कहीं ना कहीं वोकल की बात करें, तबला की बात करें, डांस की बात करें, संगीत के बिना तो सब कुछ अधूरा है। तो डॉक्टर समीक्षा जी आपका स्वागत है, थोड़ा सा अपने बारे में बताया। ऐसे हमें भी सौभाग्य मिला है आपको देखने का और सुनने का, ये बड़ा अच्छा गाती भी है हमें पता है।
3: सबसे पहले सभी दर्शकों को और श्रोताओं को मेरी ओर से विश्व संगीत दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे बारे में, मैं जब 8 साल की थी तब से मैं नृत्य कर रही हूं, और मेरे जो गुरुजी हैं, प्रथम गुरुजी हैं, वो गुरु श्री पुरुषोत्तम नायक जी थे। मैं बेसिकली ग्वालियर की हूं, मध्य प्रदेश से आती हूँ। उसके बाद मैंने दिल्ली कथक केंद्र में गुरु श्री पंडित राजेंद्र गंगानी जी से नृत्य की शिक्षा ली। और मेरे बारे में बस एक लाइन यही कहना चाहूँगी कि नृत्य मेरे लिए सिर्फ नृत्य नहीं है, मेरे जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जिसके बिना मैं शायद सांस भी ना ले पाऊँ। तो नृत्य जो मैंने सीखा उसके प्रति मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं विश्व स्तर पर और जहाँ जहाँ भी मुझे अवसर मिले मैं उसको फैलाऊँ, लोगों को उससे प्यार करना सिखाऊँ, ये मेरा उद्देश्य रहता है। जिस तरह से मैं नृत्य को देखती हूँ सभी उसी नज़रिए से देखें। मेरे लिए नृत्य कथक कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, और मैं ऐसा ही अपने सभी शागिर्दों को कहना चाहती हूँ कि जो कथक नृत्य है बहुत भावपूर्ण है, और कथक का जो शाब्दिक अर्थ है वही अपने आप में ये कहता है कि नृत्य कथा कहे सो कथक कहावे, जैसा कहा वैसा करके दिखाया तो वो नृत्य हुआ। और यहाँ पर हम संगीत की बात कर रहे हैं, तो संगीत में अभी आपने गायन, वादन और नृत्य तीनों को शामिल किया, तो जो हमारी गायन परंपरा है वो स्वर नाद आधारित होती है, जो तबला वादन परंपरा है वो ताल आधारित होती है, ताल से प्रभावित होती है, और जो नृत्य है वो भावपूर्ण होता है, जो आपको मेरा चेहरा देखकर शायद पता चल रहा होगा। तो इन तीनों विधाओं को मिलकर संगीत बनता है। और हम जहाँ तक भारतीय संगीत की बात करते हैं तो ये तो शायद पूरा विश्व में अभी सभी लोग इस बात के लिए जागरूक हो चुके हैं कि हमारा जो संगीत है वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। हम नटराज को देखते हैं, जैसा आपने शुरुआत की इंद्रियों की, अब हमारे पॉडकास्ट की जो शुरुआत हुई आपने इंद्रियों की बात की, तो जो नटराज की मूर्ति है उसमें हमें पूरा ब्रह्मांडीय ऊर्जा देखने को मिलती है, और वो हम अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं हमारे संगीत के माध्यम से। और जो हमारा नृत्य है वो मनोरंजन का साधन तो है।

0: ही मनोरंजन और जैसा कि कुणाल ने कहा आत्मरंजन, और आत्मरंजन के साथ साथ हम इस सृष्टि से जुड़े, इस प्रकृति के सूक्ष्म रूप से जुड़े, तो वो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और हम अगर छोटे रूप में भी इसको सीखते हैं तो भी हम वो उसको करने में बहुत हद तक सफल हो पाते हैं। तो ये नृत्य है, ये हमारा संगीत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। और नृत्य की बात करें और खासकर मॉरिशन कंटेक्स्ट में बात करें, आपके यहाँ तो बहुत सारे शिष्य जो है सीखने आते हैं, और हर उम्र के बच्चे हो, बड़े हो, और कुछ तो ऐसे भी है जो रिटायर होने के बाद सोचते हैं कि अब मुझे जो है अपने शौक को पूरा करने का अवसर मिला है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर, आपके क्या विचार हैं?
0: ये आप बात आपने बिल्कुल सही कही कि मेरे पास हर उम्र के बच्चे आ रहे हैं, मतलब 3-4 साल से लेकर 70-80 साल की महिलाएं तक आ रही हैं। और सर वो इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हैं सीखने में कि मतलब उनसे शायद सीधा खड़ा भी नहीं हुआ जाता, पर वो डांस करना चाहती हैं और वो सीखना चाहती हैं। तो हमारे पास जैसा मेरा अनुभव है, तो मैं अपने अनुभव के अकॉर्डिंग उन लोगों को उसी तरीके से सिखाती हूँ कि मतलब उनको कम्फर्टेबल रहे, उनको इंटरेस्ट भी रहे, और वो अपने व्यक्तित्व में कुछ ना कुछ चीज़ें जोड़ती रहें। मतलब ये एक सर IGCIC मॉरिशंस को प्रोवाइड कर रहा है, तो मुझे लगता है सभी को इसका लाभ उठाना चाहिए, अपनी उम्र को भूल जाना चाहिए। और अगर पूरे जीवन तक वो नृत्य नहीं कर सके हैं और अभी वो करना चाहते हैं, तो भी उन्हें ज़रूर जुड़ना चाहिए।
1: बिल्कुल समीक्षा जी, अभी का जो समय है, अभी की हमारी जीवन शैली काफ़ी बदल चुकी है। हर कोई स्ट्रेस में जीता है, हर कोई तनाव में जीता है। आज हमारी एक इच्छा पूरी हो रही तो कल दूसरी इच्छा जागरूक हो जाती, तो किस तरह से डांस के जरिए अपने इंद्रियों की जब बात की, तो किस तरह से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरह से ये हमें आने वाले चैलेंजेस के लिए तैयार कर सकता है?
0: देखिए, सारी फसाद की जड़ जो होता है हमारा माइंड होता है, माइंड और इंद्रियां आप कह लो, तब जब आप उसके वशीभूत होते हैं तब आप एक ही डायरेक्शन में सोचते हैं। नृत्य में आपको या किसी भी संगीत विधा में आपको अपने अभ्यास की पुनरावृत्ति करनी होती है, मतलब आपको निरंतर उस चीज़ पर फोकस्ड होना पड़ता है, काम करना पड़ता है, वो एक मेडिटेशन की तरह है। और जब आप किसी भी प्रकार के मेडिटेशन में इंटू होते हैं, जाते हैं, तो आप स्वतः ही अपनी इंद्रियों को समझने लग जाते हैं। आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको एक आइसक्रीम की शॉप दिखी, आपको आइसक्रीम खाने का मन किया, तो अगर आप नृत्य से जुड़े आप समझ जाएंगे, नहीं नहीं ये तो सिर्फ माइंड का एक मतलब आकर्षण है जिसे मुझे नहीं हैंडल करना है, मुझे अपने आप में रहना है। तो इस तरह से आप छोटी छोटी चीजों पर विजय प्राप्त करते हैं, तो आप अपनी इंद्रियों को समझ पाते हैं। जैसे नटराज का मैंने उदाहरण दिया, तो नटराज के पैर के नीचे जो राक्षस है वो अपस्मार कहते हैं उसको, तो वो हमारी इंद्रियों को ही शो करता है और निरंतर वो अभी तक भी वो उनके पैर के नीचे मारा नहीं गया है, क्योंकि इंद्रियों को आप मार नहीं सकते, आप सिर्फ उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? अपने इंटेलेक्चुअल, अपने सबसे ज्यादा विस्तृत स्वरूप जो आपका आत्मिक स्वरूप है उसको जानकर, और वो हमें सहयोग करता है जानने में, हमारा संगीत, हमारा नृत्य।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, खासकर हम मॉरिशन समाज की बात करें, तो डांस किस तरह से आज की सोसाइटी में एक्सेप्ट किया जा रहा है, क्योंकि आज से कुछ समय पहले की यदि हम बात करें तो ऐसा होता था कि इस प्रोफेशन को उस तरह से नहीं लिया जाता था, शायद एक शौक के तौर पर लोग जो है इसे छोटे है तब तक सीख रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी कॉलेजेस के बच्चे भी, उन्हें कॉलेज में सीखने का अवसर मिलता है, लेकिन एक लेवल पर आता है जब पढ़ाई, जब स्ट्रेस बढ़ जाता है, तो बच्चे जो शौक को अलग कर देते हैं और फिर पढ़ाई पर फोकस करने लगते हैं। लेकिन कितना जरूरी है अपने शौक को भी बनाए रखना और साथ ही अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचना, तो इस पर आप कैसे जोड़ना चाहेंगे?
0: जीवन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक भौतिक में हमें भौतिकता में रहना ही पड़ता है, समाज की जो परंपराएं उसका निर्वहन करना ही पड़ता है, अपना जो भी खाना कमाना है वो करना पड़ता है। उसके अलावा जो आप कह रहे हैं, जिस पर हम बात कर रहे हैं, कि आत्मिक संतुष्टि बहुत ज़रूरी है, तो अगर आप अपना 80% अपने भौतिकता को दे रहे हैं, अपने जीवन की रोज़मर्रा की चीज़ों को दे रहे हैं, तो 20% मुझे लगता है आत्मिकता की ओर ज़रूर देना चाहिए। जैसे रोज़ दिन में एक बार दिया करना हमारे लिए आवश्यक होता है, उसी प्रकार मुझे लगता है हफ्ते में एक बार हमें हमारी कलाओं से, हमारी जड़ों से और किसी भी विधा से ज़रूर जुड़ना चाहिए। और वो जुड़ना मतलब सिर्फ टेक्निकल नहीं हो, जैसे कि आजकल लोग कहते हैं कि हमने बच्चों को स्विमिंग सिखा दिया, ठीक है स्विमिंग भी सीखो, बट स्विमिंग सीखना और संगीत सीखना इसमें बहुत फर्क है। मतलब स्विमिंग सिर्फ आपको एक तरह का स्किल्स दे रहा है, पर संगीत आपको ओवरऑल चीजें दे रहा है, आपको जीवन की सच्चाई से और अंतिम लक्ष्य से जोड़ रहा है।
1: बिल्कुल आपने सही कहा, संगीत अपने आप में सुनने में, शब्द अपने आप में छोटा है, लेकिन उसका जो गहराई है उसमें आप में एक बहुत बड़ी बात है। और आजकल डांस बोले हम, वोकल बोले, या किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बजाना बोले, इसे लोग एज अ प्रोफेशन आजकल बहुत चुन रहे हैं, है ना। एक समय था कि हमें सिर्फ डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, और माता पिता भी ऐसे ही ज़्यादातर जो है इस शैली पर ज़्यादा ध्यान देते थे, इस जो है अलग अलग इस पर। लेकिन अभी समय के साथ आर्ट फॉर्म को एज अ करियर के रूप में देखा,

0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल देखा जा रहा है और बहुत सारे ऑप्शन खुल गए हैं. मॉरिशस में भी कई सारे कथक इंस्टीट्यूट हैं और जहाँ पे IGCIC के पुराने स्टूडेंट्स ने अपना खुद का इंस्टीट्यूट डेवलप किया है और बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, काफ़ी सारे उनके पास स्टूडेंट हैं, तो ये कैरियर ऑप्शन भी बन चुका है. तो उसकी तरफ भी अगर जो इंटरेस्टेड हैं उन्हें ज़रूर आना चाहिए.
1: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद. आप क्या हमें सुनाएंगी या क्या संदेश देंगी?
0: संदेश तो मैं बस यही दूंगी विश्व संगीत दिवस पर कि सभी लोगों को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग संगीत को, भारतीय संगीत को ज़रूर बनाना चाहिए और IGCIC से हमेशा के लिए जुड़ जाना चाहिए.
1: कुछ हम चाहेंगे आपसे कुछ सुने, ऐसे आपको हम नहीं जाने देंगे.
0: मैंने जैसा कि कहा नृत्य भावपूर्ण है, तो एक भाव की ही चीज़ मैं करना चाहूँगी. नृत्य की खास बात यह है कि इसमें सुर भी है, नाद भी है, ताल भी है और भाव भी है. तो भाव सभी लोग जानते हैं, कृष्ण से जुड़ा एक भाव है. कृष्ण के बचपन की छोटी सी छोटी कथाएं हैं, बहुत फेमस है यहाँ पर, माखन चोरी. तो उसका एक छोटा सा सुंदर कवित्व, पारंपरिक कवित्व है ये, तो वो मैं सुनाना चाहूँगी. धा धिन धिन धा धिन धिन धा तिन तिन ता त्रक धिन धिन धा कृष्ण सखा मिल गए ग्वालिन घर हिरत फिरत जब देख लियो तब ग्वाल के कांधे चढ़ माखन उदार लियो और खाए लियो दद की मटकी हटकी पटकी और दूध को पी के बखेर दियो पकड़ लियो राधा ने जब तब ग्वाल बाल सब भाग गए दधी खाए गए देख नारायण ताल बजावे नाचन लागे किट थे तथे तथे तकिट थे तथे तथे तकिट ताथे का.
1: बहुत धन्यवाद, बहुत खूब. आप तो हमें इंस्पायर कर रही है कि अब हमें भी आकर जो है कथक थोड़ा बहुत तो सीखना ही चाहिए, एटलीस्ट बेसिक.
0: बिल्कुल, आप संगीत सीख रही है, आप कथक की क्लास में भी आई है.
1: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद समीक्षा जी, इतनी सारी जानकारियों के लिए और इतने सुंदरता से आपने जो है इस चीज़ को प्रस्तुत किया. हम जो है श्री रंजन जी से जानना चाहेंगे, थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से कला का हमारे जीवन में होना बहुत आवश्यक है.
2: जैसा अभी समीक्षा जी ने भी बताया और बाकी हमारे साथी जो कलाकार हैं उन्होंने समझाया, जीवन में हमारा आज हम भाग दौड़ के जीवन में, हमारा लाइफ स्टाइल इज टू बिजी, सो वी आर टोटली इनग्रॉस्ड इन आई मीन आर वर्क, जो प्रोफेशनल स्पेस ऑफ वर्क को ज़्यादा हम टाइम देते हैं. बट लाइफ का व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ वी हैव टू अंडरस्टैंड. तो इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत होती है, सम टाइम वी आर रनिंग बिहाइंड समथिंग, इट्स अ गुड थिंग, बट सब एक बार आपको ध्यान देना होता है, आपको खुद से देखना होता है. तो लाइफ का एक उद्देश्य है कैसे हम खुश रहें, हैप्पी रहें, कैसे जो आत्मसंतुष्टि की बात हो रही थी जो, वो कैसे मिले. संगीत वन ऑफ द बेस्ट थिंग वन कैन डू फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ. सो इस संगीत से जुड़ने का कई तरीके हो सकते हैं. आप सुनते हैं उससे भी काफ़ी रिलैक्स मिलता है, बहुत टेंशन का टाइम है, कंसंट्रेशन बढ़ता है एंड हैप्पीनेस आती है. थोड़ी देर के लिए आप चीज़ों को भूल के आप जो आपकी जो जीवन में तनाव है, जो समस्याएं हैं, सम टाइम आप को ब्रेक भी मिलता है. सो फॉर ब्रेक के लिए भी यूज करते हैं, जैसे कार्यक्रम में आप बीच बीच में म्यूजिक लेके आ रहे हैं. तो मैं यही चाहूँगा कि सब लोग अपने जीवन में थोड़ा ब्रेक लें. बहुत फास्ट जा रहे हैं हम, आज डिजिटल एज में है, मोस्ट ऑफ टाइम स्क्रीन टाइम एंड द ऑफिस टाइम सबके साथ ब्रेक लें, थोड़ा अपने हॉबीज को परस्यू करें. वन ऑफ द म्यूजिक्स एंड IGCIC आपको एक प्लेटफॉर्म देगा, नॉट फॉर जो जिनको 1 ईयर और 6 मंथ का रेगुलर कोर्स करना है सीरियस, वो भी कर सकते हैं, मेच्योर भी आ सकते हैं. और इसके लिए प्री रिक्विजिट कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, ओनली एलिजिबिलिटी यू आर विलिंग टू लर्न समथिंग, यू वॉन्ट टू इन्जॉय योरसेल्फ, सो प्लीज कम. उसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन ओपन किया है एंड न्यू बैचेज हमारे जुलाई से फिर से प्रारंभ होते हैं और हम अपने वेबसाइट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू इसको पॉपुलराइज भी कर रहे हैं. बट मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े उससे. और जैसे हमारे अभी आपने देखा हमारे साथी वोकल टीचर हैं, तबला टीचर हैं, डांस टीचर हैं, योग की भी टीचर हैं. तो ज़्यादा से लोगों से चाहूँगा कि जुड़ें और हमारे कार्यक्रम में भी है. और हम विश्व संगीत दिवस मनाने की जा रहे हैं नेक्स्ट वीक में, सो हम आमंत्रित करेंगे और उसके टाइम और बाकी चीज़ें हम नोटिफाई करेंगे, तो उसमें हम लोग फिर एक बार लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे. और सभी लोग आमंत्रित हैं। और एक बार फिर से बोलना चाहूँगा

0: आपके मंच के माध्यम से, संगीत हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इससे जुड़िए, जिस फॉर्म में भी जुड़ना चाहते हैं जुड़िए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्री रंजन जी, आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े। और जाते जाते हम धन्यवाद देना चाहेंगे आपके सभी टीचर्स का, मिसेज डॉक्टर समीक्षा शर्मा जी जो डांस टीचर है, कथक डांस टीचर, फिर हमारे साथ जुड़े मिस्टर कुणाल काले जी तबला टीचर, और मिस्टर निर्मल्य सेन जी हिंदुस्तानी वोकल टीचर, आप सभी का बहुत बहुत आभार आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और संगीत के अलग अलग शैलियों को प्रस्तुत किया, नृत्य के ज़रिए, वोकल के ज़रिए, तबला के ज़रिए, और बेशक संगीत को अपने जीवन का हिस्सा बनाए और देखिए किस तरह से स्ट्रेस जो है अपने आप में दूर होता है और लाइफ को आप एक पॉजिटिव दृष्टिकोण से देख सकते हैं। तो जब बस आज के लिए बस इतना ही, जाते जाते हम हमारे सभी श्रोता और सभी दर्शकों का धन्यवाद करेंगे और साथ ही धन्यवाद देना चाहेंगे हमारी प्रोडक्शन टीम, हमारी टेक्निकल टीम, प्रोड्यूसर हमारे निज़ाम जी रहे, साथ में टेक्निक पर हमारा साथ दिया कादिया ने, और हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट दीपशिका का आपका भी धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, जल्द हमारी आपकी मुलाकात फिर होगी। नमस्कार आप सभी को।

0: स्टूडियो में आगे आस्था से मिलते हैं, जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार
1: नमस्कार, 10 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। बजट 2026-2027 को एक साहसिक और जिम्मेदार बजट बताते हुए श्रम मंत्री गिजाउद्दीन ने कल राज्यसभा में बजट बहस की शुरुआत की। उनका कहना है कि पेंशन प्रणाली में सुधार आवश्यक है क्योंकि मौजूदा व्यवस्था लंबे समय तक टिकाऊ नहीं रह सकती। उन्होंने ये भी कहा कि AI और ब्लू इकोनॉमी जैसे सेक्टरों में घोषित कदम ऐसे देश की नींव रख रहे हैं जो भविष्य की ओर दृढ़ता से बढ़ रहा। श्रम मंत्री गिजाउद्दीन ने मैटरनिटी लीव को एक साल तक बढ़ाने और पैटरनिटी लीव को 4 हफ्ते से बढ़ाकर 6 हफ्ते करने के फैसले का भी स्वागत किया। उन्होंने माना कि इस फैसले के बाद कुछ कंपनी महिलाओं को नौकरी पर रखने में हिचकिचा सकती हैं, लेकिन उनका कहना है कि महिलाओं के साथ किसी भी तरह का भेदभाव न हो इसके लिए कानून में पहले से ही जरूरी प्रावधान मौजूद है। तो राज्यसभा में बैठक के दौरान फिर शुरू होने पर प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने मींस टेस्टिंग को फिलहाल रोकने की घोषणा की। इस व्यवस्था के तहत रिटायरमेंट पेंशन पाने वालों की आय और आर्थिक स्थिति की जांच की जानी थी। समाज सुरक्षा मंत्री अशोक सुभों का कहना है कि इस मामले में आखिरकार प्रधानमंत्री के फैसले को आगे रखा गया है, भले ही आर्थिक नजरिए से मींस टेस्टिंग को उचित माना जा रहा था। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस मुद्दे पर सहमति नहीं बनती तो दूसरे विकल्पों पर भी विचार किया जा सकता था। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम द्वारा पेंशन सुधार के तहत मींस टेस्टिंग को फिलहाल स्थगित करने के फैसले का कई राजनीतिक और सामाजिक पक्षों ने स्वागत किया है। बजट 2026-2027

इस पेश किए जाने के बाद इस कदम को लेकर कई प्रतिक्रियाएं और चिंताएं सामने आई। ओनाफा मुगिस ने उन मर्शनों की सराहना की जिन्होंने इस बजटीय कदम के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी। उनका कहना है कि सरकार का ये फैसला दिखाता है कि लोकतांत्रिक बहस में नागरिकों की भागीदारी और उनकी राय कितनी महत्वपूर्ण है। बजट 2026-2027 में कलाकारों और सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों

0: उठा रही थी। आर्टिस्ट यूनियन के अनुसार ये पूरे कला और सांस्कृतिक क्षेत्र के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। संगठन ने सरकार से इन घोषणाओं को जल्द में अमल में लाने की अपील की है। विदेश स्तर की खबरों में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर कीर स्टार्मर ने लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अगले आम चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करने के लिए वे सबसे उपयुक्त व्यक्ति नहीं हैं। नए नेता के चयन तक वे प्रधानमंत्री के पद पर बने रहेंगे। लेबर पार्टी में नेतृत्व चुनाव की प्रक्रिया 9 जुलाई से शुरू होने वाली है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। शोक समाचार सुनिए। रामचंद्र रूद रिश्मों में 57 साल के 57 ईयर्स ओल्ड के श्याम सुंदर तपसी की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज शाम के 4 बजे उन्हीं के मकान रिश्मों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौदमास की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टूडे एट 4 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस।

भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर। इस समय स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:04 हो चुके हैं। पुनः आप सभी का हम स्वागत करते हैं रेडियो मॉरिशस की लहरों पर भक्तिमय यात्रा भक्ति धारा में। मैं हूं रत्ना, आपकी सेवा में पुनः उपस्थित हो चुकी हूं। हमारा करजोड़ वंदन स्वीकार करें। अभी से लेकर दिन के 11 बजे तक इस भक्तिमय यात्रा में कुछ भक्तिमय भजनों के साथ हम जुड़ेंगे। तो आइए कार्यक्रम का श्री गणेश करते हैं। इस प्रथम गणेश भजन द्वारा आप सभी को याद दिला दे श्रोताओं, इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन पाएंगे आचार्य सुदेश बद्री जी को वेद सुधा कार्यक्रम में ठीक 10:15। आज का दिन मंगलमय रहे।

श्रोताओं, आज मंगलवार है और महावीर का वार है, और आज के दिन जो कोई हनुमान चालीसा का पाठ पठन करता है उनके मन और मस्तिष्क में आध्यात्मिक बल की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि नित्य हनुमान चालीसा पढ़ने से पवित्रता की भावना का विकास होता है और मनोबल बढ़ता है। हनुमान चालीसा का पाठ आपको भय और तनाव से छुटकारा प्राप्त करवाता है। हनुमान जी की कृपा से शरीर की समस्त पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिल जाती है। किसी भी प्रकार का शारीरिक संकट या मानसिक संकट आए तो, या फिर कभी प्राणों पर संकट आ जाए तो सदैव यही पंक्ति बार बार रटते रहे कि संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमंत बलबीरा। या फिर संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जोलावे। यह आपके भीतर नए सिरे से आशा का संचार करता है।

0: वेदों पर आधारित कार्यक्रम, आइए सुनिए वेद सुधा।
1: वेद सुधा कार्यक्रम के समस्त आदरणीय श्रोताओं को मेरा सादर अभिवादन। आज के इस कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार निर्धारित की गई है। सर्वप्रथम हम वेद पाठ एवं उसका भावार्थ सुनेंगे, तत्पश्चात एक मधुर भजन का आनंद लेंगे और अंत में एक वैदिक मंत्र की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की जाएगी। तो आइए आरंभ करते हैं वेद पाठ। ॐ जातः परेण धर्मणा यत् संवृद्धिः सभानुवा पिता यः कश्यस्याग्निः श्रद्धा माता मनुकवि। साधना के इस मार्ग में जो मननशील होते हैं, कवि जो क्रांतदर्शी होता है, दूरदर्शी होता है, सूक्ष्मदर्शी होता है, ज्ञानी अर्थात ज्ञान ज्योति से प्रकाशमान अग्रणी विद्वान होता है, वह उस प्रभु मार्ग में उसका पिता होता है, सब ओर से रक्षक संरक्षक होता है और श्रद्धा माता अर्थात सत्य को सदा अपनाने और असत्य को सदा छोड़ते रहने की जो प्रवृत्ति होती है वह माता होती है। ओम सोमं राजानं वरुणम अग्निमन्वारभामहे आदित्यं विष्णुं सूर्यं ब्रह्माणं च ब्रह्मणस्पतिं। सुख शांति और आनंद देने वाले सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वांतर्यामी, सर्वप्रेरक प्रभु का उपासकों को श्रद्धा भक्ति से स्मरण करना चाहिए और उसी का आश्रय लेकर अपने लोक को सुख सौभाग्यमय और परलोक को आनंदमय बनाने का हार्दिक प्रयास करना चाहिए। ओम पुरुत्वादाशिषां वोचेरिगग्ने तवस्विदा तोदस्येव शरण आमहस्य। हे प्यारे प्रभुवर, मैं तेरे प्रति आत्मसमर्पण करने वाला भक्त सतत तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि शिष्य जैसे गुरु की शरण में, भृत्य जैसे धनाढ्य की शरण में आकर उसका कृपा पात्र बनता है, ऐसे ही मैं भी तेरा कृपा पात्र बनूं। ओम प्रहोत्रे पूर्व्यं वचोग्नये भरता बृहत् विपाम ज्योतिषे विव्रते।

धसे। उपासकों को चाहिए कि जैसे इस जगत में ज्ञान ज्योति से ज्योतिर्मय शुद्ध पवित्र महापुरुषों की हृदय से प्रशंसा की जाती है, ऐसे ही वे उस सर्वशक्तिमान सबके कर्मफल विधाता सर्वविद्ध सुख सौभाग्यों के प्रदाता ज्ञान प्रकाश के अनुपम स्रोत प्रभु की वे हार्दिक अनुपम वचनों से हृदय से स्तुति प्रार्थना उपासना करें। ओम शांति शांति।

स्वस्तिनो मिमीतामश्विना भगस्वस्ति देव्यदितिरनर्वणा स्वस्ति पूषा असुरो दधातुन स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना। श्रुताओ, वैदिक वाङ्मय मानव सभ्यता की प्राचीनतम ज्ञानधारा है। वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, अपितु संपूर्ण मानव जीवन के मार्गदर्शक हैं। उनमें वर्णित प्रत्येक मंत्र मानव के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक विकास का संदेश देता है। वेदों का उद्देश्य केवल ईश्वर स्तुति करना नहीं, बल्कि मनुष्य को ऐसा जीवन जीने की प्रेरणा देना है जिससे वह स्वयं सुखी बने और संपूर्ण विश्व के कल्याण में योगदान दे सके। श्रोताओं, प्रस्तुत स्वस्तिवाचन मंत्र इसी सार्वभौमिक कल्याण भावना का अद्भुत उदाहरण है। इस मंत्र में ऋषि संपूर्ण मानव जाति के लिए स्वास्थ्य, समृद्धि, ज्ञान, सुरक्षा, पोषण, विवेक तथा प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन की कामना करता है। यह मंत्र किसी एक व्यक्ति, संप्रदाय अथवा राष्ट्र के लिए नहीं, बल्कि समस्त प्राणी मात्र के लिए मंगल कामना का उद्घोष है। श्रोताओ, वेदों में स्वस्ति शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ केवल शुभकामना या आशीर्वाद नहीं है। स्वस्ति का तात्पर्य है ऐसा जीवन जिसमें सत्य, ज्ञान, स्वास्थ्य, सदाचार, समृद्धि, शांति और आत्मोन्नति का समन्वय हो, जहां व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और प्रकृति के मध्य संतुलन स्थापित हो, वहीं वास्तविक स्वस्ति का उदय होता है। श्रोतागण,

मंत्र हमें बताता है कि मनुष्य का कल्याण अनेक तत्वों पर आधारित है। केवल धन से जीवन सुखी नहीं बनता, केवल शक्ति से उन्नति नहीं होती, केवल ज्ञान से पूर्णता नहीं आती और केवल भौतिक प्रगति से शांति नहीं मिलती। जीवन में गति, शक्ति, ज्ञान, पोषण, व्यापकता, विवेक और प्रकृति के साथ सामंजस्य आवश्यक है। यही इस मंत्र का मूल संदेश है। भावार्थ इस प्रकार है, हे परमात्मन, हमारे जीवन में गति, शक्ति, कर्मशीलता और उन्नति उत्पन्न करने वाली शक्तियां कल्याण का विस्तार करें। अखंड, सर्वव्यापक तथा संरक्षणकारी दिव्य व्यवस्था हमारा कल्याण करे। संपूर्ण जगत का पालन पोषण करने वाली तथा प्राण शक्ति प्रदान करने वाली ईश्वरीय व्यवस्था हमारा कल्याण करे। उत्तम ज्ञान और विवेक से युक्त आकाश और पृथ्वी हमारे लिए मंगलकारी सिद्ध हों। श्रोताओं, स्वस्ति शब्द सु और अस्ति से बना है। सु का अर्थ है श्रेष्ठ, उत्तम, कल्याणकारी। अस्ति का अर्थ है अस्तित्व या स्थिति। अतः स्वस्ति का अर्थ हुआ ऐसा उत्तम अस्तित्व जिसमें जीवन के सभी पक्ष संतुलित और कल्याणकारी हों। वेदों में स्वस्ति का अर्थ केवल रोग मुक्त शरीर नहीं है। यदि शरीर स्वस्थ हो किंतु मन अशांत हो तो स्वस्ति नहीं है। यदि धन हो परंतु चरित्र न हो तो स्वस्ति नहीं है। यदि ज्ञान हो परंतु सदाचार न हो तो स्वस्ति नहीं है। वास्तविक स्वस्ति वही है जिसमें शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न, बुद्धि निर्मल, चरित्र पवित्र, परिवार संगठित, समाज नैतिक और आत्मा ईश्वराभिमुख हो। वैदिक ऋषियों ने स्वस्ति को जीवन का सर्वोच्च व्यवहारिक आदर्श माना है। इसीलिए यज्ञों, सभाओं, संस्कारों और धार्मिक अनुष्ठानों में स्वस्तिवाचन मंत्रों का विशेष स्थान है। श्रोताओं, इस मंत्र में प्रयुक्त अश्विना शब्द का अर्थ इस प्रकार है। अश्व शब्द का अर्थ गति, शक्ति, सामर्थ्य और प्रगति है। अतः अश्विना उन शक्तियों का प्रतीक है जो जीवन को गतिशील बनाती है। संसार का प्रत्येक विकास गति पर आधारित है। जहां गति है वहीं प्रगति है और जहां जड़ता है वहां पतन है। सूर्य निरंतर गतिशील है, पृथ्वी गतिशील है, वायु गतिशील है, जल प्रवाहित होता है और जीवन स्वयं गति का नाम है। मनुष्य के जीवन में भी उन्नति तब आती है जब वह कर्मशील बनता है। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, परिश्रम प्राप्त करता है और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ता है, उसके जीवन में स्वस्ति का विकास होता है। श्रोताओं, ऋषि की प्रार्थना है कि हमारे जीवन में ऐसी शक्ति उत्पन्न हो जो हमें निष्क्रियता से निकालकर कर्मयोगी बनाए। श्रोताओं, भाग शब्द अर्थ केवल धन या भाग्य नहीं है। वैदिक साहित्य में भग शब्द का अर्थ है ज्ञान, ऐश्वर्य, बल, यश, धर्म, सद्गुण और समृद्धि। वास्तविक भाग्य वही है जिसमें मनुष्य के भीतर श्रेष्ठ गुणों का विकास हो। श्रोताओं, यदि किसी व्यक्ति के पास धन तो हो किंतु विवेक न हो तो उसका धन उसके पतन का कारण बन सकता है। इसके विपरीत यदि किसी व्यक्ति के पास सीमित साधन हो
परंतु ज्ञान, चरित्र और परिश्रम हो तो वह निरंतर उन्नति करता है। अतः ऋषि यहाँ ऐसे भग की कामना करते हैं जो मनुष्य को पूर्णता की ओर ले जाए। इस मंत्र में अदिति शब्द आया है। अदिति का अर्थ है जो विभाजित न हो, जो अखंड हो। अदिति व्यापकता और समग्रता का प्रतीक है। श्रोताओ, मनुष्य जब संकीर्ण विचारों में बंध जाता है, जब संघर्ष उत्पन्न होता है, भाषा, रंग, संप्रदाय, जाति, क्षेत्र और स्वार्थ के आधार पर होने वाले विभाजन समाज को दुर्बल बना देते हैं। श्रोतागण, अदिति हमें सिखाती है कि संपूर्ण मानवता एक परिवार है। जो दृष्टिकोण सबको साथ लेकर चलता है, वही वैदिक दृष्टिकोण है। अदिति का भाव जीवन में उदारता, सहिष्णुता और विश्व बंधुत्व का विकास करता है। इस मंत्र में अनर्णवः का तात्विक अर्थ आप समझिए। अनर्णवः का अर्थ है जिसमें संघर्ष, विरोध, दोष और विघ्न न हो। श्रोतागण, मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी संसार से नहीं बल्कि अपने भीतर के दोषों से होता है। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष मनुष्य की शांति को नष्ट कर देते हैं। जब ये दोष दूर होते हैं तब जीवन में स्वस्ति आती है। ऋषि की प्रार्थना है कि हमारा जीवन ऐसी चेतना से युक्त हो जो हमें इन आंतरिक शत्रुओं पर विजय दिलाए। श्रोतागण, इस मंत्र में पूषा शब्द आया है। पूषा का अर्थ है पालन पोषण करने वाली शक्ति। यह संपूर्ण प्रकृति में कार्यरत वह व्यवस्था है जो जीवन को बनाए रखती है। सूर्य ऊर्जा देता है, पृथ्वी अन्न उत्पन्न करती है, जल जीवन का आधार बनता है, वायु प्राणों का संचालन करती है। यह समस्त व्यवस्था पूषा का कार्य है। यदि पोषण की व्यवस्था न हो तो जीवन का अस्तित्व संभव नहीं है। ऋषि इस पोषणकारी व्यवस्था से प्रार्थना करते हैं कि वह हमारे जीवन को बल, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करें। श्रोताओं, इस मंत्र में असुर शब्द आया है। वैदिक साहित्य में असुर शब्द का अर्थ राक्षस नहीं है। निरुक्त में कहा गया है, असुरम ददाति इति असुरः, अर्थात जो प्राण देता है वह असुर है। यह असुर का अर्थ जीवन शक्ति, प्राण बल और ऊर्जा प्रदान करने वाली सत्ता है। परमात्मा संपूर्ण जगत का प्राण दाता है। उसी की व्यवस्था से सूर्य प्रकाश देता है, वायु बहती है, जल प्रवाहित होता है और जीवन संचालित होता है। इस मंत्र में असुर शब्द जीवनदायी शक्ति के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। श्रोताओ, द्यौ और पृथ्वी वैदिक साहित्य के अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द हैं। द्यौ प्रकाश है, ऊर्जा और व्यापकता का प्रतीक है। पृथ्वी धारण, स्थिरता और पोषण का प्रतीक है। आकाश और पृथ्वी के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। ऋषि इन दोनों को मानव जीवन के कल्याण का आधार मानते हैं। इस मंत्र में सिखाता है कि प्रकृति केवल उपयोग की वस्तु नहीं है बल्कि सम्मान और संरक्षण की अधिकारी है। श्रोताओ, प्रस्तुत स्वस्तिवाचन मंत्र वैदिक संस्कृति के सार्वभौमिक कल्याण दर्शन का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें जीवन की संपूर्ण आवश्यकताओं का समावेश है। गति और पुरुषार्थ, ज्ञान और समृद्धि, उदारता और एकता, पोषण और स्वास्थ्य, प्रकृति और विवेक, ये सभी तत्व इस मंत्र में समाहित हैं।
ऋषि की

0: दृष्टि केवल व्यक्तिगत सुख तक सीमित नहीं है, वह संपूर्ण मानवता के कल्याण की कामना करता है। यही वैदिक संस्कृति की महानता है। इस मंत्र का नियमित अध्ययन और मनन मनुष्य के भीतर सकारात्मकता, कर्तव्य परायणता, आत्मविश्वास, विश्व बंधुत्व तथा ईश्वर निष्ठा का विकास करता है। अतः यह मंत्र केवल यज्ञ में उच्चारित होने वाला मंत्र नहीं है, बल्कि संपूर्ण जीवन को दिशा देने वाला एक महान वैदिक घोष है। इसके आदर्शों को अपनाकर व्यक्ति, समाज और राष्ट्र सभी स्थायी सुख, शांति और उन्नति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। यही इस मंत्र का शाश्वत संदेश है। आदरणीय श्रोताओं, आज का कार्यक्रम अब अपने समापन की ओर है। हमें विश्वास है कि वेद मंत्र की व्याख्या ने आपके जीवन में सकारात्मकता प्रेरणा प्रदान की होगी। इस कार्यक्रम को सजाने हेतु श्रीमती अंजू जी का विशेष धन्यवाद है। आप सभी का स्नेह और श्रवण हमारे लिए अमूल्य है। पुनः एक नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद सुधा।

रक्षा स्तोत्र, इसका भी पठन और श्रवण करने से सदैव हमारी रक्षा करते हैं हनुमान। मंगलवार को विशेष कर हनुमान जी को प्रसन्न करने का उपाय। हनुमान जी प्रसन्न हो जाए तो धन शक्ति की प्राप्ति होती है, और इतना ही नहीं, आज के दिन ओम हनुमन्ते नमः इस मंत्र का जाप 21 बार करने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, संकट का नाश होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। आइए भगवान हनुमान का नाम स्मरण करते हैं और हनुमान चालीसा को श्रवण करते हुए दिनचर्या को आगे बढ़ाते हैं।

बार बार बिनती करूं धरु चरण पर शीश, भक्ति दान मोहि दीजिए हे कपीश जगदीश। अर्थात हे कपिराज, हे जगदीश, मैं आपसे बारंबार बिनती करता हूं कि आपके चरणों पर अपना शीश रखकर प्रणाम करता हूं, कृपा करके हमें शक्ति दे, भक्ति दे, भक्ति का दान दीजिए। यही एकमात्र प्रार्थना हमारे मन में। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम को बस यहीं पर समाप्त करेंगे। भगवान हनुमान सभी को बल बुद्धि का आशीर्वाद दे, सभी का जीवन मंगलमय रहे, संकटों से दूर रहें। ईश्वर हमें साहस दें आगे बढ़ने के लिए। इसी के साथ रत्ना को दीजिए अनुमति, पुनः उपस्थित होंगे एक अन्य कार्यक्रम को लेकर। आप सभी को नमस्कार एवं शुभ दिन।

0: स्टूडियो में आसाम से मिलते हैं जहां 10 घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार।
1: नमस्कार, 11 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। बजट 2026-2027 पर बहस की शुरुआत करते हुए कल श्रम मंत्री गिजाउद्दीन ने इसे एक साहसिक और जिम्मेदार बजट बताया। उन्होंने कहा कि पेंशन प्रणाली में सुधार जरूरी है और एआई तथा ब्लू इकोनॉमी के लिए घोषित कदम देश को भविष्य की ओर ले जाएंगे। राज्यसभा की बैठक कुछ ही देर में शुरू होने वाली है जहाँ बजट पर बहसें जारी रखी जाएंगी। तो कल श्रम मंत्री गिजाउद्दीन ने मैटरनिटी लीव को 1 वर्ष और पैटर्निटी लीव को 6 सप्ताह तक बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया। उनका कहना है कि महिलाओं के खिलाफ किसी भी भेदभाव को रोकने के लिए कानूनी प्रावधान मौजूद हैं। समाज सुरक्षा मंत्री अशोक सुबो ने कहा कि मींस टेस्टिंग को स्थगित करने के मामले में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम के फैसले को प्राथमिकता दी गई। उनके अनुसार जरूरत पड़ने पर अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जा सकता था। अनावा मोहिस के नेता पैट्रिक बेलको ने मींस टेस्ट को स्थगित करने के फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि ये नागरिकों की आवाज और लोकतांत्रिक बहस की अहमियत को दर्शाता है। बजट 2026-2027 में कलाकारों और सांस्कृतिक सेक्टर के लिए घोषित कदमों का आर्टिस्ट यूनियन ने स्वागत किया है। संगठन ने इन घोषणाओं को जल्द अमल में लाने की अपील की है। फुटबॉल विश्व कप का उत्साह पब्स और रेस्टोरों में देखने को मिल रहा है। बड़े स्क्रीन पर मैचों का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में इन दिनों प्रशंसक पहुंच रहे हैं। उधर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर ने लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। नए नेता के चयन तक वे प्रधानमंत्री के पद पर बने रहेंगे। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध समाप्ति के लिए स्विट्जरलैंड में हुई पहली वार्ता के बाद परमाणु निरीक्षण को लेकर मतभेद सामने आए हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने दावा किया है कि ईरान जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निरीक्षकों को फिर से देश में प्रवेश करने की अनुमति देगा, लेकिन तेहरान ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि उसने निरीक्षण के संबंध में कोई नई प्रतिबद्धता नहीं की है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए।
2: Your news on NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: घड़ी मिलाते चले, समय 11:03 होने जा रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए लेते हैं सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जारी की गई ये एक विज्ञप्ति। मौसलमो तेगासिन, मौसलमो लेडी बॉकले, सुयाक और NHDC तेगासिन के निवासियों को सूचित किया जाता है कि गुरु

0: रूप से जारी कर दिया जाएगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी हैं और ये विज्ञप्ति जारी की गई थी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा। आपने ध्यान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का कार्यक्रम आप सुन पाएंगे उर्दू भाषा में, पेशकश है सैयदा सुभाई की।
1: शम्मे फरोजा।

आऊज़ु बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और बड़ा रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मदद करना एक बहुत महंगा तोहफ़ा है, इसलिए सबसे उसकी तवक्का नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत कम लोग दिल के अमीर होते हैं। मौज़े सामीन, उम्मीद है आप फ़ज़ल खुदा खैर वाफियत से होंगे। इस वक्त आप समात फरमा रहे हैं हमारी उर्दू नशरियात शम फरोज़ा रेडियो मॉरिशस के ज़रिए सैयदा सुभाई के साथ। आज की इस उर्दू नशरियात में आप समात फरमाएंगे तिलावत कुरान पाक, खोजा अशिया का बयान, हम्द नातु सलाम और आपके पैगामात। ताखीर ना करते हुए आइए हज़्ब मामूल आगाज़ करते हैं कलाम इलाही से। आऊज़ु बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।

सदक़ल्लाहु अज़ीम। ऐ पाक परवरदिगार, हमें तिलावत क़ुरान पाक की तौफीक अता फरमा, आमीन। गरीबों को सताने से खुदा नाराज़ होता है, किसी का दिल दुखाने से खुदा नाराज़ होता है। भलाई कीजिए इन दुनिया में, महशर में भला होगा, मगर एहसान जताने से खुदा नाराज़ होता है। ये दुनिया है, अमल की जा, करो तुम नेकियां हरदम, यहाँ दिल को लगाने से खुदा नाराज़ होता है। अगर कुछ हो सके तो तुम मदद करते रहो उनकी, यतीमों को सताने से खुदा नाराज़ होता है, खुदा नाराज़ होता है।

का वो जिधर जिधर से गुजरेंगे, वो जिस जिस रास्ते से जा रहे होंगे, हमें उन्हीं के उसी रास्ते पे चलना होगा। अज़ीज़ाने गिरामी, अच्छा आपने देखा होगा हम हमारे यहाँ एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, पेश इमाम। क्या मतलब है पेश इमाम? यानी वो शख्स जो हमारे सामने है, उसके पीछे जब 2 रकात की नमाज़ पढ़ते हैं तो करते क्या हैं? वो रुकू में जाता है तो रुकू में जाते हैं, वो खड़े होता है तो खड़े होते हैं, वो छोटा सूरा पढ़ता है वो फ़ौरन रुकू में जाता है तो हम फ़ौरन रुकू में जाते हैं, वो बड़ा सूरा पढ़ते रह जाता है तो हम खड़े रहते हैं। मुझे आप ईमान से बताइए, उसके आगे चले जाएँ तो नमाज़ रहेगी, या वो आगे जा चुका है हम पीछे रह जाएँ तो नमाज़ रहेगी? का ना, तो फिर क्या करना होता है? फॉलो करना पड़ता है, वो जैसे जैसे करेगा हमको वैसे वैसे अंजाम देना होगा। वो आगे झुके तो हमें झुकना है, वो उठे तो हमें उठना है। अगर इसमें आगे चले जाएं तो नमाज नहीं, पीछे रह जाएं तो। अब समझ में आया, 2 रकात नमाज में जिसे 2 मिनट का पेश इमाम बनाया था, ये पूरी ज़िंदगी का नहीं है। आज मस्जिद में 2 रकात का पेश इमाम, 2 मिनट 3 मिनट का पेश इमाम, उसके आगे चले जाएं तो इबादत नहीं, उसके पीछे रह जाएं तो इबादत नहीं। और जिसे रिसालत वाब ने कहा ये हिदायत का चिराग है, तो अब समझ में आया हम इसे इन्हें क्यों इमाम मानते हैं। इसलिए मानते हैं कि जब हम 1-2 रकात वाले इमाम के आगे जाएं तो नमाज नहीं रहती है। इन्हें पूरी ज़िंदगी का इमाम बनाया है। ज़िंदगी को कामयाब रखना चाहते हो और आखरत के मंजिल तक पहुँचना चाहते हो, इन्हें सामने रहने दो, खुद पीछे रहो। ये जिधर जिधर जैसे जैसे गुजरें वैसे वैसे गुज़रते चले जाओ तो तुम्हें मंजिल मिल जाएगी। या मैं ये कहना चाहता हूँ, हकीकत में मंजिल उसे मिलती है जो फॉलो करता है। अज़ीज़ाने गिरामी, जिन्होंने इनकी इताअत और इत्तबा नजात का सबब है। इमाम का तारुफ कराते हुए एक जगह इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने नेशापुर में ये इरशाद फरमाया था, अल इमामु कश्शम्सि तालिअतिल मुजल्लते बेनूरहा लिल आलम। इमाम उस निकलने वाले सूरज के मानिंद है जो निकलता है तो आलम को मुनव्वर कर देता है। सूरज निकलने वाले, इमाम निकलने वाले सूरज के मानिंद है। इमाम इमाम जो कहते हैं उसके लिए क्या मिसाल दी, सूरज के मानिंद है, निकलता है तो आलम को मुनव्वर करता है। सूरज रोशनी देता है, वो ये नहीं देखता कि कौन खुदा का नाफरमान है, कौन खुदा का फरमाबरदार है, कौन अच्छे मज़हब का है, कौन ख़राब, कौन सच्चा कौन झूठा, कौन मेरी पूजा, कौन मुझे नहीं मानता, ना ना ना, कौन काला कौन गोरा ये भी नहीं देखता, कौन नवाब और कौन गरीब ये भी नहीं देखता। सूरज निकलता है मुनव्वर कर देता है। इमाम सूरज के मानिंद है, यानी इमाम निकल कर मज़हबों को नहीं देखता, रंग को नहीं देखता, गरीब अमीर को नहीं देखता। उसकी अताएँ, उसकी नवाजिश, उसकी मेहरबानी सब के लिए बराबर है। हुसैन ने करबला में जो दर्स दिया वो इसी बात का है। और आज उस हुसैन के चाहने वाले जब अरबईन में जाते हैं तो जाके देख लीजिए, उसमें हर मज़हब का फ़र्द जाते हुए ये बताता है कि हुसैन उस ज़ाते ग्रामी का नाम है जो किसी एक मज़हब के लिए मखसूस नहीं है, जो सारी कायनात के लिए आए थे, वो सारी कायनात के इमाम हैं। आज़ादारान सैयदुश्शुहदा, ये शबे, ये रोज़े आशूर और शब आशूर आप ये मजलिस सुन रहे हैं। खुदा नेक तौफीक दे और यकीनन आपके इन इबादात को खुदा की बारगाह में इंशाल्लाह कबूलियत है। इमाम हुसैन के ज़ाते गिरामी तारुफ की मोहताज नहीं है, दुनिया का हर फर्द जानता है कि हुसैन किस मज़लूम ज़ाते गिरामी का नाम है। आइए इमाम हुसैन की इस क़ुरबानी में बस इतना सुने कि अजीज़, सुबह का सूरज निकला था ग़ुरूब होने तक, आशूर के एक दिन लाशे पे लाशे इमाम ने उठाए। कभी उन्होंने मोहम्मद का लाशा उठाया, कभी कासिम का लाशा, कासिम का लाशा तो ऐसे पामाल हुआ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी रिदा को ज़मीन पे बिछाया, लाशों के टुकड़े उठा उठा के उसे रिदा में रखते जाते थे और कहते थे, भैया हसन आपके बेटे ने करबला को हयात अता की है। आज़ादारान सैयदुश्शुहदा, बड़ी क़ुरबानियाँ इमाम हुसैन ने पेश की, आखिर उस क़ुरबानी के लिए भी आप ज़रा अपना वक्त निकालें और मुतवज्जे हो के महसूस करें। हमारे यहाँ कैसी कैसी क़ुरबानी करबला की हैं, हमारे यहाँ भी रमज़ान गुजर

है रमज़ान मुबारक में सहर के वक़्त छोटे बच्चे उठ जाते हैं और जब 10-11 बजे होता है सहरी करके रोज़े में, तो बच्चे रोने लगते हैं, तो माँ बाप कहते हैं मौलाना ये बच्चा सहर में उठ गया था रोज़े की नियत। हम जवाब देते हैं छोटे बच्चों पे रोज़ा वाजिब नहीं है, खिला दीजिए पिला दीजिए। माएँ बच्चों का इतना चंद घंटे बर्दाश्त नहीं करती, मगर करबला की माएँ 3 दिन के भूखे प्यास हदीये के माओं का दूध खुश्क हो गया था, होठ खुश्क हो गए थे। आज़ादाना ने सैयद शहदा वह वक्त भी आया कि सारा भरा हुआ घर हुसैन का शहीद हो गया और कोई बचा नहीं, वह नन्हे मुजाहिद हैं और अब जनाब सज्जाद बिस्तर मर्ग पर हैं। वह वक्त भी आया कि इमाम ने कहा हल मिन नासिरिन यंसुरना, हे कोई जो मेरी मदद करे। यानी इमाम ने अतमा में हुज्जत किया, यानि अब इस मौके पे जिन्नात भी आए फरिश्ते भी। इमाम ने कहा तुमसे नहीं, अल्लाह की बारगाह में मुझे इम्तिहान देना है, मैं इन कलमा गोयों की तरफ ये सदा दे रहा हूँ, कोई ना आया। उधर जब आप खैमे में आए तो जनाब रबाब ने अली असगर को हाथ में लिए हुए थी, काका आपकी जब हल में नासरिन यंसुरना की सदा थी, असगर ने ख़ुद को झूले से गिरा दिया। अजीज़ान गिरामी तारीख़ ने लिखा कि जैसे ही कहा कि झूले से मैंने गिरा दिया है, आज़ादारा ने झूले से असगर ने ख़ुद को गिरा दिया है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने असगर को लिया और समझ गए कि असगर ने ख़ुद को गिरा के ये हल मिन नासिरिन यंसुरना में नुसरत की ये ऐलान किया है। हुसैन समझते हैं इस कैफियत को, अब लेके जाना चाहते हैं। माँ ने कहा नहीं आका, मैं बेटे को एक वसीयत करके भेज देना चाहती हूँ। हुसैन कहाँ ले जाना चाह रहे थे, ताकि ख़तरे आब असगर को मिल जाए, जब ये बच्चे को देखें तो शायद ज़ालिम रहम खा जाए। किसी ने रहम ना खाया, लेकिन खैर अलमख्तसर माँ ने बच्चे को गोद में लिया और वसीयत करना शुरू की। असगर अभी तू मैदान में जाएगा, तुझे तीर लगेगा, मेरे लाल तीर जब लगे तो रोना नहीं, मुस्कुरा के दीन की लाज माँ की लाज रख लेना। आज़ादारा ने सैयदुश्शोहदा फिर माँ ने कहा बेटा जब तू शहीद हो के दादी अम्मा से मिलेगा तो दादी अम्मा पूछेंगी कि क्या माँ ने तेरा चेहरा नहीं धुलाया, तो मेरे लाल दादी अम्मा से कह देना करबला में पानी नहीं था, अगर होता तो माँ मेरा चेहरा ज़रूर धुलाती। बस आज़ादारों वह वक्त भी आया, हुसैन मैदान में लेके आए। आज़ादारा ने सैयदुश्शोहदा इमाम हुसैन ने कहा अगर मैं तुम्हारे निगाह में बुरा हूँ खताकार हूँ, इस बच्चे ने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, ये खतरे आब दे दो, किसी जालिम ने ये खतरे आब ना दिया। उधर हुरमला ने तीर चलाना चाहा, जमीन पे गिर गया। शुम्र ने कहा हुरमला ये तू तो इतना बड़ा पहलवान, इस बच्चे के मुकाबले में तेरा तीर हाथ से छूट रहा है, अरे तू बच्चे को देख रहा है, मेरी निगाहें बच्चे के मुकाबले में सामने दर पे जा रही है, जब मैं खैमे की तरफ देखता हूँ पर्दा बार बार हटता है, मुझे ऐसे लगता है जैसे खैमे का पर्दा हटा हटा के माँ बच्चे को बेचैन देख रही है। लेकिन इधर जालिमों ने ऐलान किया अख्ता कलामुल हुसैन, अरे हुसैन के इस जवाब को रद्द करो जल्दी से। अब जब तीर चला अली असगर का गला छिदा और हुसैन के हाथों में असगर मुनकलिब हो गए। हुसैन ने चुल्लू में खून लिया, आसमान ने आवाज़ दी नहीं क़यामत तक दाना एक खतरा है आब नहीं बरसेगा, ज़मीन से आवाज़ आई क़यामत तक एक दाना नहीं उगेगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यह कहते हुए इनकार आसमां को है राजी ज़मीन नहीं, असगर तुम्हारे खून का ठिकाना कहीं नहीं, ये कहकर अपने चेहरे पे मल लिया। और उसके बाद वो वक्त भी आया लाशा लेकर खैमे की तरफ आए। आज हमारे यहाँ आशूर को एक आमाल होते हैं, उनमें अमल में एक साथ कदम आगे जाके पीछे आना है, पता है वो क्या है, वो कुछ और नहीं। हुसैन जब दरवाज़े पर आए और आने के बाद जब खैमे की तरफ जाना चाहा, आज़ादारा ने सैयदुश्शोहदा
जब आगे बढ़ रहे थे तो ख्याल आया अंदर जाने से पहले, अगर मैं अंदर जाऊं, माँ अगर इस बच्चे के इस गले पे देख ले तो तड़प जाएगी फिर वापस आए। फिर दिल ने कहा ना, अगर माँ अगर ऐसे चले जाऊं और माँ पूछे कि क्या आपने बच्चे को पानी नहीं पिलाया, असगर कहाँ है, तो फिर

मुस्तफ़ा का अप्यारा है, फ़ातिमा का शहज़ादा, करबला में आया है फ़ातिमा का शहज़ादा। ज़ालिमों के हाथों में कैसे हाथ दे देता, दीन का सितारा है फ़ातिमा का शहज़ादा। जिसने दीन की खातिर अपना सर कटा डाला, वो अली का बेटा है फ़ातिमा का शहज़ादा। चाहते तो करबल में पानी खुद चला आता, कितना सब्र वाला है फ़ातिमा का शहज़ादा। करबला की धरती पर नन्ही जान असगर को अपने साथ लाया है फ़ातिमा का शहज़ादा।

मौजूद सामीन, इसी के साथ थोड़ी ही देर में ये मजलिस इख्तिताम पजीर हो जाएगी। आप तमाम सामीन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: 毛里求斯广播电台听众朋友您好，欢迎收听毛里求斯广播电台6月23号的节目，我是您今天的节目主持人张大威。今天是歌曲节目，今天所播放的歌曲有月亮天亮了，听妈妈的话，美丽的神话，希望在这30分钟的节目中有您喜欢的歌曲。

听众朋友，今天的音乐节目就到这里，现在跟您告别，下次节目再会。

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: चलिए सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार और आदाब। स्टूडियो की घड़ी में 2:30 बज चुके हैं, तो श्रोता आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं जहां से भी आप हमें सुन रहे हैं। हमारा प्यार भरा नमस्कार और आदाब इस समय से लेकर शाम के 4 बजे तक आपके लाए हैं आपकी पसंद कार्यक्रम, आपका ये रोज़ाना प्रोग्राम आपके मनपसंद रेडियो चैनल पर। चलिए फ़ोन नंबर वही है 4028085, व्हाट्सएप नंबर है वो है 5251700525 तो चलिए अभी से आपके जो मैसेजेस जो है हमें प्राप्त हो रहे हैं, चलिए आपकी दिलचस्पी के लिए हम कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद। तो कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं और हमेशा की तरह एक प्यारा सा गीत मेरी तरफ से सभी सुनने वालों के लिए।

तो चलिए, बहुत ही प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम आँखियों के झरोखों से, इस फिल्म का ये टाइटल ट्रैक अभी आप सुन रहे थे। तो चलिए, गीतों का ये अच्छा सुहाना सफ़र आपके नाम हम चला रहे हैं। अगली भेंट में हमारे साथ इस समय अनीता जी है। अनीता जी है पिछली वैजय सैंपियर की रहने वाली। उनके सभी परिवारों के लिए, उनके पति है बालदेव जी, उनकी तीन बतियाओं के लिए काजल, शीतल, दीक्षा, उनके दामाद है वितीश, उनके सभी बच्चों के लिए। केश जी है कथोबोन की रहने वाली, उनकी दो बेटियां हैं नेहा, नितिशा है, और उनकी दामाद है एल्विन, उनके पति है आनंद जी, और उनके समस्त परिवारों के लिए। त्रिवेणी है गुडलैंड की रहने वाली, साथ में है उनके पति अनिल, सभी मोहन परिवार के लिए। अगला गीत पिछली वैजय सैपिया की रहने वाली राधा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनके सभी बच्चों के लिए ये अगला गीत। एक प्यारी सी गज़ल है और ये गज़ल आप भूपिंदर की जुबानी सुन पाएंगे।

चलिए श्रोताओ, आपकी पसंद कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस पे बुलंद है एक से बढ़कर गीत आप सभी सुनने वालों के लिए। तो चलिए गीतों का एक खूबसूरत सफ़र इसे हम जारी रख रहे हैं और हमारे साथ काफ़ी लोग जो है जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप मैसेजेस पे। और हमारे साथ इस समय सुदेवी जी है वाकवा की रहने वाली, हमेशा हमारे साथ जो है जुड़ी रहती है। तो अगला गीत जो है जाएगा उनके समस्त परिवारों के लिए और ख़ास करके ये गीत जो है जाने वाला है दीदी ललिता के लिए, त्रियोले की रहने वाली है, कुशल परिवार है, दीदी सुनीता है, शोभा, देविना, बिंदु, संगीता साथ में है, मलिंगा के अनुषा, किरण, केशनी, कृषय, प्रणीता, समस्त राम रतन परिवार है, राम गुलाम परिवार है और साथ में है कुआगो परिवार, रागुबा परिवार। और बहुत ही खूबसूरत सा गाना जो है इस कार्यक्रम में हम शामिल करने वाले हैं और ये गीत जो है जाने वाला है। इस समय हमारे साथ माँ गायत्री जी है नुवेल फ्रांस की रहने वाली, हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है। तो ये अगला गीत जाएगा उनके बेटे अजय के लिए, साथ में ये गीत जाने वाला है सुरेखा जी के लिए जो कि दीपिने की रहने वाली है, हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है। तो चलिए श्रोताओ, बहुत ही खूबसूरत सा गीत इस कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं। हम आपको इशारा कर दें कि ये कार्यक्रम जो है हम जारी रखने वाले हैं शाम के 4 बजे से पहर के 3 बजने वाले आप समाचार सुन सकेंगे, समाचारों के उस पार आपकी पसंद कार्यक्रम को हम जारी रखने वाले हैं। तो चलिए श्रोताओ, हम गाने की ओर बढ़ेंगे।

तो चलिए श्रोता वो अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे। हमारे साथ इस समय, जी हाँ, हमारे साथ इस समय जो है गीता जी है पोफिया की रहने वाली, और साथ में है उनके सभी बच्चों के लिए अगला गीत आदित्य अरव जानवी है, साथ में है उनकी बहन मिला न्यूकोव की रहने वाली और उनके पति है रोहित जी। तो चलिए अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे, और हमारे साथ हमेशा की तरह गीता जी जुड़ी हुई हैं, तो ये अगला गीत उनके नाम भी करेंगे।

चलिए श्रोताओं, अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे और ये प्यारा सा गीत फिल्म बैजू बावरा से लिया गया। ये गीत समस्त पेंटाया परिवार के लिए, साथ में है सेलू जी इकवायो की रहने वाली है। तो चलिए इस गीत के साथ ही हम बढ़ेंगे सपहर के 3 बजे के समाचारों की ओर।

0: सुमेरा अकबर अली, आपको नमस्कार और आदाब।
1: नमस्कार आदाब। लंच ब्रेक के बाद राष्ट्रसभा में रोड्रिग्स की सांसद मनन ने राष्ट्रीय बजट पर अपनी राय पेश की। उन्होंने कहा कि रोड्रिग्स के लिए 11.2 बिलियन रुपए का बजट निर्धारित करने के अलावा ये बजट कई पहलुओं के मद्देनजर हिम्मत वाला है। श्रीमती मनन ने मैटरनिटी लीव को एक साल तक बढ़ाने के प्रावधान पर खुशी जताई। टैक्स के संदर्भ में उन्होंने कहा कि मुस्लिम परिवारों पर टैक्स का बोझ है, इसके बावजूद राष्ट्रीय अर्थनीति और खरीद ताकत में संतुलन लाया गया है। साइबर जुर्मों में बढ़ोतरी हो रही है। एक साल में 866 महिलाओं के साथ ऑनलाइन हरासमेंट हुआ है, जबकि 548 पुरुष शिकार है। यह मसला ज्यादातर नौजवानों को मुवस्सिर कर रहा है। 14 से 15 साल के शिकार नाबालिगों के साथ धोखाधड़ी के करीब 5000 मामले दर्ज हुए हैं। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने नौजवानों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया। विषय रहा इलेक्ट्रॉनिक धोखाधड़ी के खिलाफ डिजिटल मजबूती। अमेरिका और ईरान के बीच एक अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए 60 दिनों का रोड मैप तैयार करने पर मंजूरी जताई गई है। अमेरिका ने ईरान पर तेल निर्यात से जुड़े प्रतिबंधों को 60 दिनों के लिए हटा दिया, जिससे ईरान अब अपनी तेल और पेट्रोकेमिकल उपज का निर्यात कर सकेगा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेरी वेंस ने दावा किया कि ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के निरीक्षकों को देश में वापस आने की अनुमति देने पर सहमति व्यक्त की है। फ्रांस, स्पेन और पश्चिमी तथा मध्य यूरोप के अन्य देशों में भीषण गर्मी की चेतावनी जारी है। आने वाले दिनों में गर्मी की स्थिति और अधिक गंभीर होने का अनुमान है, जिससे तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने की संभावना है। यूरोप में चल रही भीषण गर्मी की वजह से फ्रांस में स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। कम से कम 18 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। तो अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार और आदाब।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
3: kilohertz, ये है रेडियो मॉरिशस, रेडियो मॉरिशस।
4: चलिए श्रोताओ, सपहर के 3:03 हुए हैं। इस स्टूडियो की घड़ी में आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से चंद विज्ञप्तियां सुनिए। जरूरी मरम्मत कार्यों की वजह से कई इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। सबसे पहले रोथ्रॉयल, रुडालिया और जुमेन प्लेन दे रोश के रहने वाले निवासियों को बुधवार 24 जून 2026 को सुबह 9 बजे से लेकर दिन के 1 बजे तक। फिर है फतेह साहब के रहने वाले निवासों को, जिनमें है सोहन लेन और कुचिया के कुछ भागों के रहने वाले निवासों को सूचित किया जाता है कि बुधवार 24 जून 2026 को सुबह 9 बजे से लेकर सपहर के 3:30 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से चंद विज्ञप्तियाँ सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस है। तो चलिए, आपकी पसंद कार्यक्रम को हम जारी रखने वाले हैं इसी चैनल पर। फ़ोन नंबर आपको पता है 4028085। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वो है 5251700 5। तो चलिए, आपकी पसंद कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं।
5: आपकी पसंद।

तो चलिए श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ इस समय जो है चित्रा जी है, मोरारबिया की रहने वाली, हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है। तो चलिए अगले गाने जो है उनके नाम हम करेंगे। साथ में है आशा जानू कुटेस की रहने वाली, और विजय बंधन जी आप क्लावत के रहने वाले। तो इन सभी श्रोताओं की मांग पे ये अगला गीत हम चला रहे हैं।

चलिए अगले गाने की ओर हम बढ़ रहे हैं और हमारे साथ लीला जी है बौशेखी की रहने वाली, उनका ये मनपसंद गीत फिल्म संबंध से है और ये गीत जाएगा ऋषि के लिए, विक्की, करण, सभी लोचन परिवार है और काशी परिवार है।

चलिए, बहुत ही प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे। सपहर के 3:19 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। श्रोताओं, अगले गाने की ओर। सीता देवी जी हैं और आप कारोलिन से हैं, और अगला गाना जो है आपके भाई के नाम, आपका भाई है रमेश रामजीतन, जो कि पेरेबिया के रहने वाले हैं। उनके जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं समस्त परिवारों की तरफ से, खास करके सभी भाई और बहनों की तरफ से, सभी भाइयों की तरफ से भी। सचिदानंद है, साथ में है आशा देवी और उमा देवी। तो चलिए, आपके भाई जो है उनके नाम जो है ये अगला गीत, खास करके सीता देवी जी की तरफ से उनकी मांग पे। तो ढेर सारी शुभकामनाएं म्यूजिक की पूरी टीम की तरफ से, उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। वो जहां भी रहे खुश रहे, तंदुरुस्त रहे। तो गाने की ओर हम बढ़ेंगे आशा भोंसले की आवाज़ में। ये प्यारा सा गीत आप सुन सकेंगे।

चलिए श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं मन चाहे गीतों का ये प्रोग्राम आपकी पसंद रेडियो मॉरिशस पे मीडियम वेव 119 किलोहर्ट्ज़ पे हमारा प्रसारण हो रहा है। चलिए कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस की ओर भी हम बढ़ेंगे। विद्या जी हैं यूनियन पार्क से। अगला गीत जो है उनके सभी परिवारों के लिए, फिल्म का नाम है निका और ये गीत जाएगा उनकी चाची कुमारी के लिए, उनकी बहन है सती, साथ में सुरेखा, वेदना, प्रीति, विमला और उनके सभी दोस्तों के लिए। ये गीत जाने वाला है बेलगौज़ की सिमला जी के लिए जो हमारे साथ जुड़ी हुई है।

चलिए श्रोताओं, सपहर के 3:33 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में और हम चला रहे हैं आपकी पसंद कार्यक्रम। ये कार्यक्रम शाम के 4 बजे तक हम चलाने वाले हैं। तो एक से बढ़कर एक गीत आप सभी सुनने वालों के नाम हम कर रहे हैं। तो चलिए हम अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे और हमारे साथ काफ़ी लोग जो है जुड़े हुए हैं हमारे साथ इस समय। आप हैं बसंती जी। बसंती जो है बुबासा की रहने वाली है, हमेशा हमारे प्रोग्राम में भाग लेती रहती है। तो चलिए ये अगला गीत उनके नाम हम करेंगे, उनके सभी परिवारों के लिए। और काफ़ी लोग जो है हमारे साथ, अनिता जी है त्रियोले की रहने वाली, हमारे साथ जुड़ी हुई है, केशवंती जी है। तो इन सभी लोगों के नाम जो है ये अगला गीत जो है बहुत ही खूबसूरत सा गीत है। फिल्म का नाम है दिल एक मंदिर और इस फिल्म से लिया गया ये सदाबहार गीत आप सभी सुनने वालों के लिए।

तो चलिए श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपकी पसंद कार्यक्रम की अगली भेंट में हम चलाने वाले हैं ये प्यारा सा गीत जो है हमारे साथ माला जरी जो है जुड़ी हुई है। पर जो गाना आप मांग कर रही है माला जी हमारे पास नहीं है, तो इसके बदले में ये अगला गीत जो है आप ज़रूर पसंद करने वाले हैं। तो ये गीत जाने वाला है आपके पति ईश्वर के लिए, आपका बेटा है दीपक, बेटी है रीमा और आपके सभी परिवारों के लिए। ये बहुत ही प्यारा सा गीत हम चला रहे हैं। साथ है हमारे साथ बिलगोज की रहने वाली सिमला जी, उनके नाम भी ये गीत हम जोड़ रहे हैं। तो चलिए गाने की ओर हम बढ़ेंगे।

0: जाने।
1: तो आशा करती हूँ कि माला जी आपको ये गाना बहुत ही पसंद आया होगा। तो चलिए आपकी पसंद कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं। मेरी दोस्ती फिल्म से लिया गया गीत है जाएगा दिलीप जी के लिए, जो कि कुंगोमा के रहने वाले हैं आप। ये गीत संगीता कृष्णवी, योगेश, कविता, संगीता, मनीषा, ईशान, दानंद, इन सभी लोगों के लिए हम चला रहे हैं।

चलिए श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम की अंतिम भेंट में ये प्यारा सा गीत जाने वाला है हमारे साथ इस समय। बेलगौस की सिमरा जी है उनके नाम, साथ में है सरिता जी है गुडलैंड्स की रहने वाली, रुबीना हमारे साथ जुड़ी हुई है, त्रियोली की समस्त बंधु परिवार है, सरिता जी है कथोबोन की रहने वाली, और ये गीत जाने वाला है हमारे साथ देखल की रहने वाली साधना जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो इन सभी लोगों के नाम जो है ये प्यारा सा गीत, उनके बेटे नितिश है, साथ में है बहू काविना, साथ नाती है कियान, तस्वीक मौलाबिया की अनुषा है, साथ में है उनकी बेटी, दामाद है सतीश है, नाती गौरव, नातिन है जिया, तेजल राहुजा की रहने वाली, कुशल है और समहिता है, साथ में है दुबई से बेटी मंशा, जीवन परिवार है, पुआऊ परिवार है, एंड समस्त परिवारों के लिए ये बहुत

बहुत ही प्यारा सा गीत है। ये गीत है साधना जी की फरमाइश पे रिवेरा क्रियोल की रहने वाली। तो श्रोताओं, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी सुनने वालों के नाम ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत। अंतिम नाम जो है हम जोड़ेंगे, हमारे साथ विश्वानी दुमन जी है वाकवा की रहने वाली। ये गीत जाएगा उनकी सभी बहनों के लिए, इंदिरा शारदा, साथ में उनकी सहेलियाँ हैं नीला, प्रतिभा, शोभा, साथ में है गीता गजाधर। तो इन सभी लोगों के नाम जो है ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत हम चला रहे हैं। तो मन चाहे गीतों का ये प्रोग्राम आपकी पसंद यहीं पे समाप्त हुआ। कुछ ही घड़ी में शाम के 4 बजने वाले हैं और आप तमिल भाषा में कार्यक्रम कलाईवाणी के साथ सुन पाएंगे। हमारी ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।

5:10 हुए हैं श्रोताओ, आप सबका स्वागत है रेडियो मॉरिशस के लहरों पर, जहां आप सुन रहे हैं भोले बिसरे गीत कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में साथ देने के लिए मैं उषा कौर यहां पर। चलिए, चंद खूबसूरत गाने आप लोगों ने सुना, यादों से भरे हुए इन गानों को हम चला रहे हैं खासकर आप लोगों के नाम। और ये कार्यक्रम चलेगा 6 बजे तक। आपने सुना श्रीमती 420 फिल्म का ये खूबसूरत गाना, मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा जी का पहला गाना आपने सुना अभी। और शोला जुबर के, जी हाँ, अलबेला फिल्म से लिया गया लता जी की प्यारी आवाज़ में। तो हम बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी फिल्म है वंदना। आपने फिल्म को देखी होगी और लता जी की प्यारी आवाज़ में।

उधर तुम हंसी हो इधर दिल जवां है, ये रंगीन रातों की एक दास्तां है। उधर तुम हंसी हो

5:23 हुए हैं दोस्तों और आप सुन रहे हैं ये बहुत ही प्यारा प्रोग्राम भोले बिस्तरे गीत प्रोग्राम। जी हाँ श्रोताओं, भीगी हवाओं में सिर्फ एक गाना नहीं है, ये बारिश, ठंडी हवा और पुरानी यादों का एहसास है। इस गाने को सुनते ही दिल शांत हो जाता है, जैसे भीगी हवा छुपके से दिल को छू कर गुजर रही है। पुराने गाने इसीलिए खास होते हैं क्योंकि हमें आवाज़ से ज़्यादा जज्बात होते हैं। तो चलिए अगला गाना सुनते हैं, श्रीमान सत्यवादी फिल्म से लिया गया, मन्ना डे साहब और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में।

5:32 हो गए हैं श्रोताओं, अगला गाना हम सुनेंगे जहाँ प्यार मिले फिल्म से लिया गया है। जी हाँ, एक रोमांटिक और इमोशनल फिल्म थी जो 1970 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे शशि कपूर, हेमा मालिनी, हेलेन और नदीरा। फिल्म के डायरेक्टर थे लेक टंडन और संगीत दिया था मशहूर जोरी शंकर जयकिशन जी ने। इस फिल्म के गीत बहुत मधुर और दिल को छू लेने वाले थे, जैसे चले जा, जहाँ प्यार मिले, बात ज़रा ऐ आपस की, ऐ जाने बाहर, चले जा जहाँ प्यार मिले। गाना खासकर बहुत पसंद किया गया।

जिसमें जिंदगी को एक सफ़र और प्यार की तलाश के रूप में दिखाया गया था। और ये फिल्म आज भी पुराने संगीत और क्लासिक सिनेमा के चाहने वालों के लिए बहुत ही खूबसूरत और यादगार बनी है।

5:54 हुए हैं श्रोताओं। पुराने गानों का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता, ये हर दौर में दिलों को सुकून देता रहेगा। ज़माना बदलता रहेगा पर पुराने गीतों की मिठास हमेशा जिंदा रहेगी। इसी गीत के साथ दोस्तों ये आज का ये प्रोग्राम यही समाप्त हो चला। आपने साथ दिया बहुत धन्यवाद। ओशा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभरात्रि।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: नमस्कार आदाब, शाम के 6 बजे हैं।

0: पेश है समाचार बुलेटिन। आप सभी का खैर मकदम। सबसे पहले आज की बड़ी खबरें। आज राष्ट्रसभा में वित्तीय साल 2024-2025 के लिए 2.2 बिलियन रुपए के अतिरिक्त बजट पर मंजूरी जताई गई। इस विधेयक को पेश करते हुए प्रधान एवं वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि बजट 2024-2025 पुरानी वित्त मंत्री की तरफ से गैर जिम्मेदारी की एक बड़ी मिसाल है। राष्ट्रीय बजट में ऐलान किए गए जिन कदमों ने मुर्शिदों की तवज्जो आकर्षित की, उनमें माओं को प्रदान खास छुट्टियां और लड़कियों को प्रदान मेंस लीव शामिल। यूरोप में भीषण गर्मी, 15 से ज्यादा लोगों की मौत। और कोंगो में इबोला के संक्रमित मामले 1000 के पार। नमस्कार और आदाब। राष्ट्रसभा में वित्तीय साल 2024-2025 के लिए 2.2 बिलियन रुपए के अतिरिक्त बजट पर मंजूरी जताई गई है। इस विधेयक को पेश करते हुए प्रधान एवं वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि बजट 2024-2025 पुराने वित्त मंत्री की तरफ से गैर जिम्मेदारी की एक बड़ी मिसाल है। उन्होंने साफ कहा कि सरकार अर्थनीति को मजबूत बुनियादों की राह पर दोबारा गामजन करने के लिए कटिबद्ध है। मिगन पुन्ना पनायकन, करुणा लालू।
1: सप्लीमेंटरी अप्रोप्रिएशन बिल 2024-2025 में 7 सार्वजनिक विभागों और मंत्रालयों के व्यय के लिए 2.264 बिलियन रुपये का प्रावधान है। इनमें खासकर प्रिजन सर्विस, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर दफ्तर, आवास, उच्च शिक्षा मंत्रालय, प्रांतीय प्रशासन, दमकल विभाग और पार्लियामेंटरी काउंसिल दफ्तर शामिल हैं। प्रधानमंत्री के अनुसार पूर्व वित्त मंत्री द्वारा खर्चों का गलत अनुमान लगाया गया। डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने कहा,
2: 2024-2025
1: वित्त वर्ष 2024-2025 का बजट पूर्व वित्त मंत्री की फिस्कल गैर जिम्मेदारी का एक और स्पष्ट उदाहरण है। आय के अनुमान अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर पेश किए गए, जबकि व्यय की आवश्यकता को काफी कम आंका गया। ऐसा प्रतीत होता है कि बजट घाटे को कम दिखाने और सार्वजनिक कर्ज को GDP अनुपात यानी रेशो को घटता हुआ प्रदर्शित करने के उद्देश्य से किया गया। सरकारी नेता ने कहा कि सार्वजनिक स्थिति में सुधार के वास्ते साहसिक फैसले लिए गए। हमने अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटने का रास्ता नहीं लिया। सरकार अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक वित्त को मजबूत आधार पर

0: स्थापित करने तथा सतत और समावेशी आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। बहसों के दौरान विपक्षी व्हिप आरजी अजवाल ने उच्च शिक्षा मंत्रालय के लिए निर्धारित अतिरिक्त 1.3 बिलियन रुपए के बजट पर रुचि दिखाई और सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में बोर्ड के गठन में विलंब का उल्लेख किया।
1: Les conseils d'administration n'ont été constitués que cette année-ci. Quel est le résultat final? Madame la Présidente, l'Université de Maurice a régressé de la 2457e place mondiale, est arrivée aujourd'hui à 2484. Elle a perdu 27 places.
0: उच्च शिक्षा मंत्री ने स्पीकर द्वारा खास रूप से अनुमति प्राप्त करने के बाद उन्हें जवाब दिया। कविराज सुको ने हाई एजुकेशन एक्ट में लाए गए सुधारों का उल्लेख किया।
2: The ranking is their doing. They did nothing for this sector. That's why we are in this position today. When we came, we changed the High Education Act immediately. I tell you now, go and check the QS ranking. University of Mauritius is ranked in the top 150 in the world in tourism and hospitality.
0: प्रधानमंत्री ने बहसों के समाहार के दौरान भी विपक्षी व्हिप को जवाब दिया। इस बिल को सुधार के साथ पारित किया गया।
3: और राष्ट्रीय सभा में राष्ट्रीय बजट 2025-2026 के संदर्भ में अप्रोप्रिएशन बिल 2026-2027 पर बहसें जारी हैं। शिक्षा मंत्री महेंद्र गंगा प्रसाद ने कहा कि समाज में जुर्मों, ध्वनि प्रदूषण और दूसरे प्रकार के अपराधों का हल तालीम है। परवरिश की बुनियाद अच्छी शिक्षा पर निर्भर है। बुलिंग के सिलसिले में बजट में ऐलान कदम पर बात करते हुए मंत्री महेंद्र गंगा प्रसाद ने चेतना अभियानों की अहमियत पर जोर दिया। शिक्षा मंत्री ने शिक्षा क्षेत्र के लिए ऐलान कदमों की सराहना भी की है। और लंच ब्रेक के बाद रोड्रिग्स की सांसद माना ने राष्ट्रीय बजट पर अपनी राय पेश की। उन्होंने कहा कि रोड्रिग्स के लिए 11.2 बिलियन रुपए का बजट निर्धारित करने के अलावा ये बजट कई पहलुओं के मद्देनजर हिम्मत वाला है। श्रीमती मनन मैटरनिटी लीव को एक साल तक बढ़ाने के प्रावधान पर उन्होंने खुशी जताई। और टैक्स के संदर्भ में उन्होंने कहा कि मुस्लिम परिवारों पर टैक्स का बोझ है, इसके बावजूद राष्ट्रीय अर्थनीति और खरीद ताकत में संतुलन लाया गया है। इसके अलावा आज ही जोना बेगौजे, रुबना दोगियाओ, रिशो जुवाल और सांसद रविराज बिचुक के भी भाषण रहे। राष्ट्रीय बजट में ऐलान किए गए जिन कदमों ने मोशनों की तवज्जो आकर्षित की उनमें माओं को प्रदान खास छुट्टियां और लड़कियों को प्राप्त छुट्टियां भी शामिल हैं। मैटरनिटी लीव को 12 महीनों तक बढ़ाया जाना और मेंस लीव शामिल किया जाना। हर महीने जिन लड़कियों और महिलाओं को मेंस के दौरान दर्द होता है उनको एक दिन की छुट्टी दी जाएगी। अंजुराम गुलाम, विधि मासीबुरन।
4: रिमोट में नई बैटरी डाल दी गई है, एंटीना और कान खड़े हो गए हैं, बजट भाषण शुरू हो गया है, चर्चा हो रही है, नोट्स लिए जा रहे हैं। दिलशा और प्रिशिला दो बहनें हैं, एक प्राइवेट सेक्टर में काम करती हैं और दूसरी सरकारी क्षेत्र में। दिलशा निर्माण सेक्टर में काम करती हैं और संस्कृति से संबंधित उपायों में भी उसकी रुचि है। विरासत स्थलों में निवेश पर चर्चा की गई, साथ ही नेशनल हेरिटेज ट्रस्ट फंड पर फिर से गौर करने की बात की गई, जो महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारी राष्ट्रीय पहचान है। दूसरी बात हाउसिंग थी।
5: Peut-être le gouvernement qui peut bien revoir plan social housing qui précisément plus à pour bonne femme déjà peut-être à mon maman célibataire.
4: घोषणाएं आ रही हैं, उपाय एक एक करके सामने रखे जा रहे हैं। प्रिशिला उस चीज का इंतजार कर रही हैं जिसके लिए वो एक दशक से संघर्ष कर रही थी, मासिक धर्म अवकाश यानी मेंस्ट्रुअल लीव। बजट भाषण के दौरान इसकी घोषणा नहीं की जाएगी, लेकिन ये कदम परिशिष्ट में शामिल होगा। उसने जो लड़ाई लड़ी थी वो अब हकीकत बन गई है। एक सकारात्मक बिंदु मेंस्ट्रुअल लीव है जिसे मंजूरी दी गई है। 10 सालों से इसके लिए हम संघर्ष कर रहे थे। हमने जेंडर इक्वालिटी पर भी जोर दिया, यानी 12 महीने का मैटरनिटी लीव, जबकि पैटर्निटी लीव 4 सप्ताह से 6 सप्ताह तक बढ़ाई जा रही है। सांसद जोआना बेगौजे का भी मानना है कि पेरेंटल लीव पर भी चर्चा होनी चाहिए थी।
6: Les un an congé maternité.

0: पेरेंटल लीव गायब हो गया है, ये एक साल का मैटरनिटी लीव हो गया है। मैं पेरेंटल लीव के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ क्योंकि ये एक गेम चेंजर होगा।
1: Dans l'accessibilité à l'emploi.

0: plus de mesures quand même, il y en a beaucoup de personnes.
1: बहुत से लोग कठिन स्थितियों में जी रहे हैं, इन लोगों की मदद के लिए अन्य विकल्प होने चाहिए थे। दिलशा, प्रिशिला और मोशस के लोग अब ये देखने के लिए उत्सुक हैं कि ये उपाय व्यावहारिक रूप से उनके दैनिक जीवन में कैसे लागू होंगे।
2: साइबर जुर्मों में बढ़ोतरी हो रही है। एक साल में 866 महिलाओं के साथ ऑनलाइन हरासमेंट हुआ है, जबकि 548 पुरुष शिकार हैं। ये मसला ज्यादातर नौजवानों को मवस्सिर कर रहा है। 14 से 15 साल के शिकार नाबालिगों के साथ धोखाधड़ी के करीब 5,000 मामले दर्ज हुए हैं। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने नौजवानों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया। विषय रहा इलेक्ट्रॉनिक धोखाधड़ी के खिलाफ डिजिटल मजबूती। कुणाल गोजी, करुणा लालू।
3: 1 मिलियन से अधिक इंटरनेट यूजर और 21.6 मिलियन मोबाइल ग्राहकों के साथ इंटरनेट की दुनिया में चुनौतियां और खतरे भी अनेक हैं। फर्जी प्रोफाइल, अश्लील तस्वीरों की अवैध बिक्री तथा टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म जो स्थानीय न्यायिक नियंत्रण के बाहर हैं, सभी अवैध ऑनलाइन गतिविधियों से केवल लगभग 1/3 मामलों का ही कारिक रूप से रिकॉर्ड रखा जाता है।
4: We are investigating into 57 cases related to cybercrime, electronic fraud and other related offenses.
3: Computer Emergency Response Team के अनुसार वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 30 साइबर दुरुपयोग के मामले दर्ज किए जा रहे हैं, जबकि 2008 में ये संख्या माहवार केवल 5 थी। एक और चिंताजनक प्रवृत्ति, कम सीन उम्र, लगभग 100 पीड़ितों की आयु 13 वर्ष से कम पाई गई।
5: Dans le AI grooming, évidemment, copie dangereuse. Le criminel, il vient juste créer une virtual representation. Il n'a pas besoin même créer un faux profil, tu vois. Il commence à target sur une victime. Mais c'est pas le nom, c'est la manière qu'ils ont de connecter, c'est la façon qu'ils ont de chercher des informations, c'est la façon qu'ils ont de behave themselves on the social media.
6: Un youtubeur, je target un jeune, je sais pas un crypto scam avec un jeune ou même ban, je sais pas un dive, oui.
7: Donc quand je guettais visuellement les facebook.com, mais quand les PA redirigeaient vers le lien, c'est pas facebook.com, c'est un site identique qui facebook.com.
3: साल की शुरुआत से अब तक 23 वित्तीय म्यूल्स अर्थात ऐसे लोग जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अवैध धन के हस्तांतरण में शामिल होते हैं, FCC की जांच के दायरे में हैं। ये नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक फैला हुआ है और इसमें केन्या तथा दक्षिण अफ्रीका के नागरिक भी शामिल हैं। अधिक प्रभावी नियंत्रण के लिए पुलिस ने 2021 के साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर क्राइम एक्ट में सुधार लाने का प्रस्ताव रखा है।
2: PMSD के नेता जावियर लुक जुवाल ने आज पोर्टवी में एक प्रेस सम्मेलन बुलाया। उन्होंने हालिया बजट भाषण पर टिप्पणी करते हुए कुछ खामियों और कन्फ्यूजन का उल्लेख किया। उन्होंने पेंशन प्रणाली में सुधार लाने के लिए माहिरों के आयोग की सिफारिशों का खंडन किया। इसके अलावा जावियर लुक जुवाल ने सरकार में अनुशासन और समग्र जिम्मेदारी की कमी पर भी बात की। PMSD के नेता ने समाज सुरक्षा मंत्री के प्रेस सम्मेलन को भी दाद दी। क्रिस्टल लुभास, रजनी बेकर।
8: PMSD के सदस्यों ने राष्ट्रीय बजट के प्रमुख कदमों पर बात की। PMSD के नेता ने खासकर पेंशन सुधार से संबंधित फैसलों की आलोचना की, जैसे मींस टेस्टिंग शुरू किए जाने की बात को लेकर।
9: Environ 4 milliards roupies en poste par pensionnaire. Si réforme là, tirez comment c'était annoncé vendredi, d'ici environ 10 milliards roupies. Nous, PMSD, nous payons engage nous l'eau un retour au système de pension avant l'élection 2024.
8: दूसरी तरफ जावेद इकबाल ने मैटरनिटी लीव को 12 महीने के लिए बढ़ाए जाने के कदम का अच्छा स्वागत किया। फिर भी उनका मानना है कि सरकार को इस कदम से जुड़े वेतन अंतर की जिम्मेदारी लेनी होगी। इसके अलावा अन्य मुद्दों पर भी बात की गई, जैसे कि देश में लॉ

0: एंड ऑर्डर की स्थिति। शावेलिक जीवा ने इस बात पर खेद जताया कि पुलिस फोर्स के उपकरणों की मजबूती के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है। अन्य मुद्दे पर भी टिप्पणी की गई, खरीद शक्ति में गिरावट और सार्वजनिक कर्ज।
1: वित्तीय साल 2026-2027 की पेशकश के चंद दिन बाद कॉन्फेडरेशन दे ट्रावायर दे सेक्टर पब्लिक और सेक्टर प्राइवेट सीटीएसपी आज प्रेस से मुखातिब हुआ। श्रमिक संघ ने मुख्तलिफ कदमों पर बात की जिनका असर मुर्शन परिवारों पर पड़ेगा। मुर्शस में बांग्लादेशी कामगारों के संदर्भ में हिंदू कॉमन प्लेटफॉर्म अधिकारियों के साथ बातचीत करना चाहता है। प्लेटफॉर्म के मुताबिक बांग्लादेशी कामगारों की भर्ती करने से देश में समस्या पैदा होगी। इस प्रेस सम्मेलन के दौरान कई हिंदू संगठन एकत्र हुए थे। कुणाल गोजी की रिपोर्ट पर ये विवरण।
0: सरकार द्वारा बांग्लादेशी श्रमिकों की भर्ती की अनुमति देने के हालिया फैसले को लेकर हिंदू कमन प्लेटफॉर्म ने अपनी आपत्ति और चिंताओं को सामने रखा है।
2: Qui dans la nature ou pas capable faire dit ou dit qu'on trouve même pays sur Bandimoun pas encore trouvé, pas encore ramassé, pas encore déposé. Aujourd'hui, du pays du monde du gouvernement, comment Band Bangladesh capable rentre de Maurice voter et que je capable débalance une élection dans une circonscription. Quand pas trouve Band Mauricien dans une place, ça veut dire je prends droit à voter. Mais Bangladesh, même les connaît dans d'autres, les pas là, ça va pas voter.
0: इस प्लेटफॉर्म के अनुसार बांग्लादेशी श्रमिकों की भर्ती की प्रक्रिया और प्रणाली की समीक्षा की जानी चाहिए।
3: Aujourd'hui, nous tenons une réunion avec l'objectif de ce regroupement là. Après le premier meeting qui nous fait à Goldcrest de 16 juin, nous tenons une réunion ensemble pour dire que nous pas d'accord avec les travailleurs de Bangladesh.
4: Est-ce que l'autorité avant ni pense pour amène 10,000 Bangladeshi, est-ce qu'il y a un conduct and background check? Tout ça, ces affaires-là, il est aussi important l'autorité puisse être considérée.
5: Ici, dans sa commune plateforme qui fin organisée, nous pas compte personne, mais il y a une circonstance qui nous peut guetter autour du monde, qui peut arriver, et surtout Bangladesh, qui peut faire. Donc, si un groupe peut venir ici, et comment votre comportement ici, qui vous fait ici, et comment vous faites une conspiracy pour rester la même, à cause de ça, qui Human Services n'est pas d'accord qui Bangladeshi pour venir dans Maurice.
6: Nous silence, c'est pas une faiblesse. Nous silence, c'est pas une approbation. Nous silence, pas ça veut dire qu'il nous peut dire oui. Nous silence. C'est un qui peut montrer nous peut coopérer avec la décision qui nous pas acceptée par Men Man Bangladesh ici à Maurice.
0: Plateforme का उद्देश्य है इस मुद्दे पर संबंधित प्राधिकरणों के साथ संवाद स्थापित किया जाए, साथ ही उन्होंने पुलिस से भी आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है।
1: विदेश में कल लखनऊ भारत की एक इमारत में आग लगने से कम से कम 15 लोगों की मौत हुई। इस घटना के चलते एक जांच शुरू की गई है। इमारत में पेट शॉप भी थी। चश्मदीद गवाहों के मुताबिक आग से बचने के लिए लोगों को इमारत से कूदते हुए देखा गया। वाशिंगटन में लेबनान और इसराइल के दरमियान नए सिरे से बातचीत शुरू। बेरूत ने सीधे तौर पर बातचीत करने का फैसला लिया, बावजूद ये कि ईरान और अमेरिका के बीच जंगबंदी की शर्तों में लेबनान को शामिल किया गया था। फ्रांस, स्पेन और पश्चिम तथा मध्य यूरोप में दूसरे मुल्कों की तरह तेज गर्मी की चेतावनी है। आने वाले दिनों में गर्मी की हालत ज्यादा गंभीर होने का अनुमान है। कम से कम 18 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। विधि मासिबुरन।
7: ईरानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कालिबाफ के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने 18 घंटे की वार्ता के बाद सोमवार को वार्ता स्थल छोड़ा। बैठकों में अमेरिका, पाकिस्तान और कतर के मध्यस्थ शामिल रहे। ईरान ने इस्लामाबाद समझौते के क्रियान्वयन और अंतिम समझौते की शर्तों पर अपना रुख स्पष्ट किया। वार्ता में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में सुरक्षित व्यापारिक आवाजाही और लेबनान संघर्ष को कम करने के लिए एक डीकॉन्फ्लिक्शन सेल बनाने पर सहमति बनी। अमरीका ने ईरान पर तेल निर्यात से

0: रे प्रतिबंधों को 60 दिनों के लिए हटा दिया है, जिससे ईरान अब अपनी तेल और पेट्रोकेमिकल उपज का निर्यात कर सकेगा। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने दावा किया कि ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निरीक्षकों को देश में वापस आने की अनुमति देने पर सहमति व्यक्त की है। फ्रांस, स्पेन और पश्चिमी तथा मध्य यूरोप के अन्य देशों में भीषण गर्मी की चेतावनी जारी किए गए हैं। आने वाले दिनों में गर्मी की स्थिति और अधिक गंभीर होने का अनुमान है, जिसमें तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने की संभावना है। यूरोप में चल रही भीषण गर्मी के कारण फ्रांस में स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। इस लू की चपेट में आने से अब तक कम से कम 18 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। पेरिस समझौते के प्रति प्रतिबद्धता बनाए रखने के लिए तीन सबसे बड़े पक्षों के बीच सोमवार को बातचीत शुरू हुई। इस दौरान यूरोपीय संघ के जलवायु आयुक्त ने कनाडा और चीन के मंत्रियों के साथ मिलकर 2015 के ऐतिहासिक जलवायु समझौते के प्रति अपने समर्थन को फिर से दोहराया। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को पूर्वोत्तर भारत, पश्चिमी तट और दक्षिणी राज्यों के कुछ हिस्सों में भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। वहीं उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने के आसार हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ इलाकों में लू की स्थिति भी बने रहने की संभावना है। सोमवार को उत्तरी भारत के लखनऊ शहर में एक इमारत में लगी आग में कम से कम 15 लोगों की मौत के बाद जांच के आदेश दिए गए हैं। इस इमारत में एक पालतू जानवरों की दुकान और एक एनिमेशन सेंटर था। चश्मदीदों ने बताया कि लोग बचने के लिए खिड़कियों से कूद रहे थे और केबल के सहारे नीचे उतर रहे थे, जबकि बचाव दलों ने लोगों की जान बचाने के लिए एक दीवार तोड़ दी। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। अधिकारियों ने कहा कि इमारत में आपातकालीन निकास का अभाव था और धुआं फैलने के कारण लोग अंदर ही फंस गए। कतर की सबसे बड़ी एलएनजी सुविधा जो रास्ताफान में स्थित है में हुए एक जोरदार धमाके में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई और 66 लोग घायल हो गए। इस विस्फोट को एक तकनीकी दुर्घटना बताया गया है। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि पीड़ित विदेशी श्रमिक थे। इस घातक घटना के कारणों की जाँच शुरू कर दी गई है। रूस द्वारा रात भर किए गए हवाई हमलों में यूक्रेन में 6 लोग घायल हो गए हैं। मंगलवार तड़के राजधानी कीव में हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया और लोगों को सुरक्षित स्थानों में जाने के लिए कहा गया। मोंट्रियल पुलिस ने बताया कि सोमवार सुबह कोट दी नेज इलाके में हुई गोलीबारी में एक पुलिस अधिकारी, एक नागरिक और एक संदिग्ध सहित कुल 3 लोगों की मौत हो गई है। एक सशस्त्र और खतरनाक संदिग्ध के संबंध में पहले जारी किया गया आपातकालीन अलर्ट अब समाप्त कर दिया गया है। सोमवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला संक्रमण के 1000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जहां इस ताजा प्रकोप से अब तक 250 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। देश के राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान ने 1003 मामलों और 254 मौतों की पुष्टि की है, जिसमें मृत्यु दर 25% है।
1: और अब फुटबॉल की बात करते हैं। अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला हुआ और अर्जेंटीना ने 2-0 से ऑस्ट्रेलिया को हराया है। मेसी ने एक बार फिर अपनी निराली काबिलियत का मुजाहिरा मैदान में दिखाया, जिससे पूरी दुनिया चौंके यानी दंग रह गई है।
2: एक बहुत ही कीमती जीत है नॉर्वे के लिए। इसके साथ बेस्ट ऑफ 32 का रास्ता खुल गया। सेनेगल को 3-2 से हराकर नॉर्वे ने इस वर्ल्ड कप में अपनी शानदार शुरुआत की पुष्टि की। ग्रुप आई के इस मैच में शुरू से ही तेज रफ्तार पर मैच खेला गया। दोनों टीमें बराबर खेल रहे थे। सेनेगल को कुछ अच्छे मौके मिले पर गोल नहीं बना। नॉर्वे मैच में धीरे धीरे पकड़ मजबूत कर पाया और पहला गोल स्कोर करता है मार्कस पेडरसन। इस गोल के बाद सेनेगल के डिफेंस में कुछ खामियां देखने को मिली। सेकंड हाफ में नॉर्वे के सबसे खतरनाक स्ट्राइकर अर्लिंग अलॉन ने अपना गोल स्कोर किया। जब प्रतिद्वंद्वी टीम के क्षेत्र में गेंद मिलता है तो अलॉन मौका नहीं देता। सेनेगल को जब झटका लगा तब नींद टूटी और इस्माइल असा एक गोल स्कोर करता है, पर इस गोल के बाद नॉर्वे उल्टा जवाब देता है, दूसरा गोल स्कोर करके अलोन का गोल। सेनेगल ने भरसक कोशिश

0: की मैच में आने के लिए इंजुरी टाइम में जाकर इस्माइल असार अपनी टीम के लिए दूसरा गोल बनाता है। नॉर्वे 3 सेनेगल 2 इस ग्रुप में आखिरी मैच में नॉर्वे का सामना फ्रांस से होगा, सेनेगल का मुकाबला इराक से।
1: और आज रात पुर्तगाल और उज़्बेकिस्तान के बीच मुकाबला होने वाला है। ग्रुप एल में इंग्लैंड गाना को टक्कर देने वाला है रात के 12 बजे, जबकि पनामा और क्रोएशिया मैदान में उतरेंगे 3 बजे।
0: पुर्तगाल की टीम मैदान में उतर रही है, मकसद उद्देश्य एक ही है, पहले मैच के खराब परफॉर्मेंस को भूलकर वर्ल्ड कप में पहली जीत हासिल करना। क्रिस्टियानो रोनाल्डो कुछ खास नहीं कर पाया था पहले मैच में, कोच रोबर्टो मार्टिनेज़ को अपनी टीम पर पूरा विश्वास है। पुर्तगाल के सिलेसाओ के सामने होगी उज़्बेकिस्तान की टीम जो पहली बार वर्ल्ड कप में है। पहले मैच में कोलंबिया के खिलाफ हार हुई थी पर इस टीम ने अच्छे खेल का प्रदर्शन किया था, एक गोल भी स्कोर किया था उज़्बेकिस्तान ने। कोलंबिया का आत्मविश्वास प्रबल है, पहले मैच में जीत हुई थी उज़्बेकिस्तान के खिलाफ। लुइस डियाज इस वर्ल्ड कप में अपना खाता खोल चुका है, उसे रोकना आसान नहीं होगा। काफेटेरोस टीम इस ग्रुप में फेवरेट है पर कोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ने पुर्तगाल को मुर्गा बना के रखा था, 0-0 का स्कोर था। निडर है ये टीम, मजबूत डिफेंस, काउंटर अटैक में घातक साबित हो सकती है ये टीम। ये मैच कल सुबह 6 बजे खेला जाएगा। ग्रुप एल में आज इंग्लैंड के द थ्री लायंस आ रहे हैं क्वालिफिकेशन का टिकट बुक करने। सामने होगी गाना की टीम, तगड़ा मुकाबला होगा। अपने पहले मैच में टोमास टुखेल की टीम ने आक्रामक फुटबॉल के साथ 4 गोल स्कोर किए थे पर डिफेंस में छेद है, 2 गोल कंसीड हुए थे क्रोएशिया के खिलाफ। गाना की टीम की भी जीत हुई थी 1-0 से पनामा के खिलाफ। आक्रामक गति है कोंगो की टीम में। ये मैच रात्रि के 12 बजे MBC 11 पर सीधा प्रसारित किया जाएगा। पनामा वर्सेस क्रोएशिया दोनों पहला मैच हार कर आ रहे हैं, मतलब जो आज हारेगा वर्ल्ड कप के अगले राउंड का दरवाजा लगभग बंद हो जाएगा। क्रोएशिया ने फर्स्ट हाफ में इंग्लैंड पर 2 गोल दागे थे, इंग्लैंड को चौंकाया था। अनुभवी टीम है क्रोएशिया, पनामा को हराना आसान नहीं होगा। अंतिम मिनट में जाके गाना ने पनामा को हराया था। ये मैच कल सुबह 3 बजे।
1: बुलेटिन के आखिर में करते हैं मौसम की बात। आम हालत मस्किन के दक्षिण में एक जोरदार एंटी साइक्लोन की वजह से हमारे इलाके में ठंडी हवाएं चल रही हैं और ठंड महसूस हो रही है। अगले 24 घंटों के लिए मौसम की पेशगोई, आज रात घने बादल होंगे और हल्की वर्षा होगी, खासतौर पर हवाई ढलानों और ऊंचे इलाकों में। हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। लगूनों के उस पार समुद्र खराब रहेगा, दक्षिण में 3.50 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी, इसी वजह से दूर समुद्र में न जाने की सलाह है। तापमान सेंट्रल प्लेटो में न्यूनतम तापमान 15 से 17, अधिकतम 20 से 23, साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह 7:45 बजे सूरज उगेगा और शाम को 5:39 पर सूरज ढल जाएगा।

0: ये थी अब तक की खबरें। अब तक के बुलेटिन पहुंचाने में हमें समाचार और फ्रेंच विभागों और हमारी तकनीकी साथी अपर्णा बदलोगन की मदद मिली है। आपके ध्यान के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार, आदाब, शुभ रात्रि। एमबीसी के साथ जुड़े रहिए।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
3: सत्यार्थ प्रकाश मास के उपलक्ष में आर्य सभा मॉरिशस बुधवार 24 जून 2026 पायुत आर्य समाज में दिन के 3:30 बजे एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, जिसमें भारत से आए हुए प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार शास्त्री सत्यार्थ प्रकाश पर प्रवचन देंगे। गायत्री जयंती के संदर्भ में वाल्टो रोड मोताईलोंग के वेद माता गायत्री शक्ति पीठ बुधवार 24

0: 26 जून को सुबह 9 से दिन के 12 बजे तक 24 कुंडिया गायत्री यज्ञ का आयोजन कर रहा है। गायत्री जयंती के संदर्भ में प्लेन दे रोश के सरस्वती मंदिर द्वारा बुधवार 24 जून को शाम 6:30 बजे से रात्रि के 8 बजे तक महायज्ञ, गायत्री चालीसा, कीर्तन और प्रवचन का आयोजन किया गया है।
1: MBC Radio, 24 hours a day.
2: Central Electricity Board द्वारा जारी चंदा विज्ञप्ति सुनिए। CEB अपने ग्राहकों को सूचित करता है कि इन जगहों में बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। बुधवार 24 जून को Petit Verger Pointe du Sable में, विशेषकर मोसेलमाली जाते दे बुगेविली में सुबह 9 बजे से दिन के 12 बजे के बीच, प्लेन दे रोश में विशेषकर रॉयल रोड, डालिया रोड तथा जुमन रोड में सुबह 9 बजे से दिन के 1 बजे के बीच, और पॉइंट टू सैबल में विशेषकर सोहन लेन तथा तटीय इलाकों के एक हिस्से में सुबह 9 बजे से दोपहर के 3:30 बजे के बीच, और गुरुवार 25 जून 2026 को मोसेलमा टेरासिन, मोसेलमा लेडी बॉकली सुलियाक व NHDC टेरासिन में सुबह 8:30 बजे से दोपहर के 3 बजे के बीच मरम्मत कार्यों के बाद बिना पूर्व सूचित किए बिजली की आपूर्ति पुनः जारी की जाएगी। इस कटौती के कारण CEB क्षमा प्रार्थी है।
3: रेडियो मॉरिशस
4: 800 किलोहर्ट्ज़ पर, ये है रेडियो मॉरिशस।
3: रेडियो मॉरिशस,
4: रेडियो मॉरिशस।

सादर प्रणाम श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एमबीसी रेडियो मॉरिशस पर भजदे प्रभु का नाम कार्यक्रम, और मैं हूं दीविना, लेकर उपस्थित हुई हूं भक्ति रस से भरा हमारा ये लोकप्रिय कार्यक्रम। आइए सांसारिक चिंताओं से दूर होकर प्रभु भक्ति में अपना मन लगाएं। वैसे ईश्वर का स्मरण मन को शांति, हृदय को प्रसन्नता और जीवन को सही दिशा देता है। जीवन में धन, संपत्ति और पद का महत्व सीमित है श्रोताओं, लेकिन अच्छे संस्कार और भक्ति का धन कभी समाप्त नहीं होता। तो आइए प्रस्तुत करते हैं पहला भजन, गणेश वंदना।

इस भजन के मधुर स्वरों के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं भजते प्रभु का नाम कार्यक्रम में। श्रोताओं, जब हम सच्चे मन से प्रभु का नाम लेते हैं तब हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। प्रभु हमेशा हमारे साथ हैं, बस हमें उनकी उपस्थिति को महसूस करना होता है। प्रार्थना शब्दों से नहीं, हृदय की सच्चाई से होती है श्रोताओं।

जहां आप सुन रहे हैं भजते प्रभु का नाम कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस पर। वैसे जीवन में कभी कभी कठिनाइयां आती हैं, परंतु भक्त का विश्वास उसे हर परिस्थिति में मजबूत बनाता रखता है। भगवान पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता। जहां विश्वास है वही प्रभु का वास होता है।

श्रोताओं, भजनों की इस पवित्र श्रृंखला में आगे बढ़ती है। हम सब अपने जीवन में सुख और सफलता की कामना करते हैं, है ना? परंतु सच्चा सुख बाहर नहीं, अपने अंतर में छुपा होता है, और उस अंतर की यात्रा का मार्ग है भक्ति। इसलिए मन को मंदिर बना लो, प्रभु स्वयं उसमें निवास करेंगे।

अब कार्यक्रम अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। आपके साथ के लिए तहे दिल से धन्यवाद। स्मरण रखिए, जीवन में चाहे कितनी भी दुख हो, प्रतिदिन कुछ समय प्रभु के नाम के लिए अवश्य निकालिए। भक्ति से मन को शांति और जीवन को नई ऊर्जा मिलती है। प्रभु का नाम एक ऐसे दीपक है जो अंधकार में भी रास्ता दिखा देता है। इसी भक्ति भरे संदेश के साथ हमें दीजिए अनुमति, आपसे विदा लेते हैं। प्रभु आप सबके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि तथा सद्बुद्धि का प्रकाश बनाए रखें। जय श्री राम। हरिओम तत्सत।

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم क्यों ना हो हमारे चेहरे फूल से क्यों ना हो हमारे चेहरे फूल से हम तो बने हैं करबला की धूल से। मोहतरम सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहु। ये रेडियो मॉरिशस हैं और आपकी खिदमत में पेश हैं उर्दू प्रोग्राम महफिल शब। निसार अख्तर दिले बेकरां से आप तमाम लोगों का इस्तकबाल करता है। अल्हम्दुलिल्लाह माह मुकद्दस माह मुहर्रमुल हराम हमारे दरमियान साया फिगन है, वो महीना जिसे हुर्मत वाले महीनों में शुमार किया गया, जिसकी फ़जाएं इबादत की खुशबू से महकती हैं और जिसके अय्याम इंसान को अपने रब के करीब होने की दावत देते हैं। अल्लाह तबारक व ताला हमें इस माह मुबारक के फ़ुयूज़ और बरकात से मालामाल फरमाए, आमीन। आइए महफिल शब का इफ्तिताह इस कलाम से करते हैं, मुलायजा फरमाइए।

मोहतशम सामईन, इंशाअल्लाहुल अजीज माह मुहर्रमुल हराम का दसवां दिन यानी योम आशुरा करीब आ रहा है। आशुरा का ना सिर्फ दिन रहमत भरा है बल्कि उसकी रात के भी बड़े फजाइल हैं। आशुरा की रात दुआएं कबूल होती हैं। हमारे बुजुर्गान दीन शब आशुरा को इबादत और रियाजत में गुजारते थे। वो नेक हस्तियाँ दूसरों को जमा करके रब कदीर का जिक्र करते, तिलावत कुरान पाक में मशगूल रहते, गरीबों की इमदाद फरमाते और इस रात का खूब अदब और एहतराम करते।

रात के 9:07 हो गल बा भोजपुरी तड़का के पसंद करे लोगन भाई बहन और मित्र लोगन तोहर एकदम सालन पूर्वक का स्वागत बाते ई रात के बेला में। हर रात्रि के रेडियो मॉरिशस से जुड़े के बहुत धन्यवाद। मन करता है एगो बढ़िया भोजपुरी गीत सुने के, तब बिना हिचहिचकाए फरमाइश कर सा तुरंत पूरी करे और कोशिश करब सा नंबरवा घुमावा 402-80-85। उषा तुहर संगे रात्रि के 11 बजे तो चला किशोर खिमिया के गावल गीत, आज का पहल का गीत सुना जा।

रात के 9:17 श्रोता लोग, इतना फुटबॉल के मैच रोज के रोज मिलता देखे के यही वर्ल्ड कप की जादू। 4 साल ले एक बार आवेला, MBC प्ले डाउनलोड कर ला कि नहीं, अगर नहीं तो देर का है चला। तो चला अगला गीत सुनावब जा, नीरज गुप्ता मधु के गावल गीत सुजाता के लिए जो हमने के सुनता रोजिल से, और गाना मांगा तो वंजा अपन खातिर और अपन अपने परिवार खातिर।

0: भोजपुरी तड़का।
1: रात के 9:32 हो गल बा श्रोता लोगन, और एक सप्ताह में तो आधा बरिस गुजर जाए। अपन ख्याल रखत हवा कि नहीं, व्यायाम करत हवा, अच्छा भोजन के सेवन करत हवा, ऐसा आशा करत है। काहे कि स्वास्थ्य ही तो सोना है, और स्वास्थ्य से बढ़कर तो कुछ नहीं बा। स्वास्थ्य रह, मस्त रह। और अगला गीत चला भोजपुरी बॉयज के गावल गीत, खासकर विशाल भाई की खातिर और एक धर्म पत्नी रीना खातिर। और ये बखत जितना कोई की काम करा था वो एकर खातिर है ये गाना।

under the neon. Sonwo, pasatu ase kamperal bahar. Kaito ke bu

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का। भोजपुरी, भोजपुरी तड़का, तड़का।
1: रात के 10:03 हो गलबा और हियाँ परी सुदेवी जी जो हमने के सुना था वाकवा से गाना मांगा था वंजा दीदी ललिता खुशल परिवार आत्माराम भैया सुनीता दीदी शोभा देवीना मालेंगा के राम रतन परिवार राम गुलाम परिवार कुआरू परिवार खातिर। तो चला अगला गीत सुना

0: Dehi! Yes!
1: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का। भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का।
2: रात के 10:16 हो गए बा श्रोतालोक, रविवार के विश्व भर में संगीत दिवस मनावल गल। सगरों सगरों संगीत के महफिल और कार्यक्रम के आयोजन करल गल। कलाकार लोगन अपन कला के प्रदर्शन करलन। यह संगीत के प्रति स्नेह और प्रेम। संगीत त पूजा है।

उपासना है, स्तुति है माता सरस्वती के पावन मन से। सोचबत तुहर कल्याण अवश्य होए। चल अगला गीत सुना रंभा राम तुहर के गावल गीत और ये गाना खास कर अनीता जी खातिर जौन हमनी के ये वक्त सुना ताफी कॉन्फ्लाक से। धन्यवाद गानाकर खातिर और अपन संगतिया खातिर।

0: भोजपुरी तड़का।
1: रात के 10:37 हो गए श्रोता लोग, और यहाँ पर महेंद्र जी जो हमने के सुना था ये वक्त और गाना मांगा था वंजा बेल बेल दे मोसी भोजपुरी बॉयज के गावल की। धन्यवाद। तो रात चला ये गाना तुहर खाते।

0: संगतिया लोग जब 2 घंटा गुजर गल पता ही नहीं चलल। आज्ञा दे के वक़्त आ गए बाते हमेशा खुश रहिया। हमने के मुलाकात काल होय आपकी पसंद कार्यक्रम में अंताक्षरी प्रोग्राम में भी।
1: से क्या होगा जब बत्ती से धुआं निकलने लगी तो
0: चला। उषा की और शुभ रात्रि, नमस्कार।
1: जब असर के भूत सर से उतर गया तो अरे गुनी बुलाने से क्या होगा। जब देवता देवी आसन छोड़ दिया तो खीर पूरी चढ़ाने से क्या होगा। आ भर पेट जब भात खा लिया तो अब खुदी चुनने से क्या होगा। अरे गंदे पानी पीकर

अरे रिश्ता जोड़ने से क्या होगा, अपने घर के कुत्ता जब काट दिया तो पुलिस को बताने से क्या होगा। अरे सफेद चादर में दाग लग गई तो अरे नदी में जाकर धोने से क्या होगा, जब घर की चौकट साफ किया नहीं तो आंगन झलकाने से क्या होगा। जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से क्या होगा, जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: प्रणाम श्रोताओं, सुनहरे पल कार्यक्रम है रेडियो मॉरिशस की लहरों पर।

एक बार फिर आपके नीतू आपके समक्ष रात्रि के 12 बजे तक। एक्टर्स हो, एक्ट्रेसेस हो, संगीतकार, गीतकार, गीत, बोल, शब्द, सुर, ताल, यही तो है सुनहरे पल जिनकी यादें उभर कर आती है हर रोज। आज हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता, निर्देशक और निर्माता संजय खान, इनका नाम उन कलाकारों में शुमार किया जाता है जिन्होंने अपनी प्रतिभा, मेहनत और लगन के दम पर बॉलीवुड और टेलीविजन की दुनिया में एक खास पहचान बनाई। आज का ये सफर उनके नाम।

वैसे उनका जन्म 3 जनवरी 1941 को बेंगलुरु में हुआ था। संजय खान वैसे प्रसिद्ध एक्टर फिरोज खान के भाई हैं और दोनों भाइयों ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग अलग पहचान बनाई।

संजय खान ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत 1960 के दशक में की। उनकी पर्सनालिटी, दिलकश मुस्कान और शालीन अभिनय ने दर्शकों को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने अपने करियर में कई यादगार फिल्मों में काम किया, जिनमें दोस्ती, एक फूल दो माली, इंतकाम, मेला, धुंध, धड़कन जैसे नाम शामिल हैं। उनकी फिल्मों में रोमांस, ड्रामा और भावनाओं का सुंदर संगम देखने को मिलता था।

संजय खान की एक्टिंग स्टाइल बहुत ही सरल और प्रभावशाली रही। वो कभी भी अत्यधिक नाटकीय अंदाज पर निर्भर नहीं रहे। उनके चेहरे के भाव, आंखों की भाषा और संवादों को बोलने का अंदाज ही उनकी सबसे बड़ी ताकत रही। वो हर किरदार में एक गरिमा और सच्चाई लेकर आते थे, जिस वजह से दर्शक उनके किरदारों से जुड़ जाते थे। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत मजबूत थी और वो रोमांटिक हीरो के रूप में खास तौर पर पसंद किए जाते थे।

0: फिल्मों के साथ साथ संजय खान ने टेलीविजन की दुनिया में भी इतिहास रच दिया। उनका सबसे बड़ा और यादगार योगदान था द सॉर्ट ऑफ टीपू सुल्तान। इस भव्य टेलीविजन सीरियल ने भारत के घर घर में लोकप्रियता हासिल की। इस सीरियल के निर्माण और निर्देशन में संजय खान ने अपनी पूरी प्रतिभा और समर्पण लगा दिया था। वैसे टीपू सुल्तान के जीवन को पर्दे पर इतनी भव्यता और गौरव के साथ दिखाना उस समय एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी गई।
1: ये पर्दा हटा दो,

वैसे उनके जीवन में एक बहुत ही दुखद घटना भी आई थी जब द सॉर्ट ऑफ टीपू सुल्तान के सेट पर भयंकर आग लग गई। इस दुर्घटना में संजय खान गंभीर रूप से जल गए थे और उन्हें कई सर्जरी से गुजरना भी पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अपनी इच्छा शक्ति और अपने संघर्ष के बल पर वो फिर से खड़े हुए और अपने अधूरे सपनों को पूरा किया। उनकी ये कहानी आज भी हौसले और जज्बे की मिसाल मानी जाती है।

श्रोताओं, संजय खान सिर्फ एक एक्टर ही नहीं बल्कि एक सफल प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी रहे हैं। उन्होंने हमेशा गुणवत्ता और भव्यता को महत्व दिया। उनके प्रोजेक्ट्स में इतिहास, संस्कृति और देशभक्ति की झलक देखने को मिलती है। इसी वजह से उन्हें मनोरंजन जगत में एक दृष्टिकोण वाली कलाकार के रूप में देखा जाता है।

आज भी संजय खान का नाम हिंदी सिनेमा और टेलीविजन के इतिहास में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि सफलता सिर्फ प्रतिभा से नहीं बल्कि संघर्ष, धैर्य और कभी हार न मानने वाले जज्बे से मिलती है। एक एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और प्रेरणा के स्रोत के रूप में संजय खान ने भारतीय मनोरंजन जगत को अमूल्य योगदान दिया है और उनकी विरासत हमेशा याद रखी जाएगी। प्रणाम, शुभ रात्रि।

NBC रेडियो हर पल आपके साथ।